सुप्रभात। मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आज दिन शनिवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:55 और 42 सेकंड हो रहे हैं। अब आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा।

मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:59 और 42 सेकंड हो रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान होगा। इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा मतदान अधिकारी की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन मतदान केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमौलिया बागची आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत युद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को जांस्कर घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायक उत्पाद सूची पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए कई मानक जारी किए हैं। BIS द्वारा कोहनी, बैसाखी, चलने वाली छड़ियां और 3 या अधिक पैरों वाली छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे प्रस्तावित शर्तों से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। उधर लेबनान में इसराइली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए, जिसमें कई इसराइली सैनिक घायल हो गए। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। कल रात खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के KL राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियावेव 330.73 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना इस अंतराल के बाद।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700001424।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700001424।
5: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700001424।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700001424।
5: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
6: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
7: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
7: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
7: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
6: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम वंदना में आपका स्वागत है। समर्पण और एकता, ये वो मंत्र है ईश्वर और भक्त जिसमें एक दूसरे से इस तरह मिल जाते हैं जैसे पानी में चंदन। जैसे धागे के बिना मोती बेकार है, वैसे ही ईश्वर के बिना भक्त का कोई मोल नहीं।

जीवन में सकारात्मकता और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण मन को सांत्वना देता है कि जब राम नाम का सहारा है तो डरे बिना उस पर विश्वास करना चाहिए।

भक्त और ईश्वर का प्रेम एक ऐसा अटूट और दिव्य भक्ति का प्रतीक है जहां सांसारिक इच्छाओं को छोड़कर केवल ईश्वर का प्रेम ही शेष रह जाता है।

जैसे नींव की ईंट अदृश्य होती है, उसे हम देख नहीं सकते, पर पूरी इमारत उसी नींव पर टिकी होती है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन के नींव पर अदृश्य प्रभु हैं, जो दिखाई नहीं देते पर हर घड़ी हर क्षण हमारे साथ होते।

0: केवल रक्त संबंध मात्र से ही कोई अपना नहीं होता है। प्रेम, सहयोग, विश्वास, सम्मान और समर्पण, ये सभी ऐसे भाव हैं जो पराये को भी अपना बनाते हैं। ये थी आज की भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चिंतन बिंदु।
1: आज समर्पण का स्वरूप क्या होना चाहिए, प्रायः हम इसे समझ नहीं पाते। और मुझे लगता है हनुमान जी की कथा, राम जी की कथाएं हम श्रवण करते रहते हैं, तो हनुमान जी के जीवन चरित्र में एक दर्शन मिलता है कि एक बार हनुमान जी महाराज अयोध्या में राघवेंद्र सरकार के सभा में विराजमान थे और राघवेंद्र सरकार हनुमान जी की तरफ देख रहे थे। और जब हनुमान जी राम जी की तरफ देखते तो हनुमान जी को देखता हुआ देख करके राम जी के नेत्र दूसरी तरफ मुड़ जाते। यह घटना कई दिनों से माता जानकी जी देख रही थीं। एक दिन अंतःपुर में उन्होंने पूछा प्रभु से कि क्या कारण है कि आप हनुमान जी को देखते हो और हनुमान जी जब आपकी तरफ देखते हैं तो आप अपनी नज़र क्यों फेर लेते हो। तो राघवेंद्र सरकार ने कहा उसका इतना ऋण है कि आज तक जीवन में उसने इतने बड़े बड़े काम किए और मेरे लिए किए, फिर भी उसने जीवन में कोई अपेक्षा नहीं रखी, तो मैं सोचता हूँ कि मैंने उसे कुछ नहीं दिया जिसने मेरे लिए सब कुछ किया। तो जानकी जी ने कहा तो आप उनसे कहिए कि क्या चाहिए आपको। तो राघवेंद्र सरकार ने कहा मैं कई बार पूछा और हनुमान ने कहा कि मेरे समर्पण को द्रव्य से तौलने की, चायपत से तौलने की आवश्यकता नहीं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे अंतर मन में यह भाव बार बार उदित होता है कि मुझे हनुमान को कुछ देना चाहिए। तो जानकी जी ने कहा जब वह कुछ नहीं लेते, चाहे आप कुछ नहीं दे पा रहे हो, तो एक सरल सहज उपाय है कि एक पत्र में आप कह दो, लिख दो कि हनुमान मैं तुम्हें कुछ दे

0: नहीं सकता। अगले दिन सभा लगी, फिर प्रभु आसन पर विराजमान हुए और एक पत्र जानकी जी का कहा मान करके, और एक पत्र में उन्होंने लिखा कि हनुमान तुम्हारे ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। हनुमान जी आए, हनुमान जी के हाथ में उन्होंने धीरे से वह पत्र दे दिया। हनुमान जी ने पढ़ा कि मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, तो हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए और हनुमान जी ने कहा, प्रभु देखिए आपकी कृपा मेरे समर्पण के दिव्यता को और श्रेष्ठ कर देता है। कि प्रभु आप कहते हो कि हनुमान तुम्हारे कारण ही सुग्रीव को किष्किंधा का साम्राज्य मिला और विभीषण को लंका का साम्राज्य मिला, और दूसरे की बात छोड़ दो, मुझे अयोध्या का राज्य भी तुम्हारे कारण मिला। लेकिन प्रभु अयोध्या का राज्य, किष्किंधा का राज्य, चाहे लंका का, एक एक राज्य एक एक पद प्राप्त हुआ, लेकिन नाथ पूर्ण समर्पण का भाव और आपके प्रति समर्पण का भाव मेरा था कि आप मुझे प्राप्त हो गए। कहने का आशय इस हनुमत चरित्र का मात्र इतना है कि जब आपका समर्पण शुद्ध होगा, जीवन में किसी के प्रति, किसी कार्य के प्रति अगर समर्पित हैं आप, समर्पण है, तो निश्चित है उस समर्पण का फल आपको प्राप्त होगा। अगर समर्पण में अशुद्धि है तो आप कोई कार्य कर रहे हो, पूर्ण समर्पित नहीं हो, तो आपको वह फल प्राप्त नहीं हो सकता जिस फल की आप कामना कर रहे हो। बिना मांगे हनुमान जी को जो प्राप्त हुआ, केवल एक समर्पित भक्त के कारण हनुमान जी महाराज चतुर्दिक पूज्य हुए, और मुझे लगता है कि संपूर्ण विश्व में हनुमान जी महाराज की पूजा इसलिए होती है कि जिन्होंने केवल रामानास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोस्मि हम रामे चित्तलदम सदा भवतमे भो राम मामुद्र, जिन्होंने राम के अलावा कुछ समझा ही नहीं, इतना समर्पण, इतना अद्भुत समर्पण। अगर ऐसा ही हमारे जीवन में भी समर्पण का भाव बने तो मुझे लगता है कि हमारा भी जीवन, उस जीवन में वो प्राप्त हो सकता है कि जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। तो सबसे पहले हम विचार करें कि जिस कार्य के प्रति, चाहे जिस संबंधों के प्रति, जिससे हम कुछ अपेक्षा रखे हुए हैं, क्या हमारा समर्पण दिव्य है, क्या हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं कि नहीं है। आज पूर्ण समर्पण का ही देन है कि राघवेंद्र सरकार हनुमान जी महाराज से पूछते हैं कि तुम्हें बताओ क्या चाहिए। यह समर्पण का स्वरूप अद्भुत हनुमान जी के चरित्र से आपको प्राप्त होता है। तो जीवन में समर्पण का स्वरूप दिव्य रखिए, निश्चित है जो आप चाहते हैं आपको प्राप्त होगा।
1: ये था आज का चिंतन बिंदु। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।

मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज के साथ एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए आज के इस केंद्र से प्रसारित होने वाले विभिन्न सभाओं में कार्यक्रमों के कुछ संक्षिप्त विवरण।

प्रातःकालीन प्रसारण सभा में फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रसारित होगा। प्रातः 7:31 पर, 8:45 पर और 10:05 पे। उर्दू प्रोग्राम नसर किए जाएंगे हमारे लखनऊ केंद्र से प्रातः 9:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 9:50 पर आज के कलाकार होंगे मेहदी हसन।

महिलाओं के कार्यक्रम नारी जगत का प्रसारण होगा दिन 1:15 पर, जिसे प्रस्तुत करेंगी अनीता भट्ट। खेती किसानी कार्यक्रम में दिन 1:50 पर आप डॉक्टर सुमिता त्रिपाठी की सुन सकेंगे वार्ता। विषय होगा पशुओं में बांझपन की समस्या। सायंकालीन प्रसारण सभा में ग्रामीण बच्चों के लिए कार्यक्रम प्रसारित होगा बालवाड़ी, शाम 5:35 पर।

रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रज्ञा श्रीवास्तव की कहानी दोषारोपण। रात 8:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार होंगी तमन्ना बानो।

ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले विभिन्न सभाओं में कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण थी। मीडिया वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलो हर्ट्ज के साथ एफएम 100.1 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

देवताओं के आग्रह ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। संपूर्ण जगत के कल्याण की भावना से प्रेरित सरस्वती ने रानी कैकेयी की मुंह बोली दासी मंथरा की बुद्धि फेर दी। श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सजाई अयोध्या नगरी का उत्सव जैसा निखरा रूप मंथरा की आंखों में चुभने लगा।

उदास होकर वो कैकेयी के पास पहुंची। कैकेयी मंथरा की उदासी का कारण पूछती है, किंतु वो चुप है। लंबी सांसें लेते हुए आंखों से आंसू ढरका रही है। कैकेयी को अंदेशा होता है कि महाराज दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। कहीं उग्र स्वभाव वाले लक्ष्मण ने उसे दंडित तो नहीं किया है। तब मंथरा का त्रिया चरित्र मुखरित होता है। कहती है, उसे भला कोई दंड क्यों देगा? हे रानी, तुम्हारा पुत्र यहाँ से दूर परदेश में है और तुम यहाँ कोमल शैया पर पड़ी सुबह की मीठी नींद ले रही हो। राजा के छल कपट का ज्ञान तुम्हें क्यों होने लगा? मंथरा के मन का मैल कैकेयी से छुपा न रहा, किंतु उस पर क्रोध न कर कैकेयी ने राम के हृदय में अपने लिए उस स्नेह, आदर और सम्मान की बात कही जो माता कौशल्या को भी नहीं मिलता।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सेहतनामा।
1: कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं, आज हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर चक्रपाणी पांडे जी और हमारा विषय है तनाव और उच्च रक्तचाप। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज की जो जिंदगी है भागती दौड़ती, हर व्यक्ति अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ लोग तो उसमें सफल हो जाते हैं, कुछ असफल हो जाते हैं, और जब व्यक्ति असफल होता है तो वो तनावग्रस्त होता है, जो कि स्वाभाविक है। तो ये उच्च रक्तचाप और तनाव से क्या संबंध है?
2: तनाव में जीने वाले लोगों को उच्च रक्तचाप अक्सर हो ही जाता है। तनाव होने की वजह से शरीर में कार्टिसोन की मात्रा और एड्रेनलिन की मात्रा ज़्यादा स्रावित होती है, जिसके वजह से हृदय हमेशा ओवर एक्टिव रहता है, और ओवर एक्टिव होने की वजह से ब्लड प्रेशर हो जाने की संभावना रहती है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी थोड़ा बढ़ जाता है। इस वजह से तनावग्रस्त लोगों में ब्लड प्रेशर हो जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। हाँ, लेकिन साथ ही में तनाव जब कम होता है, ऐसे लोगों का उच्च रक्तचाप अपने आप नियंत्रित होकर नीचे हो जाता है।
1: इसके कारण क्या होते हैं?
2: इस तनाव के कारण ये जो होता है, ब्लड प्रेशर होता है, तो मुख्यतः ये शरीर में केमिकल

0: बैलेंस के चलते ही होता है। तनाव होने के चलते कार्टिसोल शरीर में सिक्रीट होगा, उसके चलते होगा। तनाव होने की वजह से शरीर में कार्टिसोल के ज़्यादा सिक्रीशन होने की वजह से शरीर में मोटापा बढ़ता है। मोटापा जब बढ़ेगा तो साथ में ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है।
1: डॉक्टर साहब, ये जो वातावरण है इसका तो कोई असर नहीं है? उच्च रक्तचाप से संबंधित जो ज्यादा लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, तो ये
0: कुछ है? बिल्कुल है। इसका मुख्य कारण ये है कि आज इस तनाव भरी जिंदगी में किसी को एक मिनट भी शरीर के लिए फुर्सत नहीं है। दूसरा, इतना ज्यादा पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन यानी मतलब सड़क पे गाड़ी चल रही है, उससे धुआं निकल रहा है। मोस्टली गाड़ियां, जनरेटर जितने चलते हैं, सब में डीजल ही जलाया जाता है। डीजल के इमिशन से एक लाइन में इतना कहना चाहूंगा, डीजल इतना खतरनाक है, डीजल का धुआं, कि वो हमारे डीएनए तक को डैमेज कर देता है। डीएनए डैमेज की कल्पना आप खुद ही कर लीजिए, डीएनए जब डैमेज हो जाएगा तो क्या बचेगा। इतना ज्यादा घातक है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि इसकी वजह से हमारी शारीरिक संरचना, आनुवंशिकता, हर चीज गड़बड़ हो रही है।
1: इसकी खास वजह कुछ देखा जाए तो हम ही लोग हैं।
0: बिल्कुल हाँ, जितना ये डीजल का उसका वो कर रहे हैं, पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, मतलब प्रकृति का
1: जो हम दोहन कर रहे हैं उसका
0: सजा तो हमें मिलनी चाहिए।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बचाव क्या हो सकते हैं कि ऐसी स्थितियां ही ना उत्पन्न हो?
0: ऐसी स्थितियां उत्पन्न ना हो, मात्र 5 मिनट के प्रयास से इन सब से निजात पाया जा सकता है। वो 5 मिनट जिससे भी आप लगाएं, चाहे इबादत में लगाएं, चाहे मेडिटेशन में लगाएं, चाहे योगा में लगाएं, चाहे पूजा में लगाएं, लेकिन लगाएं जरूर प्रतिदिन मात्र 5 मिनट आप समय मेडिटेशन में ध्यान के लिए दीजिए,
1: एकाग्रता के लिए।
0: हाँ, शांत, बिल्कुल विचार मुक्त होके आराम से आप बैठें, सोचें नहीं कुछ, निश्चिंत भाव से बैठें, 5 मिनट अपने शरीर, तन, मन, आत्मा सबको आराम दें।
1: डॉक्टर साहब, स्वस्थ रहने का जो सबसे सफलतम कुंजी है वो ये है कि अपने आप को एकाग्र करें, आत्म संतुष्टि होनी चाहिए,
0: और अपने अंदर कभी भी हीन भावना नहीं लाने, हमें तो ऐसा है, हमारी संरचना ही भगवान ने ऐसी दी, नहीं, आप विश्व में इस धरा पर आप जैसा दूसरा कोई नहीं है, है ही नहीं कोई। आपको जो ईश्वर ने दिया है वो उसका आशीर्वाद है, उसमें संतोष करें, उसी में प्रसन्नता में रहें, यही सबसे बड़ा।
1: आप ये सोचें कि आपको जो दिया है वो शायद किसी को मिला ही नहीं है, और डॉक्टर साहब जिस दिन हम इसकी कल्पना कर लेंगे और इस कल्पना को अपने जीवन में उतार लेंगे तो जीवन जीना बहुत ही आसान हो जाएगा और हम स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेहतनामा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान शुरू हो गया है। इन केंद्रों पर आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा मतदान अधिकारी की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्टों के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना KKNP इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने के लिए अनुमति जारी कर दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कोलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों की लगाने की अनुमति दी गई है। AERB द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को जांस्कार घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। राज्य में आज से घर घर जाकर मकान सूचीकरण गणना आरंभ होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. The Election Commission has ordered for re-polling in 15 polling stations of West Bengal today. Re-polling is being held at 11 polling stations of Mogarhat Paschim Assembly Constituency and 4 polling stations of Diamond Harbour Assembly Constituency in the state. Voting in these polling stations was held on Wednesday in the second phase of assembly elections in West Bengal. Government has said that it is ensuring preparedness and taking all necessary steps to facilitate energy supply, maritime operations and support to Indian nationals amid the evolving West Asia situation. In a statement, Ministry of Petroleum and Natural Gas said that enforcement actions to curb hoarding and black marketing of LPG is continuing across the country. More than 2,300 raids were conducted across the country. It said that online LPG cylinder bookings increased to 98% on industry basis, around 49%.

मीडियावेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज के साथ एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे हमरिकेन से देशगान। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Director who?
0: मीडियम 330.03 मीटर अर्थात 909 किलो हर्ट्ज के साथ FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रातः के 7:18 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे केंद्र से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
5: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
6: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त

0: करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाए।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में इस बार भीषण गर्मी और कम वर्षा की आशंका, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को किया अलर्ट। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में श्रमिकों से जुड़ी कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा श्रमिकों के कल्याण के लिए मजबूती से कार्य कर रही डबल इंजन की सरकार। प्रदेश में आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक अवकाश, काम के तय घंटे और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए बने नियम हुए लागू। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 15 जून से शुरू होगी वाणिज्यिक उड़ान परिचालन की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में कृषि, जलशक्ति, पशुधन, समाज कल्याण एवं उद्यान विभाग के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भीषण गर्मी एवं संभावित अल्पवृष्टि के दृष्टिगत पेयजल, सिंचाई एवं राहत प्रबंधन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश में कहीं भी पेयजल की कमी न हो, इसके लिए पाइप योजनाओं के साथ टैंकर सहित सभी वैकल्पिक योजनाएं पूर्णतः तैयार रखी जाएं। साथ ही 15 जून से 30 जुलाई के बीच स्थिति का आकलन कर आवश्यकता पड़ने पर सूखा घोषित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी। श्री योगी ने निर्देश दिए कि 30 मई तक नहरों, तालाबों एवं पोखरों की डीसिल्टिंग हर हाल में पूर्ण की जाए तथा जल संरक्षण को अभियान के रूप में आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि तालाबों से निकली मिट्टी प्रजापति समाज एवं पारंपरिक कुम्हार शिल्पकारों को निःशुल्क उपलब्ध कराकर आजीविका संवर्धन को भी प्रोत्साहन दिया जाए। मुख्यमंत्री ने वैकल्पिक सिंचाई व्यवस्था, नलकूपों की सक्रियता एवं सिंचाई के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ टेल फीडिंग के माध्यम से अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने पर विशेष जोर दिया। श्री योगी ने शासन से जनपद स्तर तक 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम संचालित करने तथा नियमित सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव एवं DGP को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों के हित में बीज, फसल बीमा, ऋण एवं खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने, पशुधन संरक्षण तथा अर्ली वेदर वार्निंग सिस्टम के माध्यम से मौसम संबंधी सूचनाएं समय समय पर आमजन तक पहुंचाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिक दिवस के अवसर पर कल लखनऊ में आयोजित श्रमवीर गौरव समारोह का शुभारंभ करते हुए श्रमिकों से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही अटल आवासीय विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र और टैबलेट तथा अपने श्रम से देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देने वाले श्रमिकों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता और मजबूती के साथ कार्य कर रही है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में कम से कम 1 करोड़ श्रमिक परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ पहुंचाना है।
3: यह डबल इंजन की सरकार संकट में खड़ी होने वाली सरकार है, चाहे वह खेतीहर मजदूर हो, चाहे वह निर्माण श्रमिक हो, चाहे वह विभिन्न अथॉरिटी में काम करने वाले श्रमिक हो, चाहे वह औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले हमारे श्रमिक। इन सब के उत्थान के लिए, इन सब के संरक्षण के लिए ये डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने श्रमिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी की व्यवस्था की।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों को अब अपने ही राज्य में रोजगार मिल रहा है।
3: ये डबल इंजन की सरकार संकट में खड़ी होने।
2: समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज हर क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

0: माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी श्रमिकों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। इन निर्णयों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के श्रमिक जनों में, उनके परिवार में, जीवन स्तर में बढ़ोतरी हुई है, बदलाव आया है और आशा की किरण जो लंबे समय से आप देख रहे थे कि हमारे घर में कब रोशनी आएगी, वो सब पूरा हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ हर सेक्टर में आगे बढ़ा है।
1: श्रमिक दिवस पर प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। गोरखपुर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में श्रमिकों की 188 बेटियां विवाह के बंधन में बंधी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए नए नियम लागू किए हैं। नए नियमों के अनुसार अब किसी भी आउटसोर्स या अनुबंध कर्मचारी से लगातार 7 दिनों तक काम लेना अवैध होगा। प्रतिदिन कार्य के लिए 8 से 9 घंटे निर्धारित किए गए हैं। 6 दिन के निरंतर कार्य के पश्चात 1 दिन का साप्ताहिक अवकाश देना अनिवार्य है। साथ ही 1 साल में 10 दिन का आकस्मिक अवकाश सुनिश्चित कर कर्मचारियों के शोषण पर रोक लगाने की पहल की गई है। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने कल श्रमिक दिवस पर यह जानकारी देते हुए बताया कि नए नियमों के लागू होने से कर्मचारियों के शोषण पर अंकुश लग सकेगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रशासन ने 15 जून 2026 से हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान परिचालन की शुरुआत करने की घोषणा की है। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर भारत में यात्रियों, एयरलाइंस और कार्गो परिचालन के लिए एक नया द्वार खुल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हवाई अड्डे का उद्घाटन और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो से मंजूरी मिलने के बाद सेवाओं की शुरुआत होगी। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इंडिगो एयरलाइन अपनी पहली उड़ान संचालित करेगी। इसके बाद अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस अपनी उड़ानों का परिचालन करेगी। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन नियम 2026 कल से लागू कर दिए गए। एक रिपोर्ट।
2: नए नियमों के अंतर्गत ऑनलाइन पैसे वाले खेलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनमें वे खेल भी शामिल हैं जो संयोग, कौशल या दोनों के मिश्रण पर आधारित हैं। इन नियमों से खेलों के विज्ञापन और ऐसे प्लेटफॉर्मों से जुड़े वित्तीय लेनदेन पर भी रोक लगाई गई है। नियमों के उल्लंघन पर कारावास और जुर्माने सहित कठोर दंड दिए जा सकते हैं। इन नियमों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक एकीकृत नियामक के रूप में भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना की गई है। नियमों के अनुसार कुछ श्रेणियों के खेलों के लिए पंजीकरण प्रणाली भी शुरू की गई है। शिकायत निवारण के लिए 2-स्तरीय प्रणाली लागू की गई है जिससे उपयोगकर्ता प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। सुपर्ण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायक उत्पाद सूची NLEP पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए कई मानक जारी किए हैं।
3: BIS द्वारा कोहनी, बैसाखी, चलने वाली छड़ियां और 3 या अधिक पैरों वाली चलने की छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए गए हैं। इसके अलावा BIS ने स्पर्शनीय मार्गदर्शक मानचित्रों के सुलभ डिजाइन, सूचना सामग्री, चित्रांकन और प्रदर्शन विधियों, साइनेज उपकरण और उपकरणों पर ब्रेल के अनुप्रयोग और पोर्टेबल रैंप के लिए भी मानक प्रकाशित किए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: LPG के 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 993 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। संशोधित कीमत कल से ही प्रभावी हो गई। हालांकि घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उधर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में इस बार भीषण गर्मी और कम वर्षा की आशंका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को किया अलर्ट। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में श्रमिकों से जुड़ी कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, श्रमिकों के कल्याण के लिए मजबूती से कार्य कर रही डबल इंजन की सरकार। प्रदेश में आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक अवकाश, काम के तय घंटे और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए बने नियम हुए लागू। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 15 जून से शुरू होगी वाणिज्यिक उड़ान परिचालन की शुरुआत। इसके साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी इस अंतराल के बाद।
3: मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
4: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
5: चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
7: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
6: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
7: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
8: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
9: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
8: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
9: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
8: डायल कीजिए 8700014242।
9: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
10: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
11: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
12: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
11: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
12: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
11: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
12: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
11: For details log on to www.ddindia.com।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म अगर तुम न होते में। गुलशन भावरा के लिखे गीत को संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। कार्यक्रम का अगला नगमा हमने लिया है फिल्म आराधना से, आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत दिया है एसडी बर्मन ने और आवाज किशोर कुमार की।

और आइए मुकेश को सुनते हैं फिल्म संगम में। शब्द रचना शैलेंद्र की है और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

और आइए लता मंगेशकर को सुनते हैं फिल्म खिलौना में। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

आप सुन रहे हैं आशा भोसले को फिल्म साहिब बीबी और गोलब में। शब्द रचना शकील बदायूनी की है और संगीत हेमंत कुमार का है।

0: आप सुन रहे थे आशा भोसले को फिल्म साहिब बीबी और गुलाम में। गीत लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीत दिया था हेमंत कुमार ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी अब यहीं पर संपन्न होता। मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो घड़ी में प्रातः के 7:59 और 45 सेकंड हो रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में बारी बारी से समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया। कहा, ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में भारत की पुरुष टीम डेनमार्क में थॉमस कप के सेमीफाइनल में फ्रांस से खेलेगी और भारतीय फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद AFC अंडर-17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
2: पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान शुरू हो गया है। इनमें से 11 बूथ पश्चिम मगराहाट में और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में है। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष पीठ का गठन किया है जो तृणमूल कांग्रेस की उस अपील पर तत्काल सुनवाई करेगी जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मतगणना केंद्रों के कर्मचारियों को केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ आज सुबह करीब 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अदालत मतगणना कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में चुनाव आयोग के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है।
3: गृह मंत्रालय ने बताया है कि ये प्रक्रिया इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी जिसके दौरान प्रशिक्षित जनगणना कर्मी घर घर जाकर आंकड़े एकत्रित करेंगे। इस बीच जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना सुविधा कल दिल्ली नगर निगम क्षेत्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में शुरू हो गई है। ये ऑनलाइन सुविधा इस महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध रहेगी जिसके बाद इन राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में 16 मई से 14 जून के बीच घर घर जाकर जनगणना कार्य किया जाएगा। जनगणना 2027 में पहली बार शुरू की गई इस सुविधा को जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। जनगणना 2027 के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के तहत अब तक लगभग 82 लाख परिवारों ने आधिकारिक पोर्टल sc.census.gov.in के माध्यम से इस सुविधा का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर

0: 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना KKNP इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने की अनुमति दे दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कूलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों को लगाने की अनुमति दी गई है। AERB द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देशभर में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। देशभर में कल 2,300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। सरकार ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान भारतीय ध्वज वाले किसी भी पोत के साथ किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि उड़ान की स्थिति में सुधार हो रहा है और क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से भारत के लिए अतिरिक्त उड़ानें चलाई जा रही हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने ईरान से बाहर निकलने के लिए 2,490 भारतीय नागरिकों को सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कहा है कि चलन में मौजूद 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के 98.47% नोट वापसी की घोषणा के 3 साल बाद बैंक में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रा प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में 19 मई 2023 को 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय प्रचलन में ऐसे नोटों की कुल कीमत लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल 2026 तक ये आंकड़ा तेजी से घटकर 5,451 करोड़ रुपए हो गया है। नोटबंदी की घोषणा के बाद से 2,000 रुपए के नोटों को बदलने की सुविधा 19 RBI कार्यालयों में उपलब्ध है। RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि वापसी के बावजूद 2,000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 4 साल पहले लागू हुए भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA ने भारतीय किसानों, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों और अन्य व्यवसायों के लिए परिवर्तनकारी अवसर पैदा किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और UAE के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध मजबूती से आगे बढ़ते हुए 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
2: श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। फार्स समाचार एजेंसी सहित ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि देश का नेतृत्व आंतरिक अस्थिरता की अटकलों को निराधार सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है। यह राजनयिक गतिरोध पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ती हिंसा के बीच आया है। उधर लेबनान में इसराइली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। पिछले महीने अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हमलों में दक्षिणी शहर टायर में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए जिसमें कई इसराइली सैनिक घायल हो गए। लेबनान में चल रहे संघर्ष में अब तक 2000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: टेनिस में मैड्रिड ओपन के महिला एकल फाइनल में मीरा एंड्रीवा का सामना आज यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक से होगा। मीरा एंड्रीवा ने पिछले गुरुवार को सेमीफाइनल में अमेरिका की हेली बैप्टिस्ट को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं मार्टा कोत्स्युक ने अनास्तासिया पोटापोवा को हराकर अपने करियर के पहले WTA फाइनल में जगह बनाई। पुरुष एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जैनिक सिनर ने कल आर्थर फिल्स को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन में डेनमार्क के होर्सन्स में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। लक्ष्य सेन ने पहले मैच में चोउ तिएन चेन को हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चिउ हिस्यांग चिए और वांग चीलिन को हराया। अंत में आयुष शेट्टी ने लिन चुन यी को हराकर टीम की जीत सुनिश्चित की। पीवी सिंधु की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम उबर कप 2026 में ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई। चीन के खिलाफ हार के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंटी ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर और 1 गेंद में 3

0: न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनक। वाणिज्यिक LPG सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी आज के अखबारों की पहली खबर है। देशबंधु लिखता है गैस सिलेंडर के दाम में 973 रुपए की बढ़ोतरी। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है दाम 3000 के पार। अमर उजाला ने महंगाई का वार शीर्षक से लिखा है 5 किलो वाले छोटू के दाम 261 रुपए बढ़े। पत्र ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री

0: सूरत में देश के पहले बैरियर फ्री टोल प्लाजा की तस्वीर भी दी है। बरगी डैम क्रूज हादसे की दर्दनाक खबर अनेक अखबारों के पहले पृष्ठ पर है। मां के सीने से लिपटे बच्चे के शव का सिहरन पैदा कर देने वाला चित्र देते हुए राजस्थान पत्रिका लिखता है, सांसें थम गई पर मां की बाहें नहीं खुली। लोक सत्य के शब्द हैं, मां की ममता लाइफ जैकेट में छिपा लिया जिगर का टुकड़ा। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है, डूबा क्रूज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से संचालित किया जा रहा था, इसीलिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होगा। केवल घटना पर शोक जताने या फिर मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा मात्र से कर्तव्य की तिश्री नहीं की जानी चाहिए। पत्र लिखता है, ये कहने में हर्ज नहीं कि भारत में हर स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने का शर्मनाक सिलसिला जारी है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया, कहा ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में थॉमस कप के सेमीफाइनल में डेनमार्क में भारत की पुरुष टीम का सामना फ्रांस से और भारत की महिला फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद AFC अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Repolling begins in 15 polling stations of 2 assembly constituencies in West Bengal. Field operations for house listing and housing census under phase 1 commence in 5 states and 1 union territory. IMD forecasts very heavy rainfall over northeast region and southern peninsula today. US President Donald Trump rejects Iran's proposal to end ongoing conflict, says Iran is seeking concessions they cannot accept. In badminton, Indian men's team to take on France in semi-finals of Thomas Cup in Denmark. And in football, Indian women team all set to play in AFC Under 17 Women's Asian Cup after 21 years in China. Repolling has started in 15 booths in 2 constituencies in West Bengal from 7 in the morning today. More details on this from our correspondent.
3: Among these, 11 are in Poshim Ograhat and 4 booths are in Diamond Harbour Assembly constituency. Election Commission has ordered repolling after irregularities were reported. Meanwhile, in another development, a special bench has been set up by Supreme Court to urgently hear the Trinamool Congress's appeal against the Calcutta High Court order that restricted counting centre staff to central government employees only. The bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Jayamallo Bagchi will take up the matter today. Since vote counting scheduled for Monday, the Trinamool Congress requested an urgent hearing. Day before yesterday, Calcutta High Court Justice Krishna Rao dismissed the Trinamool Congress's petition, stating that the court cannot interfere in the Election Commission's decision on recruitment of counting personnel. In response, the party rushed to the Supreme Court. Despite today being a holiday, the apex court has constituted

0: वर्जी पर तश्वीश का इजहार किया जा रहा है। इन हमलों में जनूबी शहर सूर में शहरी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया, जबकि कई सरहदी कस्बों में लोगों से इलाके को खाली करने के अहकाम जारी किए गए। हिजबुल्लाह ने जवाबी हमले किए हैं, जिनमें एक ड्रोन हमला भी शामिल है, जिसकी वजह से शिमाली इलाके में इसराइली फौजी जख्मी हो गए। लबनान में इस सरहदी जंग में अभी तक 2,000 से ज्यादा लोग हलाक और 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात ने आसाम, मेघालय, सिक्किम और जैली हिमालयी मगरी बंगाल में आज शदीद से शदीद तर बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला और माहे में भी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमे ने अलबत्ता साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक और तमिलनाडु में आज गर्म मरतूब मौसम रहने का इम्कान जाहिर किया है। महकमे ने पेशगोई की है कि जम्मू कश्मीर में आमतौर पर मतला अब्र आलूद रहेगा और अगले 3 दिन में गरज चमक और 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। महकमे ने एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें बारिश और तेज हवाओं के मद्देनजर इस दौरान किसानों से कहा गया है कि वो खेतों में अपना कामकाज मुअत्तल रखें। वंदे भारत एक्सप्रेस ने आज से जम्मू और कश्मीर वादी के दरमियान मुसलसल रेल खिदमात बाजाबता तौर पर शुरू कर दी हैं। सुबह 6:20 पर यह रेलगाड़ी जम्मू से रवाना हुई, जो इस खित्ते में रेल राब्तों को मजीद बेहतर करने की समत एक अहम कदम है। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने इस रेल खिदमात का जुमेरात को इफ्तिताह किया था। एटमी तवानाई के इंजिबाती बोर्ड AERB ने कुडमकुलम न्यूक्लियाई तवानाई प्रोजेक्ट के यूनिट 5 और 6 में अहम आलात नस्ब किए जाने का इजाजतनामा जारी कर दिया है। इस इजाजत के तहत न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को यह अख्तियार हासिल हो गया है कि वो रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर्स और कूलेंट पंपों के प्लांट्स पर अहम आलात नस्ब कर सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि तकरीबन 3 साल पहले 2,000 रुपये के करंसी नोटों को वापस लेने का ऐलान किया गया था, जिनमें से 98.47% नोट वापस लिए जा चुके हैं। RBI ने करंसी के बंदोबस्त से मुतालिक अपने कामकाज के हिस्से के तौर पर 19 मई 2023 को 2,000 रुपये के नोटों को वापस लेने का ऐलान किया था। ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक इस रकम में बहुत तेजी से कमी आई है और ये 30 अप्रैल 2026 को 5,451 करोड़ रुपये थी। 2,000 रुपये के नोटों को बदलने की सहूलत RBI के 19 दफ्तरों में उसी वक्त से दस्तयाब है, जब से इन नोटों की वापसी का ऐलान किया गया था। पंचायती राज की वजारत आज हैदराबाद में आत्मनिर्भर पंचायत पहल से मुतालिक एक वर्कशॉप का एहतमाम करेगी। हर एक तक रसाई से मुतालिक इस वर्कशॉप में आत्मनिर्भर पंचायत प्रोग्राम के विजन, मकासिद और अमल आवरी के फ्रेमवर्क के बारे में शराकतदारों को रोशनास कराया जाएगा। ये प्रोग्राम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायती राज की वजारत की पहल है। पंचायती राज की वजारत के सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज अपने कलीदी खुतबे में प्रोग्राम के विजन का खाका पेश करेंगे। इस मौके पर आत्मनिर्भर पंचायत पोर्टल के कामकाज का बराह रास्त मुजाहरा पेश किया जाएगा। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत मुतहदा अरब अमारात जामे इक्तसादी शराकतदारी माहदे CEPA से, जो 4 साल पहले अमल में आया था, भारतीय किसानों, MSMEs और दीगर तरह के कारोबार को यकसर तब्दीली लाने वाले मौके हासिल हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि भारत और मुतहदा अरब अमारात के दरमियान दो तरफा तजारती ताल्लुकात में काफी मजबूती आई है और यह तजारत 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो गई है। बैडमिंटन में आज डेनमार्क के हॉर्सेंस शहर में थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल्स में भारतीय मर्दों की बैडमिंटन टीम का मुकाबला फ्रांस से होगा। क्वार्टर फाइनल्स में चीनी ताइपाई को 3-0 से हराने के बाद भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। भारत की तरफ से लक्ष्य सेन ने बेहतरीन शुरुआत की और एक सनसनीखेज मुकाबले में आलमी नंबर 6 खिलाड़ी को 18-21, 22-20, 21-17 से शिकस्त दी, जबकि सत्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की डबल्स की जोड़ी ने एक सख्त मुकाबले में चियोसियांग शी और वैंग ची लिन की जोड़ी को 23-21, 19-21, 21-12 से हराकर सबकत हासिल की। फुटबॉल में भारत 2005 के बाद से अब तक 17 साल की उम्र तक के AFC खवातीन एशियाई कप में अपनी पहली कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा। आज भारतीय टीम का मुकाबला चीन में ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 5:00 PM शुरू होगा। ٹینس میں میڈرڈ اوپن میں آج خواتین کے سنگلز کے فائنل میں نویں سیڈ کی میرا اینڈریوا کا مقابلہ یوکرین کی مارٹا کیوتسک سے ہوگا. نویں سیڈ کی میرا نے اسپین کی راجدھانی میں جمعرات کے روز کھیلے گئے سیمی فائنل مقابلے میں امریکہ کی ہیلی بیپٹس کو شکست دی تھی، جبکہ مارتا کوستک میڈرڈ میں جاری ڈبلیو ٹی اے 1000 مقابلے میں پہلی مرتبہ فائنل میں پہنچی ہیں. مردوں کے سنگلز میں اعلیٰ درجے کے کھلاڑی جینک سنر نے کل آرتھر فیلز کو 6-2 6-4 سے ہرا کر فائنل میں جگہ بنا لی ہے. یہ ان کی 22ویں جیت تھی. بوتسوانا کے شہر گیبرون میں آج سے شروع ہونے والے عالمی ایتھلیٹکس ریلیز 2026 میں 21 ارکان پر مشتمل بھارتی ٹیم 5 مقابلوں میں حصہ لے گی. یہ مقابلے 3 مئی کو اختتام پذیر ہوں گے. بھارتی ٹیم 6 میں سے 5 مقابلوں میں حصہ لے رہی ہے. اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر.
1: شکریہ شبانہ. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخباروں نے مغربی بنگال کی 2 اسمبلی سیٹوں کے 15 پولنگ بوتھوں پر آج دوبارہ پولنگ کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے. خبروں کے مطابق ای وی ایم سے چھیڑ چھاڑ اور تشدد کی شکایت کے پیش نظر انتخابی کمیشن نے یہ فیصلہ لیا ہے. روزنامہ انقلاب و پرتاب نے راجدھانی دلی میں ڈیجیٹل مردم شماری کے آغاز کی خبر کو اہمیت دی ہے. اس بار اس عمل میں آر ڈبلیو اے کو بھی اہلکاروں کی مدد کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے. تجارت اور صنعت کی وزارت کے مطابق بھارت اور تنزانیہ کے درمیان مالی سال 2025-26 میں دو طرفہ تجارت 9 بلین ڈالر سے تجاوز کر گئی. بھارت کے چیف جسٹس سوریا کانت نے سکم کو ملک کی پہلی پیپر لیس ریاستی عدالت قرار دیا. ان خبروں کو روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے. خزانے کے وزیر مملکت پنکج چودھری نے 70ویں انفورسمنٹ ڈے کی تقریب میں ای ڈی کی کامیابیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ مالی جرائم کے خلاف ای ڈی مضبوط ڈھال کی طرح کام کر رہا ہے. اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے.
0: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. مغربی بنگال میں 2 اسمبلی حلقوں کے 15 پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ ووٹ ڈالنے کا عمل شروع ہو گیا ہے. 5 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 1 علاقے میں پہلے مرحلے کے تحت گھر گھر جا کر مکانات کی فہرست تیار کرنے اور ان کی گنتی کرنے کا کام شروع ہو گیا ہے. آئی ایم ڈی نے شمال مشرقی خطے اور جنوبی جزیرہ نما میں آج بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جاری تنازع کو ختم کرنے کی ایران کی تجویز مسترد کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایران ایسی رعایتیں چاہتا ہے جنہیں وہ قبول نہیں کر سکتے. اور بیڈمنٹن میں ڈنمارک میں تھامس کپ کے سیمی فائنلز میں بھارتی مردوں کی ٹیم فرانس کے ساتھ کھیلے گی. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.
2: میڈیم ویب 330.03 میٹر ارتھات 909 کلو ہرٹز کے ساتھ ایف ایم 110.1 میگا ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا گورکھپور کیندر ہے. لیجیے پرستوت ہے فلم سنگیت کا کاریکرم ہٹس سپر ہٹ.

अच्छा भोसले और उदित नारायण के गाए फिल्म प्यार तो होना ही था के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम एफ 330.03 मीटर अर्थात 909 किलो हर्ट्स के साथ एफएम 100.1 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए अमरोहा और ललितपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अमरोहा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मरगूब हुसैन का।
2: नारी शक्ति वंदन अधिनियम को विपक्ष द्वारा लोकसभा में समर्थन न देने पर अमरोहा में 25 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी द्वारा नारी शक्ति का स्वाभिमान विपक्ष ने किया फिर अपमान नारे के साथ महिला जनाक्रोश सम्मेलन एवं पैदल मार्च का आयोजन किया गया। इस मौके पर पैदल मार्च निकाला गया और विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मुख्य अतिथि वन पर्यावरण जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री एवं जनपद के प्रभारी केपी मलिक ने कहा कि विपक्ष अपने परिवार की महिलाओं को तो आगे बढ़ाने का काम करता है लेकिन आम महिलाओं को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। इसके लिए देश की आधी आबादी कभी माफ नहीं करने वाली है। अमरोहा में नवागत जिलाधिकारी नितिन गौड़ ने 20 अप्रैल को कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया से बात करते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन तथा हर पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुँचाना सुदृढ़ कानून व्यवस्था के साथ ही जन समस्याओं शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से निस्तारण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगा। उन्होंने कहा कि
3: लॉ एंड ऑर्डर सबसे इम्पोर्टेंट है। विकास उन्मुखी योजनाएं उनका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे वो प्रायोरिटी रहेगी। किसानोन्मुखी योजनाएं जैसे फार्मर सेंट्रिक इनिशिएटिव बोलते हैं जिसमें टाइमली प्रोक्योरमेंट और MSP पे उसकी खरीदारी और सभी एग्री सपोर्ट सिस्टम्स को विकसित करना वो प्राथमिकता पे रहेगा। इसके अलावा हेल्थ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सब सेंटर्स इनको स्ट्रेंथन करना इन कैपेसिटी बिल्डिंग करना और इनमें OPD और IPD का संचालन और सभी जगह एसेंशियल ड्रग लिस्ट की अवेलेबिलिटी इंश्योर करना वो प्राथमिकता में रहेगा। इसके अलावा एजुकेशन में राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के प्रावधानों का इम्प्लीमेंटेशन करना।
2: अमरोहा में 26 अप्रैल को रिजर्व पुलिस लाइन में आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2025 बैच के 194 पुलिस कर्मियों का दीक्षांत परेड समारोह गरिमामयी वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक नोएडा अजय कुमार की उपस्थिति में परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी नितिन गौड़ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षकों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। उन्होंने नव आरक्षियों को कर्तव्यनिष्ठा ईमानदारी एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि
4: रिक्रूट आरक्षियों का शानदार प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ है और उसी का परिणाम है कि एक शानदार परेड और भव्य परेड आपने यहां पर देखी है। ये सभी 194 रिक्रूट आरक्षी परेड में भाग लिया है। सभी शारीरिक रूप से मानसिक रूप से भावनात्मक रूप से पूरी तरह से दक्ष करके अब फील्ड में जा रहे हैं और ये बहुत शानदार प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो 9 माह चला है।
2: अमरोहा में 15 अप्रैल को सांसद कंवर सिंह तंवर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आहूत की गई। इस मौके पर सांसद ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिलना चाहिए। ऐसे में योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बैठक में विधायक समरपाल सिंह MLC जयपाल सिंह व्यस्त एवं सतपाल सिंह सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। अमरोहा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 23 अप्रैल को छापेमारी कर डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव ढकिया चमन में एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थों को खुले में बेचने के बड़े धंधे का पर्दाफाश किया। इस दौरान बड़ी मात्रा में बरामद एक्सपायरी खाद्य पदार्थ की अनुमानित कीमत 7 लाख रुपए से अधिक पाई गई। बरामद खाद्य पदार्थ में चिप्स विभिन्न प्रकार की नमकीन रस्क नूडल पैकिंग की काजू बर्फी खुली नमकीन इत्यादि शामिल है। बताया जा रहा है कि यह एक्सपायरी खाद्य पदार्थ खोलकर गांव आपूर्ति किए जा रहे थे। खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त विनय कुमार अग्रवाल ने बताया कि विभाग ने समस्त स्टॉक के गोदाम को सीज कर दिया है और अवैध कारोबारी को नोटिस जारी किया गया है।
1: अमरोहा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं ललितपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार श्रीमाली का।
5: ललितपुर में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित है। गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। अब प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी परिषदीय CBSE, ISCI और UP बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षण कार्य सुबह 7:30 से 11:30 तक संचालित किया जा रहा है। वही शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को दोपहर 1 तक विद्यालय में उपस्थित रहकर अन्य कार्यों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है। लोगों से अपील की गई है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और बच्चों एवं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने नगर पालिका और सभी

0: नगर पंचायतों को पेयजल की समुचित व्यवस्था, सार्वजनिक स्थानों पर छायादार इंतजाम और अन्य जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
1: नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी वाटर कूलर लगे हैं या पानी के जो साधन हैं वो सभी फंक्शनल हो जाए, इसके लिए निर्देशित किया गया है। जो प्रशासन की तरफ से आम जनमानस के लिए सुविधाएं दी जा सकती हैं उसकी भी समीक्षा की जा रही है कि वो उपलब्ध हो जाए।
0: जिलाधिकारी सत्य प्रकाश द्वारा आयोजित दैनिक जन सुनवाई में दूर दराज से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी गईं और कई मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि जन सुनवाई का उद्देश्य केवल शिकायत सुनना नहीं बल्कि उसका समयबद्ध और संतोषजनक निस्तारण करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर शिकायत का समाधान पीड़ित की संतुष्टि के आधार पर किया जाए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गांव गांव में कैंप लगाकर पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाएं, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक जरूरतमंदों तक पहुंच सके। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिले में औद्योगिक विकास को लेकर बैठक में उद्यमियों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। औद्योगिक आस्थान चंदेरा में विद्युत आपूर्ति की समस्या को गंभीरता से लेते हुए पहले दिए गए दिशा निर्देशों के तहत अवर अभियंता और लाइनमैन की नियुक्ति का कार्य पूरा कर लिया गया है। अधिकारी ने जीबीसी रेटी इकाइयों के प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। साथ ही सभी विभागों को अपने अपने जीबीसी लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए कहा गया। अग्निशमन विभाग को भी उद्यमियों के साथ समन्वय बनाकर सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के थाना नाराहाट में नए रिक्रूट आरक्षियों का स्वागत किया गया। रिजर्व पुलिस लाइन से 21 नवनियुक्त आरक्षी, जिनमें 17 पुरुष और 4 महिला शामिल हैं, उन्होंने प्रशिक्षण पूरा कर ज्वाइन किया। इस दौरान नए जवानों को ईमानदार, अनुशासन और सेवा भावना के साथ कार्य करने की सीख दी गई। वरिष्ठ पुलिस कर्मियों ने उन्हें कार्य प्रणाली से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए और जनता के प्रति संवेदनशील रहने का संदेश दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नए जवानों के आने से क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। इनमें से 6 जवानों को अमझरा, डोंगरा और बरौदिया चौकियों पर तैनात किया गया है, जबकि शेष 15 जवान थाना नाराहाट में अपनी सेवाएं देंगे। भूमि संरक्षण इकाई ललितपुर और मेहरौनी में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 210 खेत तालाब बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के तहत किसान खेत में 22x20x3 मीटर आकार का तालाब बनवा सकते हैं। इसकी कुल लागत 1,05,000 रुपए तय की गई है, जिसमें से 50% यानी 52,500 रुपए का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। यह अनुदान 2 किस्तों में मिलेगा। पहली किस्त तालाब की खुदाई पूरी होने पर और दूसरी किस्त पानी के इनलेट निर्माण तथा बोर्ड लगाए जाने के बाद दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए किसान का कृषि विभाग में पंजीकरण होना जरूरी है और कम से कम 1 एकड़ जमीन होना अनिवार्य है। आवेदन के साथ 1,000 रुपए की टोकन मनी जमा करनी होगी और ऑनलाइन पंजीकरण के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत बने तालाबों से वर्षा जल संचयन होगा, भूजल स्तर में सुधार आएगा और किसान सिंचाई के साथ मछली पालन और अन्य जलीय खेती से अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकेंगे। प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा, साथ ही पंपलेट पर भी 50% तक का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज के साथ एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए देश गान।

0: सब बंद।
1: अभी आप सुन रहे थे देश गान। मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज के साथ एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 9:29 और 45 सेकंड हो रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम।
1: आज की उर्दू बज़्म लेकर मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब, कबूल फरमाएं। सामीन, हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ 300 से ज़ायद ज़बानें बोली जाती हैं। यहाँ की जहाँ सकाफतें मुख्तलिफ हैं, वहीं इस मुल्क के रस्म व रिवाज भी जुदा जुदा हैं। मगर इन सब के बावजूद एक चीज़ जो हमें जोड़ती है वो है हमारा कौमी परचम, तिरंगा। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि तिरंगा

0: रंगा के तीन रंग हैं, जाफरानी, सफेद और सब्ज। हर एक अपने अंदर एक पूरा पैगाम लिए हुए है। जाफरानी रंग हमें कुर्बानी, हौसला और ईसार की तालीम देता है। सफेद रंग अमन, सच्चाई और शफाफियत की अलामत है, जबकि सब्ज रंग खुशहाली, तरक्की और उम्मीद की निशानी है। इन तीनों रंगों के बीच में मौजूद अशोक चक्र हमें इंसाफ, कानून की हुक्मरानी और मुसलसल जद्दोजहद करने का दर्स देता है। सामीन, अगर हम गौर करें तो ये तीनों रंग दरअसल हमारे मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात, मजाहिब और ख्यालात की नुमाइंदगी करते हैं, मगर जब ये सब एक झंडे में यकजा होते हैं तो कसरत में वहदत का एक ताकतवर पैगाम देते हैं। सामीन, आज के दौर में जब दुनिया मुख्तलिफ किस्म के इख्तलाफात और तनाजुआत का शिकार है, ऐसे में हमारे मुल्क हिंदुस्तान का तिरंगा हमें ये सबक देता है कि हम अपनी पहचान को बरकरार रखते हुए भी एक कौम बन सकते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस तिरंगे की इज्जत और वकार को बरकरार रखना हम सब की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि लाखों कुर्बानियों, जद्दोजहद और लातादाद ख्वाबों की ताबीर है। इसलिए हमें मुआशरती, समाजी तौर पर अमन व अमान, प्यार व मोहब्बत के साथ जिंदगी जीनी चाहिए। इन्हीं सब बातों के पेश नज़र आज हमने एहतमाम किया है एक मुबाइसे का। मौजू है मुख्तलिफ रंगों पर तिरंगा एक। इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज की उर्दू बज़्म में हमारे साथ तशरीफ फरमा है जनाब सिराज अहमद साहब, मारूफ सहाफी, मोहतरमा शहनाज सिदरत साहिबा, सदर बज़्म ख़वातीन लखनऊ, और नाचीज सैयद मोहम्मद उमेर। हम सबसे पहले अपने दोनों खुसूसी मेहमान का आज के उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और अब बगैर किसी ताखीर और तमहीद सिराज साहब से सवाल है, मुख्तलिफ रंगों पर तिरंगा एक के तस्वुर को हिंदुस्तानी माशरे में आप हमारे सामीन के सामने कैसे बयान करेंगे, इसकी वजाहत फरमाएं।
1: आपका बहुत बेहतरीन सवाल है। मुख्तलिफ रंग पर तिरंगा एक का तस्वुर दरअसल हिंदुस्तान की खूबसूरती और उसकी असल पहचान को जाहिर करता है।
0: जी,
1: हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ मजाहिब, जबानें, सकाफतें, रस्म व रवाज और रवायात पाई जाती हैं, मगर इन सब के बावजूद एक मजबूत इत्तेहाद मौजूद है। इस तस्वुर को पेश करने के लिए हम एक ऐसी तस्वीर या मंजर कशी कर सकते हैं जिसमें मुख्तलिफ लिबास पहने हुए लोग, जैसे सिख, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, एक साथ खड़े हों और सबके हाथ में तिरंगा हो। ये तस्वीर ये पैगाम देती है कि चाहे हमारे पहचान अलग हो, मगर हमारा वतन एक है। स्कूलों में तकरीबात व जलसों के जरिए इस ख्याल को मजीद मजबूत बनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर बच्चों को मुख्तलिफ रियासतों के लिबास पहना कर एक प्रोग्राम करवाया जाए जिसके आखिर में सब मिलकर कौमी तराना गाएं। ये तस्वुर हमें ये भी सिखाता है कि इख्तलाफात को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत समझना चाहिए। जब मुख्तलिफ रंग मिलकर एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं, वैसे ही मुख्तलिफ लोग मिलकर एक मजबूत कौम बनाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ सकाफतों के दरमियान हम आहंगी पैदा करना भी ज़रूरी है ताकि माशरा मजबूत बुनियादों पर कायम रह सके। जब लोग एक दूसरे के रस्म रवाज और इकदार का एहतराम करते हैं तो बहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो जाते हैं।
0: बहुत अच्छा कह रहे हैं आप। मुख्तलिफ रंगों पर तिरंगा एक का तसव्वुर हिंदुस्तानी माशरे की खूबसूरती को जाहिर करता है, जहाँ मुख्तलिफ मजाहिब, जबानें और सकाफतें एक कौमी शनाख्त में मुत्तहिद हैं, गोया कसरत में वहदत का एक बेहतरीन नमूना पेश करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई। एक सवाल सिदत साहिबा से लेंगे। शहनाज सिदत साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्तलिफ जबानों और सकाफतों के होते हुए एक मजबूत कौमी शनाख्त कैसे कायम की जा सकती है, इस पर इजहार ख्याल फरमाएं।
2: बहुत शुक्रिया उमेर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि इस वक्त की जो मौजूदा हालात हैं उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम कौमी शनाख्त को अपनी उजागर करें और हमें ऐसा मौका दिया जाए। कौमी शनाख्त का मतलब ये होता है कि हमारी जो पहचान है, जब हम बाहर जाते हैं और हमारी एक भारतीय होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते एक पहचान बनती है, और वो पहचान बनती है हमारे संविधान से, हमारे लोकतंत्र से।

0: और जो हमारी सकाफत है, जो संस्कृति हम लोगों की है, उससे बनती है। तो जब ये चीजें हम इकट्ठा करते हैं और हमारे अंदर वो चीजें आती हैं, वही हमारी पहचान है कि हम हिंदुस्तानी हैं। ये हमें मजबूती देती है। तो ये जो शनाख्त हमारी है, इसको हमें परमानेंट मजबूत करने की जरूरत है।
1: बहुत अच्छा कह रही आपने जो बात कही आइन के ताल्लुक से, वो बहुत उम्दा बात कही आपने कि आइन की पासदारी, एक दूसरे की सकाफती प्रोग्रामों का एहतराम करना और मुश्तरका कौमी अकदार को अपनाने से मजबूत कौमी शनाख्त कायम हो सकती है। ये आप कह रही हैं, बहुत अच्छा कह रही हैं। एक और सवाल सिराज साहब से करेंगे, कौमी परचम तिरंगा के एहतराम को हम रोजमर्रा जिंदगी में कैसे यकीनी बना सकते हैं, इसकी आप वसात फरमाएं।
2: बहुत ही बेहतरीन आपने सवाल उठाया है कि कौमी परचम तिरंगा हमारे मुल्क की शान और कुर्बानियों की अलामत है, इसलिए इसका एहतराम करना हर शहरी की जिम्मेदारी है। रोजमर्रा जिंदगी में इसका एहतराम करने के लिए कई तरीके हैं। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि तिरंगा सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, बल्कि एक अलामत है जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। जब भी हम परचम को देखें, हमें दिल में इज्जत और फख्र महसूस होना चाहिए। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि तिरंगा ज़मीन पर न गिरे, न फटे और ना ही इसका गलत इस्तेमाल हो। कौमी त्योहारों जैसे यौम आज़ादी, यौम जम्हूरिया पर चम को सही तरीके से लहराना चाहिए। बाद में उसे इज्जत के साथ महफूज रखना चाहिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी हमें परचम का एहतराम करना चाहिए। इसे मजाक या गैर मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बच्चों को भी शुरू से ही इसकी अहमियत बताई जाए ताकि वो जिम्मेदार शहरी बन सके। ये छोटे छोटे अमल मिलकर एक बड़े जज्बे को जन्म देते हैं जो मुल्क के लिए मोहब्बत और एहतराम को जाहिर करता है।
1: बहुत अच्छा कह रहे हैं आप कि कौमी परचम तिरंगे की इज्जत, उसके कवानीन की पाबंदी और कौमी मौके पर तिरंगा के ताल्लुक से अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही हमारे अंदर तिरंगा के एहतराम को यकीनी बना सकता है। बहुत अच्छा आपने कहा। एक सवाल सिरा साहिबा से लेंगे। सिरा साहिबा, क्या मुख्तलिफ त्यौहार जैसे कि ईद, होली, दिवाली, शब बारात और दीगर कौमी यकजहती को फरोग देते हैं, और कैसे देते हैं, इसकी वजाहत फरमाएं।
0: जी, बहुत आपने बेहतर कहा कि जो हमारे कौमी त्यौहार हैं, कौमी त्यौहार तो 15 अगस्त और 26 जनवरी हैं, लेकिन जो इसके अलावा जो हमारे मजहबी प्रोग्राम हैं जैसे ईद है, दिवाली है, होली है, और ये वाकई में हमारी मुश्तरका सखावत की अलामत है कि ईद सब मिलने आते हैं, होली, और मैं तो लगता है मुझे कि होली और ईद एक ही जैसी होती है, गले मिलने वाली, कि अपने जितने भी नफरतें हैं वो हटाइए और मोहब्बत से एक दूसरे के गले मिलिए। तो एक ये यकजहती को फ़रोग देने का बहुत बड़ा जरिया है। और आप देखते ना कि ईद में सारे हमारे हिंदू दोस्त हमारे घर आते हैं और होली दिवाली में हम उनके यहाँ मिलने जाते हैं, तहाइफ एक दूसरे को देते हैं और एक दूसरे की जो सखाफत है उसका एहतराम करते हैं, उन चीजों का एहतराम करते हैं और उससे मोहब्बत बढ़ती है। तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी चीज है कि जो तिरंगे के जो रंग है वो कौमी यकजहती को फरोग देते हैं।
1: बहुत अच्छा कहना है कि ईद हो या दिवाली हो, होली हो या शब बारात हो, कोई भी त्यौहार हो, सभी त्यौहार मिलजुल कर रहने का, भाईचारे का पैगाम देते हैं, मोहब्बत के साथ जिंदगी जीने के ताल्लुक से उभारते हैं, और यही कौमी यकजहती हिंदुस्तान को दिगर मजाहिब में फोकियत अदा करती है। बहुत अच्छी बात आपने कही। एक और सवाल यहाँ पर सिराज साहब से करेंगे। सिराज साहब, क्या आलमी सतह पर हमारे मुल्क हिंदुस्तान की पहचान कसरत में, वहदत में पोशीदा है, इस पर आप क्या कहते हैं?
2: बहुत बेहतरीन आपने सवाल उठाया। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की पहचान आलमी सतह पर कसरत में वहदत के उसूल से जुड़ी हुई है
1: जी,
2: और ये एक ऐसा नुक्ता है जो हमारे मुल्क की इनफरादियत को उजागर करता है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां दुनिया की मुख्तलिफ जबानें, मजाहिब, रवायात और सकाफतें एक साथ बसती हैं
1: जी।
2: जब हम आलमी सतह पर हिंदुस्तान को देखते हैं तो ये कसरत हमें एक खास ताकत देती है। ये सिर्फ एक जुग्राफियाई खित्ता नहीं, बल्कि एक ऐसी जमहूरियत है जहां हर शख्स को अपनी शिनाख्त बरकरार रखने और अपनी रवायात को जिंदा रखने का हक हासिल है। इस कसरत के बावजूद हम सब एक मुश्तरका मकसद, तरक्की और अमन के लिए मिलकर काम करते हैं। ये शिनाख्त हमारी जमहूरियत का सुतून है। दुनिया भर में जब लोग हिंदुस्तान को देखते हैं तो उन्हें कसरत में वहदत की मिसाल नजर

0: शक्ति है जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है। बहुत अच्छी बात आपने नौजवान नस्ल के ताल्लुक से कही। अभी आपने सोशल मीडिया का तस्करा किया, तो एक सवाल जो है सिराज साहब से करेंगे कि आज के सोशल मीडिया और जदीद जराए अबलागी दौर में कौमी परचम यानी तिरंगा हमें क्या इत्तेहाद का पैगाम देता है, इसकी वजाहत फरमाएं।
1: आपका सवाल बहुत बेहतरीन है, क्योंकि आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया एक बहुत ताकतवर जरिया बन चुका है और कौमी परचम तिरंगा इस प्लेटफार्म पर भी इत्तेहाद और एकजहती का अहम पैगाम देता है। जब लोग अपने प्रोफाइल तस्वीरों, पोस्ट्स या वीडियोस में तिरंगा इस्तेमाल करते हैं, तो दरअसल अपनी कौमी शिनाख्त और मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं। तिरंगा हमें याद दिलाता है कि चाहे हम कहीं भी हों या किसी भी पस मंजर से ताल्लुक रखते हों, हम सब एक ही मुल्क के शहरी हैं। खास तौर पर कौमी मौके जैसे यौम आज़ादी या यौम जमहूरिया पर सोशल मीडिया पर तिरंगे की मौजूदगी एक इज्तिमाई जज्बा पैदा करती है। ताहम उसके साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। हमें तिरंगे को सिर्फ एक फैशन या ट्रेंड के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके असल मतलब यानी इत्तेहाद, कुर्बानी, अमन को समझना चाहिए। गलत या गैर मुनासिब इस्तेमाल से इसकी अहमियत कम हो सकती है। अगर हम सोशल मीडिया को मस्बत अंदाज में इस्तेमाल करें और तिरंगे के जरिए इत्तेहाद का पैगाम दें, तो ये प्लेटफार्म कौमी यकजहती को मजीद मजबूत बनाने का एक मौसर जरिया बन सकता है।
0: बहुत अच्छा कहा आपने कि सोशल मीडिया के दौर में तिरंगा हमें याद दिलाता है कि हमें इख्तलाफात से ऊपर उठकर एक कौम के तौर पर मुत्तहिद रहना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए और अपनी जानिब से हर मुमकिन तआवुन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। एक और सवाल यहाँ पर सिदर साहिबा से लेंगे कि आज के प्रोग्राम के पेश नज़र आपके ख्याल में मुख्तलिफ रंग किन चीज़ों की नुमाइंदगी करते हैं और तिरंगा एक हमें क्या सबक देता है, इसकी वजाहत फरमाएं।
2: जैसा भी आपने कहा कि तिरंगे का क्या असर है, तो मैं कहना चाहूंगी कि जो कलर है तीनों हमारे, आप समझ रहे हैं कि जाफरानी है और सफेद है और हरा है, वो जो यहाँ मुख्तलिफ मजाहिब हैं उनको भी प्रेडिक्ट करता है, दिखाता है उनको कि हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, आप समझ रहे हैं सारे कलर उसमें मौजूद हैं। और वो फिर ये पैगाम देते हैं कि हम एक साथ रहते हैं, हम एक दूसरे की सखावत का एहतराम करते हैं, हम एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं, हम दूसरों की जबानों का एहतराम करते हैं। और यही वजह है कि ये जो तिरंगा है वो एक हमारी अलामत बन गया है, हमारी पहचान बन गया है। और जैसा भी भाई ने कहा कि उसका एहतराम बहुत जरूरी है, और खासकर नौजवान नस्ल जो सोशल मीडिया पे है इस वक्त, कि वो उसको कैसे इस्तेमाल कर सकती है। तो ये हमारे जो अकाबरीन हैं और हमारे जो लीडरशिप है उसको भी समझना है कि वो एक मजबूत अंदाज में इस पर काम करना शुरू करे कि ये जो चीज है ये बरकरार रहे, ये मोहब्बत बरकरार रहे और आगे बढ़े।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि मुख्तलिफ रंग मुख्तलिफ मजाहिब काफतों और ख्यालात की नुमाइंदगी करते हैं, जबकि तिरंगा एक हमें इत्तेहाद, हम आहंगी और भाईचारे का सबक देता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। यहाँ पर सिराज साहब और आप दोनों से एक सवाल करेंगे कि आकाशवाणी अपने तकरीबन 90 साल मुकम्मल कर चुका है, कौमी यकजहती और आलमी भाईचारे में आकाशवाणी रेडियो का किरदार कैसा रहा, इस पर आप किस तरीके से अपनी वजाहत फरमाते हैं हमारे सामीन के लिए, इसकी वजाहत।
2: सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगी आकाशवाणी को कि 90 साल पूरे हो रहे हैं और बहुत अच्छे अंदाज में AIR ने अपना काम पूरा किया है। और मतलब रेडियो स्टेशन ऐसी जगह थी जहां पर लोगों ने आके अपने दिल की बातें कही हैं, अपने मन की बातें कही हैं और उसका पॉजिटिव नतीजा निकला भी है। और आपको इससे अंदाजा होगा कि जो आम आदमी है, जो गांव-गांव में आदमी है, वो उसको बहुत शौक से सुनते हैं और यकजहती फैलाने में ऑल इंडिया रेडियो का बहुत रोल है। ऑल इंडिया रेडियो ने हमें बहुत मौके दिए हैं इस बारे में कि हम इस पैगाम को आगे बढ़ाएं कि हिंदुस्तान की जो मुश्तरक तहजीब है, जो हमारी सकाफत है और जो हम में आपस में मोहब्बत है, भाईचारा है, रवादारी है, वो बरकरार रहनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
2: तो असली चीज जो है ना, जो ऑल इंडिया रेडियो का जो फिक्र है कि ये जो नजरिया है कि कौमी यकजहती कैसे पनपे और कैसे बढ़े, इस पे हमें बहुत काम करने की अभी जरूरत।
0: बिल्कुल। सिराज साहब से भी हम ये सवाल करेंगे कि आकाशवाणी के 90 साल मुकम्मल हुए हैं अभी, तो कौमी यकजहती और आलमी भाईचारे में आकाशवाणी और रेडियो के किरदार को आप किस तरह देखते हैं, मजाद फरमाएं।
1: मैं सबसे पहले आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो को और यहाँ के स्टाफ को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि 90 साल मुकम्मल कामयाबी के साथ हुए हैं। रेडियो को शुरू हुए 90 साल हो चुके हैं। 1936 से लेकर 2022 तक ये सिर्फ एक रेडियो नहीं बल्कि हिंदुस्तान की धड़कन बना रहा। आज़ादी से पहले आकाशवाणी ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। आज़ादी के बाद इसने 140 करोड़ लोगों को एक साथ जोड़ा। जब मुल्क में टीवी नहीं था तब गांव-गांव में लोग ये आकाशवाणी है सुनने के लिए रेडियो के गिर्द जमा होते थे। 1962, 1965, 1971 की जंगों में इसने फौजी भाइयों का हौसला बढ़ाया। फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम से जवानों तक घर वालों का पैगाम पहुंचा। रेडियो ने सबको एहसास दिलाया कि हम एक हैं। आकाशवाणी की सबसे बड़ी ताकत उसकी जबानें हैं। ये 23 बड़ी जबानों और 179 बोलियों में प्रोग्राम नशर करता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर इलाके का शख्स अपनी जबान में रेडियो सुनता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि रेडियो जबान नहीं देखता, दिल देखता है।
0: बहुत खूब कह रहे हैं आप कि ऑल इंडिया ने गुज़िश्ता तकरीबन 90 बरसों में तालीम, मालूमात और सकाफती प्रोग्राम के जरिए कौमी यकजहती और आलमी भाईचारे को मजबूत से मजबूत तर किया है और तमाम मजाहिब के अकायद का भी भरपूर एहतराम रखा है। बहुत अच्छी बात आपने कही। सामीन, आज के मुबाइसे का लुब्बे लुबाब निचोड़ यही है कि बिलाशुबा मुख्तलिफ रंगों पर तिरंगा एक, ये महज एक जुमला नहीं बल्कि हमारे मुल्क की रूह, इसकी पहचान और इसके इतिहाद की अलामत है। लिहाजा हम सब की अपनी जिम्मेदारी है कि हम ये अहद करें कि हम अपने इख्तलाफात को बालाए ताक रख कर मुल्क की तरक्की, अमनो अमान और भाईचारे के लिए काम करेंगे। और अब हम अपने दोनों खुसूसी मेहमान जनाब सिराज अहमद साहब और मोहतरमा शहनाज सिदत साहिबा के बे इंतहा ममनून और मशकूर हैं कि आप हजरात ने हमारे सामीन के लिए बहुत ही उम्दा और अच्छी मालूमात फराहम की। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। अपने मेजबान दोस्त सैयद मोहम्मद उमेर को दीजिए इजाजत। आदाब।

0: उर्दू कार्यक्रम के तहत अभी आप समाप्त फरमा रहे थे मुबाहिसा, मुख्तलिफ रंगों पर तिरंगा एक। शरीके गुफ्तगू थे सिराज अहमद, शहनाज सिदरत।
1: मीडियम वेब 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। सुगम संगीत का कार्यक्रम प्रसारित होगा इस अंतराल के बाद।
2: चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
4: चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: शास्त्रीय संगीत नृत्य साहित्य नाट्य विधाएं धारावाहिक वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
3: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
2: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
3: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
2: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
6: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मेहदी हसन की गाई ये गजल।

0: मेडिएशन की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है, मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ, एफएम मेगा 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: लेकिन मैं लौट के बस जल्दी से आती हूँ, अब वक्त है ये समाचारों का। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो रहा है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान शुरू हो गया है। इनमें से 11 बूथ पश्चिम मगराहाट में और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में हैं। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष पीठ का गठन किया है जो तृणमूल कांग्रेस की उस अपील पर तत्काल सुनवाई करेगी जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मतगणना केंद्रों के कर्मचारियों को केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ आज सुबह करीब 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र

0: शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। आज से राज्य में घर घर जाकर मकान सूचीकरण गणना आरंभ होगी, जो 31 मई तक चलेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के तहत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें मछुआरा समुदाय के कल्याण और विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही है। कल श्रीकाकुलम जिले के एराकुलम में श्री नायडू ने कोल इंडिया लिमिटेड की सामाजिक दायित्व निधि से मत्स्य सागरमाला कार्यक्रम के तहत स्थापित सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइटों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान मछुआरों की समस्याओं को समझा था और उन्हें दूर करने के प्रयास कर रहे हैं। तेलंगाना सरकार ने शैक्षिक सामग्री वितरण में जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक नई केंद्रीकृत खरीदी नीति लागू की है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने राज्य भर के विद्यार्थियों को सभी जरूरी शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 15 जून तक की समय सीमा निर्धारित की है। एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनिफॉर्म, नोटबुक और अन्य शैक्षिक सामग्री समय पर मिलने पर छात्रों का प्रदर्शन बेहतर होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसकी पुष्टि सरकारी मीडिया ने की है। श्री ट्रंप ने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया। फ्रांस समाचार एजेंसी सहित ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि देश का नेतृत्व आंतरिक अस्थिरता की अटकलों को निराधार सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है। ये राजनयिक गतिरोध पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ते हिंसा के बीच आया है। उधर लेबनान में इजरायली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। बैडमिंटन में डेनमार्क के होर्सेंस में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। लक्ष्य सेन ने पहले मैच में चाओ तीन चेन को हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने च्यू हिंगसांग चे और वांग चीलिन को हराया। अंत में आयुष शेट्टी ने लिन चू यू को हराकर टीम की जीत सुनिश्चित की। फुटबॉल में भारतीय टीम एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समय अनुसार शाम 5 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित है आपका प्यारा रेडियो दोस्त मृत्युंजय सिन्हा।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और अनूप जलोटा को फिल्म एक दूजे के लिए में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत में पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और आइए इसी फिल्म का एक और नगमा सुनते हैं। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की।

रही लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को सुनते हैं फिल्म सरगम में। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

और आइए एक बार फिर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को सुनते हैं। फिल्म सरगम में शब्द रचना नंद बख्शी की है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

और आइए, लता मंगेशकर आइए, फिल्म अमर प्रेम का सुनते हैं ये नगमा। आवाज़ किशोर कुमार की है, गीत लिखा है नंद बख्शी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

और रही लता मंगेशकर और किशोर कुमार को सुनते हैं फिल्म आदि में। शब्द रचना गुलजार की है और संगीत आर डी बर्मन का है।

और आइए सुनते हैं फिल्म तेरे मेरे सपने में। किशोर कुमार और लता मंगेशकर को।

अभी आप सुन रहे थे तेरे मेरे सपने में किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। और आइए इसी फिल्म में सुनते हैं किशोर कुमार और उषा खन्ना को।

अभी आप सुन रहे थे तेरे मेरे सपने में किशोर कुमार को, और आइए सुनते हैं फिल्म भीगी रात में मोहम्मद रफ़ी को।

अभी आप सुने थे नींद हमारी ख्वा तुम्हारे में मोहम्मद रफ़ी को। हम आकाशवाणी की गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। समाचार कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो रहा है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद निर्वाचन आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। आज से राज्य में घर घर जाकर मकान सूचीकरण गणना आरंभ होगी, जो 31 मई तक चलेगी। नागर विमानन मंत्री के रामोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें मछुआरा समुदायों के कल्याण और विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही हैं। कल श्रीकाकुलम जिले के एर्रानुकम में श्री नायडू ने कोल इंडिया लिमिटेड की सामाजिक दायित्व निधि से मत्स्य सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइटों का उद्घाटन किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने

0: संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
1: We diversified our sources.
2: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ के व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमरीका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया। ये कदम यूरोपीय संघ और अमेरिका द्वारा ट्रंप के टर्नबेरी गोल्फ कोर्स में हुए समझौते के एक साल से भी कम समय बाद उठाया गया है। इसके अंतर्गत अधिकांश यूरोपीय वस्तुओं पर 15% शुल्क निर्धारित किया गया था। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान पर चर्चा के लिए भारत और नेपाल के बीच आज काठमांडू में एक बैठक होगी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल करेंगे। ये बैठक 30 अप्रैल और 1 मई को काठमांडू में आयोजित कोसी और गंडक परियोजनाओं पर भारत नेपाल संयुक्त समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद हो रही है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। यह आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा रन चेज है। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कुछ ही पलों में लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details, log on to www.ddindia.com।
0: लोकगीतों कार्यक्रम लोक रंग में आज की कलाकार हैं नूरजहां बेगम। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इनसे एक देवी गीत।

शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: और आइए एक बार सुनते हैं नूरजहां बेगम को।

0: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
1: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
0: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
1: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
2: ट्रैक के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
3: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
2: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी। रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
3: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलन

0: क्षमाशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
1: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: और ये लोकगीतों कार्यक्रम लोकरंग में एक बार और सुनते हैं नूरजहां बेगम को।

मटिया के मोलया ना मोल मोरे बाबूजी, मटिया के मोलया ना मोल मोरे।

अभी अब नूर जहाँ बेगम थे, ये लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
4: और आइए सुनते हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि। इसमें सबसे पहले सुनते हैं फिल्म तुम सा नहीं देखा लव स्टोरी का ये गीत।

0: अभी आप तुमसा नहीं देखा ये लव स्टोरी का ये गीत सुन रहे थे। आवाज़ें उदित नारायण और श्रेया घोषाल की थी, गीतकार थे समीर और संगीत से संवारा था नवीन नदीम श्रवण ने।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
2: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
1: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
2: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।
3: और आइए सुनते हैं फिल्म रोग में के को, संगीत से हमारा है एमएम करीन ने और गीतकार हैं नीलेश मिश्रा।

अभी उसने द फिल्म रोग में के को, और आइए सुनते हैं फिल्म। मर्डर का ये गीत, आवाजें अनुराधा पौडवाल की, हाँ, और संगीत से समारा है। अनु मलिक और गीतकार हैं सैयद कादरी।

और एक बार वो सुनते हैं फिल्म रोक का ये गीत। आवाज़ें किके की हैं और संगीत से संवारा है यमुन करीन ने।

0: अभी अपने थे फिल्म तुम था नहीं देखा, ये लव स्टोरी का एक गीत। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
2: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
1: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
2: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
2: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
1: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
2: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।
3: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं नाटक, शीर्षक है एग्रीमेंट।

0: राधा डार्लिंग, अरे आज ये तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है?
1: रंग कैसे चढ़ जाएगा? पहले आप ऑफिस के कपड़े उतारिए और मेरे सामने आराम से बैठिए, मुझे आपसे कुछ कहना है।
0: कपड़े उतारिए, आराम से बैठिए, कुछ कहना है? आखिर बात क्या है? न चाय, न नाश्ता, न मुस्कान।
1: आज तीनों की स्ट्राइक है।
0: स्ट्राइक यानी? यानी कि चाय, नाश्ता और मुस्कान की स्ट्राइक?
1: खाने की भी।
0: खाने की भी स्ट्राइक? लेकिन डार्लिंग, अभी तो हमारी शादी के एक साल भी पूरे नहीं हुए, इतनी जल्दी इन सब चीजों की स्ट्राइक? ये सब करने को तो सारी उम्र पड़ी है स्वीटहार्ट।
1: उम्र जहाँ पड़ी होगी उसे वहीं पड़ी रहने दीजिए। पहले आप वो सामने पड़ी हुई कुर्सी उठा लाइए और मेरे सामने बैठिए।
0: खड़े रहने से काम नहीं चलेगा?
1: नहीं।
0: ये लो, बैठ गया। बोलो क्या बात है?
1: आज हमारे आपके बीच एक एग्रीमेंट होगा।
0: जिंदगी भर प्रेम करने का एग्रीमेंट?
1: जी नहीं, जिंदगी भर बाकायदा गृहस्थी चलाने के लिए कुछ खास खास बातों का एग्रीमेंट।
0: गृहस्थी चलाने के लिए कुछ खास खास बातों का एग्रीमेंट? क्यों, ये क्या कोई नया आंदोलन है?
1: जी हाँ, आज तक हम स्त्रियाँ सदियों से तो पुरुषों के लिए 24 घंटों की महिला श्रमिक के सिवाय और कुछ भी नहीं रही। ये हमारे श्रम, हमारी मानवता, हमारे धीरज का शोषण है। मगर अब हम पत्नियाँ शोषण नहीं सहन करेंगे। गृहस्थी चलाने के लिए आपको हमारे साथ कुछ बातों का एग्रीमेंट करना होगा। हमारे आपके अधिकार समान है, हमें हमारा अधिकार चाहिए। अब हम जाग गई हैं।
0: बड़ी खुशी की बात है, इतना ज्यादा सोना सेहत के लिए ठीक नहीं।
1: मजाक मत कीजिए, मैं सीरियस हूँ। गृहस्थी चलाने के लिए मेरी मांग पूरी कीजिए।
0: मांग तो तुम ही अधूरी।

0: भारतीय नारियों को तो वैसे भी पूरी मांग निकालनी चाहिए।
1: मैं अपने सिर की मांग की नहीं, अधिकारों और सुविधाओं की मांग की पूरी करने के लिए आपसे एग्रीमेंट करना चाहती हूँ। और एक बात और, जब तक हमारे आपके बीच मांगों का एग्रीमेंट स्वीकृत नहीं हो जाता, कृपया भूल जाइए कि मैं आपकी बीवी हूँ।
0: What a pleasant pleasure it is! भूल जाओ कि तुम हमारी बीवी हो, अब फिर क्या याद रखूं डार्लिंग?
1: नो डार्लिंग वार्लिंग, मैं इस वक्त आपकी बीवी नहीं, बहैसियत एक दावेदार के आपके सामने खड़ी हूँ।
0: लेकिन तुम तो बैठी हुई हो।
1: एक ही बात है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मैं आपकी लाइफ पार्टनर यानी कि जीवन संगनी हूँ, लेकिन आप अपने चौके चूल्हे के कारखाने में मुझे सिर्फ एक महिला श्रमिक समझते हैं, मेरे लिए मेड सर्वेंट। इस तरह घर के मालिक आप हुए और घर की नौकरानी।
0: अरे तौबा तौबा तौबा, ये कैसा इनकलाब है मोहतरमा, तुम और नौकरानी, अरे तुम तो इस घरेलू रियासत की रानी हो, मेरे मन की सल्तनत की महारानी हो, मेरे ख्वाबों की ताबीर हो, मेरी हिम्मत की शमशीर हो, मेरी तमन्नाओं का ताजमहल हो, मेरी शामों की शीश महल हो।
1: मिस्टर निवेश कुमार, अब वो जमाने बीत गए जब हम औरतें तो पुरुषों की इन पुरफरेब अंदाज बयानी पर कुर्बान होकर फकत एक पेटीकोट और ब्लाउज पर सारी उम्र गुजार देती थी। सैकड़ों सालों से आप लोग हमें बेवकूफ बनाते चले आ रहे हैं।
0: अब कभी बेवकूफ नहीं बनाएंगे मोहतरमा, अब बेवकूफ नहीं बनाएंगे।
1: अब हम बनेंगे भी नहीं, अब आपको हमारा शोषण बंद करना होगा और हमसे एक एग्रीमेंट करना होगा। एग्रीमेंट के मुताबिक सबसे पहली मांग ये है कि चूंकि अब समानता का जमाना है, लिहाजा बाहर लगी नेम प्लेट पर केवल आपका ही नाम नहीं, हमारा भी नाम विद पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन लिखा होगा, ताकि आपके नाम पद और प्रतिष्ठा के साथ साथ लोगों को आपकी पत्नी के नाम तक पद तथा शिक्षा की भी जानकारी हो।
0: ऑलराइट, कल से निवेश कुमार के ठीक नीचे लिखा होगा राधा रानी मलिहाबादी MBA साहित्य रत्न भूतपूर्व कुमारी वर्तमान श्रीमती उर्म।
1: नहीं नहीं नहीं, उम्र की नेम प्लेट में कोई जरूरत नहीं।
0: लेकिन मैडम, बगैर उम्र के तो तुम्हारी कंप्लीट पिक्चर सामने नहीं आएगी।
1: नेम प्लेट पे कंप्लीट पिक्चर नहीं, कंप्लीट परिचय होना चाहिए।
0: अच्छा एग्रीड, एग्रीमेंट की दूसरी मांग हाजिर की जाए।
1: आप शाम 7 बजे के बाद घर से अकेले कर हाजिर नहीं रहेंगे।
0: लेकिन क्यों, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे पिंजरे का तोता या काठ का उल्लू नहीं, ये सरासर हमारी यानी कि हम पुरुषों की स्वाभाविक स्वतंत्रता का हनन है, पतन है, अपमान है।
1: ठीक है, अकेले घूमने के 2 घंटे और बढ़ाती हूँ, आप रात 9 बजे तक हर हालत में घर आ जाएं, और यदि रात 9 बजे के बाद भी आप घर से बाहर रहना चाहते हैं तो अकेले नहीं, आप मुझे साथ लेकर जाएंगे।
0: लेकिन तुम्हें साथ लेकर हम रात के 9 बजे के बाद जाएंगे कहाँ?
1: कहीं भी, सिनेमा, सर्कस, बाजार या किसी मित्र के घर। क्या रात के 9 बजे के बाद पत्नी के साथ पतियों का बाहर निकलना मना है?
0: लेकिन रोज रोज अगर मैं तुम्हें घर से लेकर बाहर ही जाऊंगा तो घर का काम कौन करेगा?
1: यही तो मेरे एग्रीमेंट की तीसरी मांग है। अभी तक हम पत्नियां आपके घर की 24 घंटों वाली नॉन स्टॉप वर्कर रहा करती थी, लेकिन अब ये दानागर्दी नहीं चलेगी। हमारे श्रम का शोषण आपको बंद करना होगा, हमारे अधिकारों का पोषण शुरू करना होगा। आम श्रमिकों की तरह मैं ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे ही घर का काम करूंगी बस।
0: लेकिन इससे तो पारिवारिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा डार्लिंग।
1: पारिवारिक विकास पर बुरा प्रभाव 8 घंटे काम करने से नहीं, 8-8 बच्चों के होने से पड़ता है। हमारे सिर्फ 2 बच्चे होंगे।
0: सिर्फ 2? यानी कि ये भी तुम्हारे एग्रीमेंट में है?
1: ऑफ कोर्स, एक आपका एक हमारा।
0: और अगर कोई इनमें से हो गया भगवान को प्यारा?
1: ठीक, ऐसे पहले से नहीं सोचते।
0: मगर किसी पर मौत आने से पहले कुछ नहीं सोचती, इसलिए अगर वक्त जरूरत के लिए 2-3 बच्चे और पैदा कर ली।
1: इस तरह तो मैं भी कभी मर सकती हूँ, तो क्या वक्त जरूरत के लिए 2-3 बीवियां?
0: anyway, बात सिर्फ तुम्हारे 8 घंटे काम करने की थी, तो क्या बाकी 8 घंटे काम करने के लिए मैं दूसरी शादी कर लूँ?
1: क्या आपके ऑफिस में 10 से 5 के बाद आपका काम करने के लिए आपकी जगह कोई और अपॉइंटमेंट किया गया है?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर सरकार मुझे बात का काम करने के लिए ओवर टाइम देती है।
1: ठीक है, आप भी मुझे घंटों के काम का ओवर टाइम दीजिए।
0: लेकिन अपने ओवर टाइम समेत सारी तनख्वाह तो मैं हर महीने तुम्हारे हवाले कर देता हूँ, अब तुम्हें ओवर टाइम देने के लिए रुपए कहाँ से लाऊं? चोरी करके, जेब काट कर या स्मगलिंग करके?
1: दिस इज योर बिजनेस। सरकार ओवर टाइम देते समय अपने कर्मचारियों से ये सवाल नहीं पूछती?
0: लेकिन मेरी सरकार, तुम सरकारी कर्मचारी नहीं, मेरे हिंदुस्तान की मलकिन हो।
1: फिर आपने बेवकूफ बनाने वाली बात की, यहाँ बात हिंदुस्तानी घर या विदेशी कंपनी की नहीं, श्रम कल्याण की है, हमें हमारे श्रम का पुरस्कार मिलना चाहिए। 8 घंटे से अतिरिक्त श्रम के लिए या तो मुझे ओवरटाइम दीजिए या वेतन के अतिरिक्त अपने उत्तरदायित्व पर किसी अतिरिक्त श्रमिक का प्रबंध कीजिए।
0: ठीक है, आगे की शर्त बोलिए।
1: एग्रीमेंट के मुताबिक मेरी अगली मांग प्रत्येक हफ्ते में 1 दिन की साप्ताहिक छुट्टी की है।
0: 1 दिन की साप्ताहिक छुट्टी?
1: Why not? हर जगह प्रत्येक कर्मचारी को हफ्ते में 1 दिन कंप्लीट अवकाश मिलता है। आप भी दूसरी ओकेजनल छुट्टियों के अतिरिक्त हर रविवार को अपना साप्ताहिक अवकाश मनाते हैं, लेकिन मुझे होली, दिवाली, ईद, बकरीद, इतवार, सोमवार कभी भी छुट्टी नहीं मिलती। अलबत्ता काम और बढ़ जाता है। ना अर्न लीव, ना मेडिकल लीव, ना कैजुअल लीव, ना ओकेजनल लीव, ये हमारे श्रम का शोषण नहीं तो और क्या है?
0: अरे तुम्हें छुट्टी के लिए क्या जरूरत है भाई, किसने रोका है? तुम जब चाहो छुट्टी मनाओ।
1: नो क्वेश्चन ऑफ जब चाहो। हफ्ते में 1 दिन आपको मेरी छुट्टी का फिक्स करना होगा। उस दिन मैं सुबह से शाम तक कंप्लीट रेस्ट करूंगी, किसी सहेली के घर जाकर कप्पे मारूंगी, छुट्टी मनाऊंगी।
0: लेकिन मैडम, भारतीय नारियां मरने से पहले घर गृहस्थी से छुट्टी नहीं पाती।
1: फिर आपने वही पुरानी ढपली बजाई, मुझे हफ्ते में 1 दिन के साप्ताहिक छुट्टी चाहिए। भारतीय नारियों वाला पुराना तमगा नहीं, समझे आप? मंजूर हो तो ठीक, वरना स्ट्राइक अनिश्चित काल तक के लिए जारी रहेगी।
0: हाँ जी, मुसीबत है, ये भी कोई स्ट्राइक है? ये स्ट्राइक नहीं, सरासर धमकी है, धमकी।
1: हमारी जायज मांगों को नाजायज धमकी की संज्ञा देकर हमारे सफेद साफ अधिकार का मुंह काला मत कीजिए। हम भारत की नारियां हैं, रानी झांसी की संतान। कट जाएंगे मगर झुकेंगे नहीं, अब हम जाग चुके हैं।
0: 2400 घंटे जागे रहने से तुम्हारी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा डियर।
1: ऑब्जेक्शन प्लीज। डियर या डार्लिंग के बदले इस वक्त आप केवल हमारा नाम या अधिक से अधिक मैडम पुकार सकते हैं। हमने पहले ही कहा है, जब तक एग्रीमेंट पूरा नहीं हो जाता, किसी समन्वय सूचक संबोधन का उच्चारण आप मेरे लिए न करें। अब हम जाग चुके हैं।
0: लगता है अब मुझे सोने को नहीं मिलेगा।
1: हाँ, आपने हमारी साप्ताहिक छुट्टी वाली मांग की स्वीकृति नहीं दी, क्या कहते हैं आप?
0: अरे कहते क्या है मैडम, स्वीकार करते हैं, और चारा ही क्या है, वरना तुम्हारा ये चौका बेलन डाउन स्ट्राइक कभी अप नहीं होगा और हमारी वर्षों की पाली पोसी तंदुरुस्ती डाउन हो जाएगी।
1: राइट यू आर। ये लीजिए एग्रीमेंट के कागजात, इस पर दस्तखत कर दीजिए और एक कॉपी आप रखिए, दूसरी मुझे दे दीजिए।
0: लीजिए मैडम, आप भी क्या याद करेंगी, ये किया दस्तखत, और ये रही आपकी कॉपी, ये रही मेरी प्रतिलिपि। By the way, एग्रीमेंट की ये शर्तें आज से ही लागू होंगी या कल से?
1: आज का दिन ठीक नहीं, कल सोमवार की सुबह से शुभ मुहूर्त में हमारा आपका एक एग्रीमेंट लागू होगा।
0: ओके ओके, अरे अब तो युद्ध विराम करो और जल्दी से एक अदद मुस्कान के साथ एक कप चाय हाजिर करो।
2: राधा डार्लिंग, ओ राधा डियर,
0: लो इनसे मिलो, ये है मोहनी, हमारे घर की नई मेड सर्वेंट यानी कि नौकरानी।
1: नई नौकरानी? तो क्या तुम सुबह सुबह इसी को लाने गए थे?
0: और क्या करता, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हारा एग्रीमेंट आज ही सुबह के शुभ मुहूर्त से लागू होगा। एग्रीमेंट के मुताबिक सुबह से 8 घंटे तक ही तुम काम करोगी, बाकी के घंटों में काम करने के लिए तो मैं मोहनी को ले आया हूँ। मोहनी, ये है तुम्हारी मालकिन।
3: नमस्ते दीदी जी।
1: नमस्ते माय फुट, आप जरा इधर तो आइए जी।
0: लो लो आ गया, बोलो।
1: आपका दिमाग खराब हो गया है?
0: क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों?
1: काम करने के लिए इतनी खूबसूरत नौकरानी लाने की क्या जरूरत थी?
0: भाई तुम भी खूब हो राधा, किसी का खूबसूरत या बदसूरत होना तो परमात्मा की देन है, और तुम्हारे एग्रीमेंट में तो नौकरानी के खूबसूरत या बदसूरत होने का कोई निर्देश नहीं है। फिर डाली, जो लड़कियाँ खूबसूरत होती हैं, कपड़े ढंग से पहनती हैं, वे काम भी खूबसूरती और ढंग से करती हैं।
1: हाँ, काम खूबसूरत और ढंग से करती हैं। क्या मेरा काम बदसूरत और बेढंगा होता है?
0: हाँ, नहीं डाली, लेकिन तुम्हारे एग्रीमेंट के मुताबिक मैं तुमसे केवल 8 घंटे ही काम ले सकता हूँ, बाकी के घंटों के लिए तो मुझे ओवर टाइम मांगती हो जो मैं तुम्हें दे नहीं सकता।
1: तो इस मुंहजली को तनख्वाह कहाँ से दोगे?
0: लैंग्वेज प्लीज, इसका मुंह जला हुआ नहीं है।
1: मेरा मतलब है मोहनी, क्या आपको ऑफिस से बोनस में मिली है जो बिना तनख्वाह के काम करेगी? इसे तनख्वाह किस अकाउंट से देंगे आप?
0: किसी अकाउंट से नहीं भाई, मोहनी हर काम मुफ्त में करेगी। बड़ी मुश्किल से तो ऐसी नौकरानी हाथ लगी है। मुफ्त में काम करना इसकी हॉबी है, शौक है, क्यों मोहनी?
1: मुफ्त में काम करना इसकी हॉबी है, शौक है, क्यों मोहनी?
3: जी बीबी जी,
1: लेकिन किसी शादीशुदा गैर मर्द के यहाँ तुम्हें मुफ्त काम करने का शौक क्यों है?
0: ऑब्जेक्शन प्लीज, तुम्हारे एग्रीमेंट में ये बातें नहीं है। अतिरिक्त घंटों में काम करने के लिए नौकरानी, वैतनिक हो या अवैतनिक, ये सोचना तुम्हारा नहीं मेरा काम है।
1: ऑब्जेक्शन ओवरूल्ड। मेरे घर में आने वाली नौकरानी के बारे में पूरी जानकारी लेना मेरा भी काम है। हाँ तो मोनी, तुम शादीशुदा हो या कुंवारी?
3: जी अभी तो कुंवारी हूँ, तभी तो आपके यहाँ घर गृहस्थी का तजुर्बा पाने के लिए काम करना चाहती हूँ।
1: घर गृहस्थी का तजुर्बा पाने के लिए कुंवारी होकर यहाँ मुफ्त में काम करोगी? क्यों जी, मैं पूछती हूँ घर का काम के लिए आप कुंवारी लड़की क्यों लाए?
0: अरे तो क्या कब्र में लटके किसी नानी दादी को ले आता? अब फिर नौकरानी कुंवारी हो या शादीशुदा, बूढ़ी हो या जवान, सूखी हो या हरी भरी, इसका कोई निर्देश तुम्हारे एग्रीमेंट में नहीं है।
1: तुम क्या क्या काम करोगी मोहनी?
3: जो जो आप करती है, सुबह से दोपहर तक 8 घंटे की सफाई, नाश्ता, खाना और साहित्य की सेवा आप करेंगी। दोपहर के बाद से घर की सफाई, नाश्ता, खाना और साहित्य की सेवा मैं करूंगी। हफ्ते में पूरे एक दिन तो आप कंप्लीट रेस्ट पर रहेंगे, उस दिन तो पूरे घर समेत साहित्य की देखभाल सुबह से रात तक मुझे ही ना करना होगा। बीबी जी,
1: सुबह से रात तक घर समेत साहित्य की देखभाल तुम करोगी? तो मैं क्या करूंगी?
0: तुम अपने एग्रीमेंट के मुताबिक अपने दैनिक काम के 8 घंटे के अतिरिक्त और हफ्ते में एक पूरे दिन कंप्लीट रेस्ट करोगी, सहेलियों के यहाँ गप्पे मारोगी, सिनेमा देखोगी, साप्ताहिक छुट्टी मनाओगी।
1: और आप यहाँ इस उर्वशी के साथ? छी, शाम नहीं आती आपको?
0: आती है, मगर किसी लड़की से बकाया काम कराते वक्त शर्माने की बात तुम्हारे एग्रीमेंट में नहीं है, इसलिए चली जाती है। खैर मोहनी, अभी तुम्हारे आराम का वक्त है, इसलिए तुम अभी जाकर आराम करो।
1: आराम? तो ये रूप सुंदरी यहाँ आराम फरमाने आई है? ये हमारा घर है या हिल स्टेशन?
0: भाई सुबह से दोपहर तक 8 घंटे तक तुम काम करोगी और मोहनी रेस्ट करेगी, दोपहर के बाद तुम रेस्ट करोगी और मोहनी काम करेगी। तुम्हारे एग्रीमेंट के मुताबिक तो व्यवस्था ऐसी ही चलेगी ना?
1: भाड़ में गया मेरा एग्रीमेंट और चूल्हे में गई तुम्हारी व्यवस्था। मैं अपने घर का सारा काम अकेले कर सकती हूँ। आपने मुझे समझ क्या रखा है? आप इस भुवन मोहनी को अभी अपने घर वापस कराइए।
0: मगर तुम्हारा एग्रीमेंट?
1: ये रहा मेरा एग्रीमेंट और ये रहे उसके टुकड़े, और मोहनी देवी वो रहा बाहर जाने का दरवाजा। मुफ्त में काम करके घर गृहस्थी का तजुर्बा लेंगी, गोया मेरा घर नहीं ट्रेनिंग सेंटर है। जाइए तुरंत इसे इसके घर वापस भेज जाइए, जल्दी करिए।
0: ओके ओके, जाता भाई, जाता हूँ। चलो मोने। माफ करना मोनी भाभी, आपने मुफ्त की नौकरानी भरकर बुला भरा सुनते हुए राधा के सिर से एग्रीमेंट का भूत तो उतार दिया। शुक्र है अभी वो आपको पहचानती नहीं है, लेकिन कल सुधीर के साथ पत्नी के रूप में आकर हम दोनों से अपनी नई शादी की पहली बधाई तो ले जाइए।
3: जरूर आऊंगी, लेकिन आप भी राधा भाभी के एग्रीमेंट की एक शर्त जरूर पूरी कीजिएगा।
0: कौन सी शर्त?
3: एक हमारा, एक तुम्हारा।

0: मजहब में शादी हो सकती है अगर लड़की।
1: अब्बा जान, दीपशिखा रहते हुए मुझसे शादी करेगी।
0: लेकिन मुझे कोर्ट में शादी पर एतराज है। शादी एक पाक रस्म है, उस पर मजहब की मोहर लगाना लाजिम है।
1: आप इस पर इसरार करते हैं?
0: ये नागुजीर है।
1: तब लगवा लूंगा।
0: कैसे?
1: हिंदू रीति से शादी करके।
0: इकबाल!
1: अब्बा हुजूर, हिंदू धर्म भी मजहब है।
0: लेकिन मैंने तुम्हें मजहब बदलने को कब कहा?
1: दीप को तो कहा।
0: हाँ, शादी में लड़की का मजहब बदलता है।
1: ये आप क्या कह रहे हैं अब्बा जान? अगर आप हिंदू लड़की के लिए महजब
0: हाँ, शादी में लड़की का मजहब बदलता है।
1: ये आप क्या कह रहे हैं अब्बा जान? अगर आप हिंदू लड़की के लिए मजहब बदलना जरूरी चाहते हैं, तो मुसलमान लड़की के लिए भी जरूरी होना चाहिए। जरा सोचिए, अगर हमारी शब्बो किसी हिंदू लड़के से शादी करना चाहे तो क्या

0: अब्बा जान, अब्बा जान, मुझे एक हिंदू लड़के से मोहब्बत हो गई अब्बा जान।
1: क्या कहा शब्बो?
0: मैं आपसे अर्ज करती हूँ अब्बा जान कि उसे शादी की इजाजत दीजिए।
1: ये तुम क्या बक रही हो शब्बो?
0: अपनी बेटी के इल्तिजा पर ध्यान दीजिए।
1: मैं उसकी गर्दन काट दूंगा।
0: क्या
1: मेरी बेटी इश्क करेगी तो उसकी गर्दन काटूंगा।
0: बेटे की नहीं काटी।
1: क्या
0: बेटे ने इश्क किया वो सही सलामत है?
1: बेटी आदमी होती है
0: जिसे दुल्हन के कपड़े पहनाकर दूसरे के पलंग पर छोड़ आती है।
1: बकवास बंद कर।
0: तो जवाब दो, तुम्हारी बेटी शब्बो और मजहब में शादी करना चाहती है? उसका मजहब बदलेगा?
1: नहीं।
0: इकबाल मियां, आपका मसला आसान है। अब्बा, इकबाल मियां, आपका मसला आसान है। अब्बा मैं अब शादी में लड़की का मजहब बदलने के कायल नहीं।
2: अब्बा जान, आपने सोचा अगर हमारी शब्बो?
1: आप शादी कर सकते हैं इकबाल मियां, लेकिन
2: अब्बा मियां, मैं दीपशिखा ही से शादी नहीं कर रहा, मैं अपनी बहन और बेटी की भी शादी कर रहा हूँ।
1: क्या
2: जानते हैं अब्बा उसको? जानते हैं मुगलों ने क्या किया था? बेटियां ली थीं, ती नहीं थीं, इसलिए मोहब्बत और मेल मिलाप का वो मकसद हासिल ना हो सका जिसके लिए अकबर ने तीन इलाही बनाया था। मैं किसी मजहब से उसकी बेटी लूंगा तो बड़ी खुशी से उसे अपनी बहन और बेटी देने का कलेजा भी रखूंगा।
1: तुम ला मजहब हो गए हो।
2: ला मजहब नहीं अब्बा हुजूर, ला मजहब नहीं, दोहरे ईमान वाला। जिस दिन दीपशिखा से शादी कर लूंगा मेरे घर में दो मजहब बराबर का दर्जा पा जाएंगे।
1: लेकिन मजहब यूं जिंदा नहीं रह सकते।
2: एक दूसरे का गला काट कर उनकी रग रग से खून चूस कर जिंदा रहते हैं। तब अब्बा हुजूर, तब उनका जीना नहीं चाहूंगा मैं।
1: तब मेरा भी फैसला सुन लो। मुझ में वो ताकत तो नहीं जो बेटे का कत्ल करते वक्त हजरत इब्राहिम के हाथों में थी, लेकिन जिस घड़ी तुम ये गैर मजहब फेल करोगे अपने सीने में खंजर उतार चुका हूंगा।
3: सुपर्ब, अपूर्व, बेमिसाल लेखक साहब, आपके वाणों का जवाब नहीं।
4: अरे रंजना जी, आप इस सीन में कहां से कूद पड़ी?
3: आपने इकबाल के बाप से जो डायलॉग कहलवाया है उस पर वाह वाह करने आई हूँ, ताली बजाने आई हूँ। बाप को आपने कैसे शहीदे आजम बनाया है।
4: आप मजाक उड़ाकर मेरा ड्रामा खराब कर रही हैं।
3: शुक्र मनाइए कि उछल कर बिजली का तार नहीं छू रही और ब्लेड से अपनी रग नहीं काट रही।
4: अरे ये क्या, सारी कास्ट स्टेज पर ही चली आ रही है। ओहो, सब चौपट हो गया।
3: चौपट तो आपने किया जो।
5: रंजना, तू खामखा अपना भेजा क्यों खपा रही है?
3: तूने सुना किटी, इन्होंने इकबाल के बाप से क्या कहलवाया?
5: अरे खालिस हिंदू और खालिस मुसलमान की सुनेगी तो अपना भेजा खो बैठेगी।
6: जब भी धर्म और मजहब की बात आएगी खालिस हिंदू और खालिस मुसलमान को बोलना होगा।
4: आप ये क्या बोल गए? आए, आए, हाल में भी सब लोग खड़े हो गए। अरे आप दीपशिखा के पिताजी हैं।
6: मुझे बोलना होगा लेखक साहब, ये धर्म और मजहब की बात है।
4: आप लोग चुप हो जाइए, आप लोग चुप हो जाइए। अरे चुप हो जाइए ना,
7: हम चुप नहीं होंगे।
4: आप ड्रामा देखने आए हैं कि बहस में हिस्सा लेने?
7: मजहब की बात है, धर्म और मजहब में दखल नहीं सुना जाएगा, सहा जाएगा।
4: तो मैं चाहूंगा आप लोग मेरे सवाल का जवाब दें, धर्म और मजहब क्या है?
7: परमात्मा के आदेश, खुदा के हुक्म।
4: आप स्टेज पर आएंगे
5: लेकिन ड्रामा
4: या जिंदगी ऐसे कुछ आगे नहीं चढ़ेगा।
8: मैं आ गया, फरमाइए।
4: ड्रामा या जिंदगी ऐसे कुछ आगे नहीं बढ़ेगा, हमें पहले बुनियादी सवाल तय करने होंगे।
8: मैं आ गया, फरमाइए।
4: तो आप बता सकेंगे कि ये एक जैसे ही नहीं?
8: जी।
4: तो आप बता सकेंगे कि ये एक जैसे क्यों नहीं?
8: जी।
4: सब धर्म और मजहब एक जैसे क्यों नहीं? उनकी जबान, उनकी तारीख, उनके कानून और उनके उपदेश अलग अलग क्यों हैं?

0: क्या मतलब?
1: अगर परमात्मा कानून बनाता तो सब धर्म और मजहब एक जबान में उतने पुराने होते, उनके कानून कुदरत के कानूनों की तरह एक होते, उनमें दुनिया के बनने, इंसान के पैदा होने का, उनमें दुनिया के बनने, इंसान के पैदा होने की कहानी एक होती।
0: अरे आप कहना क्या चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं?
1: यही कि उन्हें परमात्मा खुदा या गॉड ने नहीं बनाया,
0: किसने बनाया है?
1: इंसान ने।
0: सेम।
1: जब भी धर्म और मजहब के बिना पर इंसानों की तकदीर तय करने की बात आएगी, उसका मुकाबला करना होगा।
2: सुनिए, मैं कुछ इतराफ कर सकती हूँ?
1: बेगम साहिबा।
2: जी हाँ, अब तक मैंने कुछ और तरह सोचा, लेकिन अब सोचती हूँ अगर वैसा होने लगे जैसा आपने कहा, तो क्या हमें नफरत की उस जलन और कुड़न से निजात न मिल जाएगी जिसने हमें बांट रखा है, एक दूसरे से गैर बना रखा है? यानी आप अपने हाथ में नई स्लेट लेंगे? जी हाँ।
1: दीप और इकबाल शादी करेंगे तो उनकी गवाह बनेंगी?
2: सिर्फ दीप ही नहीं, अपनी बेटी की शादी की भी बाप बनूंगी।
1: शुक्रिया बेगम साहिबा।
2: आज नहीं, जिस दिन अपनी बच्चियों की शादी मजहब देखे बिना करूंगी और उस पर मजहब नहीं मुल्क के कानून की मुहर लगाना पसंद करूंगी, उस दिन।
1: तो चलिए।
2: कहाँ?
1: जहाँ मुझे आपको जो कहा है करना है।
2: मैं समझी नहीं।
1: ये तो स्टेज है, जिंदगी तो बाहर है।
2: तो चलिए।
1: रंजना जी, आप भी तो आइए।
2: आप एक बात भूल गए, मैं नहीं भूली।
1: क्या?
2: ड्रामा के खत्म होने का ऐलान।
1: ओह, तो कर दूं?
2: जी नहीं, ड्रामा मैंने शुरू किया, खत्म का ऐलान भी मैं करूंगी। साहबान, ड्रामा खत्म, जिंदगी शुरू।
3: लंबे अरसे तक आपको मैं अपने लिए जेल में बंद रखना पसंद नहीं करती। मेरे लिए कूड़े करकट का कोई भी ढेर, कोई भी घोड़ा ठीक रहेगा। अब मेरी आंखों के सामने कोई सपना नहीं रहा, जो था उसे भी मैंने समेट लिया है पिताजी, समेट लिया है।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details log on to www.ddindia.com।

0: ससुराल झुमकी का सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे पुनः प्रसारण 11:00 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर।
1: आंखों में भर के अंगा, दुल्हन का करके श्रृंगार,
2: पूरा देखना है ना, लीजिए।
1: आखिर क्यों आई अपने साजन के द्वार।
0: ससुराल झुमकी का सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे पुनः प्रसारण 11:00 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर।
3: भींगे बालों में बहुत खूबसूरत लग रही हो।
2: देखिए खुद को आईने में, आप हमारे पति बनने लायक नहीं है।
0: ससुराल झुमकी का सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे पुनः प्रसारण 11:00 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर।
1: एक शादी कच्ची उम्र की जिम्मेदारी, रिश्तों के फिक्र की, कैसे खिलेगा अरमान बंद मुट्ठी का।
0: ससुराल झुमकी का सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे पुनः प्रसारण 11:00 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर।
4: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने। इसमें सबसे पहले सुनते हैं फिल्म डुप्लीकेट का एक गीत।

अभी आप सुन रहे थे डुप्लीकेट का एक गीत, आवाजें सोनू निगम की थी और आई सुनते हैं फिल्म सपने का एक गीत, आवाजें हेमा सरदेसाई और यशुदास मलेशिया की है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म बॉर्डर का ये गीत, आवाज़ें भरत शाह की थी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सुगम संगीत।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
3: चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
2: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
1: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम, और आइए हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। उत्तर प्रदेश में 2027 के मर्दमशुमारी का पहला मरहला 22 मई को घरों की फहरिस्त साजी के अमल के साथ शुरू होगा। इससे 15 दिन पहले 7 मई को खुद गिनती की सहूलियत शुरू हो जाएंगी, जिसमें वेबसाइट के जरिए अवाम हिस्सा ले सकते हैं और ऑनलाइन मिलने वाले कोड को अपने शुमार कुंदा को फराहम करना होगा। रियासत के मर्दमशुमारी ऑपरेशन के डायरेक्टर और चीफ प्रिंसिपल मर्दमशुमारी अफसर शीतल वर्मा ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि घरेलू मर्दमशुमारी के पहले मरहले की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। उन्होंने वजाहत की कि घरेलू मर्दमशुमारी के लिए पूरी रियासत को 3,90,000 छोटे ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है।
1: जो हमारे मकान सूचीकरण खंड है उनका हम सीमांकन चिन्हांकन पूरा कर लें तो हम पूरा कर चुके हैं। ट्रेनिंग ऑफ एनुमरेटर एंड सुपरवाइजर एसडीएम को करानी है, एसडीएम के नेतृत्व में जिलाधिकारी को करानी है। वो कार्य वर्तमान में प्रक्रिया है, हमारी 10 मई तक पूरे प्रदेश में सारी ट्रेनिंग कम्प्लीट हो जाएंगी। और तीसरा पब्लिसिटी, अब क्योंकि हमने सारी तैयारी पूरी कर ली है तो अब आपके माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से हम आमजन को बताना चाहते हैं कि आपको प्रिपेयर करना है, हम आपके घर आने वाले हैं या आपकी सहभागिता का समय अब शुरू हो रहा है।
0: वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में ज़राअत, आबी तवानाई, हवाना, समाजी बहबूद और बागबानी के महकमों के वुज़रा और आला ओहदेदारों के साथ मीटिंग में शदीद गर्मी और मुमकिन कम बारिश के पेश नज़र पीने के पानी, आबपाशी और राहत के इंतजाम का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला ने वाज़ेह हिदायत दी कि रियासत में कहीं भी पीने के पानी की किल्लत न होने को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुतबादिल इंतजाम, स्कीमों और टैंकरों को मुकम्मल तौर पर तैयार रखा जाए। साथ ही 15 जून से 30 जुलाई के दरमियान सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और अगर जरूरी हुआ तो खुश्क साली का ऐलान करने की कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इंतजाम में किसी भी तरह की तसाईली बर्दाश्त नहीं होगी। जनाब योगी ने हिदायत दी कि नहरों, तालाबों, झीलों का काम 30 मई तक खत्म कर दिया जाए और पानी के तहफ्फुज़ को मुहिम के तौर पर फरोग दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि तालाबों से निकाली गई मिट्टी प्रजापति बिरादरी और रवायती कुम्हार कारीगरों को मुफ्त फराहम करके माश के फरोग के हौसला अफजाई की जानी चाहिए। वजीर आला ने मुतबादिल पर भी जोर दिया। जनाब योगी ने अफसरान को हिदायत दी कि वो जिले की सतह पर 24 घंटे कंट्रोल रूम चलाएं और चीफ मिनिस्टर के दफ्तर, चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को बाकायदा मालूमात फराहम करें। उन्होंने किसानों को बीज, फसल बीमा, कर्जों और खादों की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के साथ साथ जखीरा अंदोजी और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी हिदायत दी। वजीर आला ने हेल्थ वर्कर्स को हीट स्ट्रोक से बचने का मशवरा भी दिया। वजीर आला ने हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए सेहत निजाम मुस्तहकम करने, मवेशी तहफ्फुज और अर्ली वेदर वार्निंग सिस्टम के जरिए मौसम की मालूमात को अवाम तक बरवक्त पहुंचाने पर जोर दिया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि गंगा एक्सप्रेसवे कमर्शियल ऑपरेशन की तारीख से 15 दिनों तक टोल फ्री रहेगा। हुकूमत का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि इब्तदाई मरहले में ज्यादा से ज्यादा लोग इस जदीद तरीन एक्सप्रेसवे का तजुर्बा करें। इस 594 किलोमीटर तवील एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री सफर करने का मौका उसके म्यार, रफ्तार और अवामी सहूलियात का पहला तजुर्बा फराहम करेगा। इस 15 दिन की टोल छूट के नतीजे में होने वाले रेवेन्यू नुकसान की तलाफी रियासती हुकूमत या यूपीटा के जरिए रियायती मुआहदे की दफात के मुताबिक की जाएगी। रियासती हुकूमत ने आउटसोर्स और पार्ट टाइम मुलाजमीन के हकूक के तहफ़ के लिए नए कवानीन नाफिज किए हैं। नए कवानीन के मुताबिक अब किसी भी आउटसोर्स या कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम से लगातार 7 दिन काम लेना गैर कानूनी होगा। रोजाना काम का शेड्यूल 8 से 9 घंटे मुकर्रर किया गया है। 6 दिन मुसलसल काम करने के बाद हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी लाजमी है। साथ ही 1 साल में 10 दिन के आरामदेह छुट्टी को यकीनी बनाकर मुलाजमीन के इस्तेहसाल को रोकने के लिए एक पहल की गई है। रियासती वजीर बराए समाजी बहबूद असीम अरुण ने कल कवानीन का ऐलान करते हुए वह कहा कि नए कानून के नाफिज होने से मुलाजमीन के इस्तेहसाल पर रोक लग सकेगी। भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति वंदन एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत में आज लखनऊ में खवातीन आक्रोश मशाल मार्च करेगी। यह मार्च लोकभवन से शुरू होकर अटल चौक तक जारी रहेगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ, रियासती बीजेपी सदर पंकज चौधरी, नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक और दीगर लोक मार्च में शामिल होंगे। रियासती काबिनेट के वजीर राकेश सचान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2029 तक खवातीन को लोकसभा और कानून साज असेंबली में हिस्सेदारी देना चाहते हैं, ताहम अपोजिशन ने इसमें रुकावट डाली है जिससे खवातीन में गुस्सा है और इसका मजाहरा करने के लिए यह जुलूस निकाला जाएगा। 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 993 रुपए का इजाफा किया गया है। बढ़ी हुई कीमत कल से नाफिज हो गई है। ताहम घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। दरअसल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की खुर्दा कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। रियासत के कई हिस्सों में गुज़िश्ता कुछ दिनों से हुई बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में तराई वाले इलाके में बारिश के इम्कान हैं, बाकी दीगर अजला खुश्क रहेंगे। हालांकि 4 मई से आंधी तूफान के साथ मुमकिन बारिश की वजह से दर्जे हरारत में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की कमी के इम्कान है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाके की खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: आकाशवाणी का ही गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है महिलाओं संबंधित कार्यक्रम नारी जगत।
3: बहनों स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का आज के इस नारी जगत कार्यक्रम में। आज के सफर में मैं हूँ आपकी रेडियो सखी अनीता। तो बहनों आज के स्वास्थ्य चर्चा में हम एक ऐसी बीमारी पर चर्चा करते हैं जो अधिकतर 15 से 30 वर्ष की युवा महिलाओं में होता है। और बहनों इसको सिस्टमिक ल्यूपस एरियोमेटिस या ल्यूपस बीमारी कहते हैं। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ कोशिकाओं और अंगों को गलती से नुकसान पहुँचाने भी लगती है। यह बीमारी अगर शरीर में अधिक समय से सूजन है जिसका कारण बनता है ये, और जिसके कारण शरीर के अंग जैसे त्वचा, जोड़ों को, किडनी, फेफड़ों और हृदय को ये बीमारी प्रभावित करती है। और मैनों यह बीमारी मुख्य रूप से 15 से 30 वर्ष की युवा महिलाओं में होता है जैसा कि हमने बताया। तो इस बीमारी में धूप में जाने पर त्वचा पर बटरफ्लाई रैसेज भी होते हैं और लंबे समय तक बुखार होता है, जोड़ों में दर्द, सूजन और सुबह शरीर में अकड़न भी होती है। इसके अलावा बालों का झड़ना, मुंह या नाक में छाले होना इसके प्रमुख लक्षण भी हैं। अभी तक इस बीमारी का कोई सटीक कारण भी पता नहीं चला है, लेकिन यह आनुवंशिक, हार्मोनल या पर्यावरणीय धूप संक्रमण से इसके मुख्य कारण माने जाते हैं। और बहनों इस बीमारी का कोई अस्थायी इलाज भी नहीं है, सिर्फ इसके लिए अपने जीवन शैली में बदलाव, संक्रमण से बचाव और धूप में अपने आप को सुरक्षित रखना और पोषण युक्त आहार से लक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा अगर उपरोक्त लक्षण हो तो तुरंत आप संधिवात रोग विशेषज्ञ रूमेटोलॉजिस्ट से तुरंत सलाह लें। और थोड़ी सी लापरवाही भी अगर आप करेंगी तो इससे किडनी की समस्या भी गंभीर रूप ले सकती है, जिसे ल्यूपस नेफ्राइटिस कहते हैं। तो बहनों तनाव को दूर रखें, स्वस्थ

जी बहनों, भारत सरकार ने समय समय पर कई योजनाएं चलाई हैं, जिसमें से एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी है, जो भारत सरकार की दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख तक का निःशुल्क कैशलेस इलाज प्रदान करती है। तो बहनों, आप जानती ही हैं कि इस योजना में 10 करोड़ से अधिक कमजोर परिवार को कवर करती है योजना, जिसमें कैंसर, किडनी और हार्ट सर्जरी जैसी जटिल बीमारियां भी इसमें शामिल हैं। और बहनों, पात्रता 2021 के अनुसार आर्थिक रूप से जो कमज़ोर परिवार हैं और अब 70 वर्ष से अधिक के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी इस योजना के अंतर्गत सहायता दी जाएगी। इस योजना में रोगी को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का खर्च, दवाएं, सारी जांच भी इसमें योजना में शामिल है और रोगी को ये सुविधाएं दी जाएंगी। इस योजना में आप आयुष्मान ऐप पर अपना आधार नंबर डाल करके पात्रता जांच कर सकती हैं बहनों, और कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बहनों, इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपने नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या सरकारी अस्पताल में जाकर आप आवेदन कर सकती हैं बहनों। और पूरे देश में 7,000 से अधिक सरकारी और निजी सरकारी अस्पतालों में भी आयुष्मान योजना खुल गया है। आप इससे जुड़ें और लाभ उठाएं। और आइए सुनते हैं, चर्चा तो अभी और बहुत सारी है, लेकिन आइए प्यारा सा गीत सुनते हैं।

जी बहनों, गाना तो बहुत ही प्यारा था। और बहनों, आज के समय में हर महिला अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन घर की जिम्मेदारियों और बच्चों की देखभाल के कारण बाहर जाकर काम करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। इसी वजह से बहनों, घर बैठे पैसे कमाने का तरीका ढूंढना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो बहनों, अच्छी बात यह है कि अब ऐसे कई काम हैं जिसमें ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं भी हैं तो काम कर सकती हैं, साथ ही इसमें बहुत कम पैसे भी लगते हैं या बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। और बहनों, घर बैठे कमाई आज की ज़रूरत भी बन गई है। आज की महंगाई और घर की ज़रूरत के लिए महिलाओं को घर बैठे कमाई करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो बहनों, आप खुद पैसे कमाती हैं तो किसी पर निर्भर भी नहीं रहती हैं। आप अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकती हैं, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चों में भी मदद कर सकती हैं आप। बिल्कुल बहनों, इसके साथ ही महिलाएं जब काम करती हैं तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आज की आधुनिक तकनीकी ने तो और भी काम को आसान बना दिया है, इसलिए आज हर महिला को कम से कम एक ऐसा काम तो ज़रूर आना चाहिए जिससे कि वह घर बैठे पैसे कमा सके। बस आपको अपने कौशल, समय और इंटरनेट की इसमें ज़रूरत होती है। तो बहनों, कुछ ऐसे तरीके हैं हम आपको बताएंगे जिसमें कि आप घर बैठे अपनी आय बढ़ा सकती हैं और बिना रुके पैसा भी खर्च किए। ये जैसे कि ऑनलाइन ट्यूशन देना होता है, अगर आपको किसी विषय में अच्छी जानकारी है, जैसे गणित विज्ञान या कोई भाषा जानती हो, तो आप ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर सकती हैं। आप वीडियो कॉलिंग ऐप्स का उपयोग करके बच्चों को पढ़ाइए। बस आपको ये पास स्मार्टफोन, लैपटॉप या इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। और इसी तरह से बहनों, फ्रीलांसिंग आज के समय में सबसे लोकप्रिय तरीका हो गया है। अगर आपको लिखना, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग या डेटा एंट्री करना आता है, तो इसके लिए कई वेबसाइट्स हैं जो फ्रीलांसर्स को प्रोजेक्ट ऑफर करती हैं। और बस आपको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ती है इसमें, जिससे कि आप अपनी कौशल और अनुभव के बारे में बताएं। आप घर बैठे ही अपने समय के मालिक हैं और बिना निवेश के ही घर बैठे पैसे भी कमा सकती हैं इसमें। और लिखने पढ़ने का अगर शौक है तो आजकल कई कंपनियां अपने ब्लॉग, वेबसाइट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट राइटर की तलाश में रहती हैं। तो आप अच्छा लिखने का हुनर हो और एक कंप्यूटर चाहिए, शुरू में प्रोजेक्ट छोटे लें और फिर धीरे धीरे बड़े क्लाइंट के साथ काम करें। ये बहुत ही अच्छा क्षेत्र है बहनों, आप इसमें अपने आप को आजमाएं। और इसी तरह से बहनों, कई कंपनियां अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में फीडबैक लेने के लिए ऑनलाइन सर्वे भी करवाती हैं। इस सर्वे में हिस्सा लेकर पैसे कमा सकती हैं आप। कुछ वेबसाइट्स प्रोडक्ट के रिव्यू लिखने के लिए भुगतान भी कंपनियां करती हैं। इसमें किसी स्किल की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा समय और धैर्य रखें, आप घर बैठे ही पैसे इसको कमा सकती हैं इसमें। सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी इसी एक क्षेत्र है, जिसमें कई छोटे छोटे व्यवसाय अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए लोगों को हायर करती हैं। और अगर आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म का अच्छा ज्ञान है तो आप यह काम कर सकती हैं। इसमें आपको पोस्ट शेड्यूल करना होता है, कंटेंट बनाना होता है और फॉलोवर्स के साथ इंटरेक्ट कर आपको करना होता है। तो यह काम घर बैठे कर सकती हैं, इसमें कोई निवेश नहीं होता है। अगर एक शानदार तरीका है और घर बैठे पैसे कमाने का, बीमा एजेंट भी बन सकती हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट भी बेच सकती हैं आप ऑनलाइन, और यूट्यूब के जरिए या डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर सकती हैं। तो बहनों, डिजिटल मार्केटिंग का क्षेत्र तो आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप ऑनलाइन ईमेल मार्केटिंग का थोड़ा भी ज्ञान है तो आप ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए इस क्षेत्र में अपने आप को आजमा सकती हैं और आगे बढ़ा सकती हैं। तो बहनों, व्यवसाय कोई भी हो, बस मेहनत और धैर्य की इसमें ज़रूरत होती है। आप अनुभव हासिल करेंगी, आपकी आय बढ़ेगी और बस तो हो जाइए तैयार, अपने कौशल का उपयोग करें और अपनी आर्थिक आज़ादी की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो जैसे आपको पंख परवान चढ़ने लगेंगे और बादल पे पाँव, तो फिर जब मन उड़ने लगेगा और आप में हौसले आ जाएंगे तो पांव तो जमीन पर पड़ेंगे ही नहीं, बादलों पर उड़ने लगेंगे।

जी बहनों, आइए अब चलते हैं रसोई की तरफ और बनाते हैं जल्दी से सुबह का नाश्ता। तो बहनों, काफ़ी ये पोहा के बारे में बताते हैं, और जो काफ़ी स्वादिष्ट होता है, हेल्दी भी होता है और पोषण से भरपूर नाश्ता ये होता है। बहनों, इसमें एक पाव चूड़ा रख लें, हरी मटर 1 कप, और अगर मटर नहीं है तो आप मूंगफली भी इसमें डाल सकती हैं। आलू भी एक छोटे छोटे बारीक पीस में काट लें, और 2 प्याज बारीक काटें, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती रखें, और 1 चम्मच मसाला और हल्दी, और स्वादानुसार नमक भी रखें, और फ्राई करने के लिए तेल। तो बहनों, आप जो है पहले कढ़ाई में गर्म होने के लिए तेल डाल दें, फिर उसमें प्याज मटर, और आपको ये मटर नहीं है तो मूंगफली भी डाल दें, और आलू के छोटे छोटे जो पीस हैं उसमें आप डाल करके उसको फ्राई कर लीजिए, और उसके बाद आप जो चूड़ा धो करके आप

साफ करके रखी हैं, तो उसके बाद उसको चूड़े को भी डाल करके एक साथ फ्राई करें, और ऊपर से एक एक चम्मच मसाला और जो एक चम्मच मसाला और जो है हरी मिर्च, धनिया की पत्ती और प्याज, ये सब तो आपने डाल करके उसको खूब अच्छी तरह फ्राई कर लें, और उसको धीरे धीरे आप चलाती भी रहें। उसके बाद 2 मिनट फ्राई करें, साथ ही मसाला, हल्दी, नमक और पोहा में डाल करके, जैसा कि हमने बताया ना कि उसको फ्राई करें, और फ्राई भी इतना ना करें कि एकदम मतलब एकदम जो है कुरकुरा हो जाए, लेकिन यह है कि पोहे का स्वाद बना रहे। और इसके बाद आप जो है पोहा फटाफट 5 मिनट में गर्मा गर्म बनता है बहनों, तो आप भी जल्दी, और संडे का तो ये पोहा भाई नाश्ता अच्छा होता है, तो आप इसको ज़रूर बनाएं और अपने परिवार और बच्चों को खिलाएं, तो काफ़ी हेल्दी होता है। और आइए इसी के साथ सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: जी बहनों, गाना तो बहुत ही प्यारा था और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का समय समाप्त होता है। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: अभी बहने सुन रही थी कार्यक्रम नारी जगत, आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं जरूरी संदेश।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
4: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।
5: होगी बदलाव की अब शुरुआत, सुधरेंगे तेरे हालात। मत हार मान, तू है देश की शान। तू कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, एक नया टीवी चैनल जहां होंगी बातें बदलाव की और आपके कल के बेहतर शुरुआत की। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की।
6: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
7: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
8: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
7: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
8: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
7: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
8: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
7: For details, log on to www.ddindia.com।
6: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। खेती किसानी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वार्ता, पशुओं में बाजपन की समस्या। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सुमिता।
1: पिछले कई दशकों से पाया गया है कि जैसे जैसे दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन में वृद्धि हुई है, वैसे ही उनकी प्रजनन क्षमता में गिरावट हुई है। दुधारू पशुओं में दूध उत्पादन की क्षमता प्रत्यक्ष रूप से उनकी प्रजनन क्षमता पर निर्भर करती है। अक्सर हमारे पशुपालकों को ये पता ही नहीं चल पाता कि उनके दुधारू पशुओं में मां बनने की क्षमता है भी या नहीं, जिसके कारण उनके काफी आर्थिक नुकसान वहन करना पड़ता है। हालांकि बाजपन एक बड़ी परेशानी है, लेकिन अगर हमारे पशुपालक भाई अलर्ट हो जाएं, तो गाय भैंसों के बाजपन को दूर किया जा सकता है और दूध उत्पादन में भी वृद्धि की जा सकती है। पशुओं में अस्थायी रूप से प्रजनन क्षमता घटने की स्थिति को ही बाजपन कहते हैं। बाजपन की स्थिति में दुधारू गाय अपने सामान्य ब्यात अंतराल को कायम नहीं कर पाती, जो कि 45 से 60 दिन का होता है। ब्यात अंतराल को कायम रखने के लिए पशु ब्याने के बाद 45 से 60 दिन के अंदर हीट में आना चाहिए और 100 दिन के अंदर गाय गाभिन हो जानी चाहिए। दुधारू पशुओं में बाजपन दो तरह का हो सकता है, स्थायी और अस्थायी। स्थायी बाजपन जो है तीन तरह से हो सकता है, जैसे मादा पशुओं में जनन अंगों में अंडाशयों का अनुपस्थित होना या अंडाशयों का विकसित ना होना, और एक फ्री मार्टिन कंडीशन होती है जिसमें एक नर और एक मादा जुड़वा बच्चे जब होते हैं तो मादा जो होती है वो अक्सर बांझ होती है। इन तीनों ही व्यवस्थाओं द्वारा उत्पन्न बांझपन स्थायी होता है और इसका कोई उपचार नहीं है, इसलिए ऐसे पशुओं को अपने समूह से छांट के अलग कर देना चाहिए। दूसरा होता है अस्थायी बांझपन, और ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के हो सकते हैं, कार्यात्मक, संक्रामक या प्रबंधन से संबंधित। अब कार्यात्मक बांझपन जो होता है वो अप्रत्यक्ष मद या फिर साइलेंट हीट, मौन मद, इन कंडीशंस में जो पशुपालक होते हैं वो स्ट्रेस साइकिल तो पशु की नॉर्मल होती है, लेकिन पशुपालक जो है हीट के साइंस को पहचान नहीं पाते, जिससे उनका सही समय पे एआई नहीं हो पाती है और पशु जो है गाभिन नहीं हो पाते हैं। फिर एक होता है ट्रू एनिस्ट्रेस, मतलब उसमें पशु जो है हीट में आते ही नहीं है, और डिलेड ओव्यूलेशन होता है, मतलब अंडाशयों से अंडा जो है सही समय पर अगर नहीं निकलता है तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण पशु गाभिन नहीं हो पाते हैं। और अंतिम जो होता है सिस्टिक ओवरी होती है, मतलब अंडाणु जो है उसपे सिस्ट बन जाता है, या परसिस्टेंट कॉर्पस लूटियम होता है, जैसे जो गाभिन पशु होते हैं जब बच्चा दे देते हैं तो कॉर्पस लूटियम टूट जाता है, जब वो नहीं टूटता है उसकी वजह से भी पशु हीट में नहीं आते और गाभिन नहीं हो पाते। फिर दूसरा होता है संक्रामक बांझपन। अब संक्रामक में भी अनिर्दिष्ट होते हैं और कुछ विशिष्ट होते हैं। तो अनिर्दिष्ट में जैसे सूजन आ जाती ओवरी में, या फिर फेलोपियन ट्यूब्स में, यूट्रस में, या सर्विक्स में, वजाइना में, ये इनके मेन जो रीजन होता है वो सब कारण एक जैसे ही होते हैं, या तो जैसे गर्भपात हो जाए, या अकाल प्रसव, मृत जन्म होता है, कठिन प्रसव हो जाता है, डिस्टोकिया जिसको हम कहते हैं, या जेर सही समय पे नहीं गिरती है जिसके वजह से पशु में संक्रमण हो जाता है। ये मेनली जो है जब साफ सुथरी जगह पे प्रसव नहीं हो पाता है या सफाई का ध्यान नहीं रखने की वजह से होता है। और इन सारी परिस्थितियों के निवारण के लिए गाभिन पशुओं का पोषण बेहतर तरीके से होना चाहिए, गाभिन पशु का प्रसव साफ सुथरी जगह पर होना चाहिए, जेर सही समय पे गिरनी चाहिए उसकी, और अगर कठिन प्रसव जैसी स्थिति उत्पन्न हो तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। प्रसव के बाद जेर गिरने का जो है 8 से 12 घंटे तक इंतजार करना चाहिए, और पशुओं में एआई करते समय हमेशा कीटाणु रहित उपकरणों का ही उपयोग होना चाहिए, और एआई करने से पहले ये भी कंफर्म कर लेना चाहिए कि पशु पहले से गाभिन ना हो। फिर दूसरा जो विशिष्ट संक्रमण होता है ये रोगाणुओं के द्वारा होता है, और ये पूरे समूह को भी अफेक्ट कर सकता है, जिसके कारण पूरे समूह की प्रजनन क्षमता पर भी असर पड़ता है। ये तीन मेन इसके वो होते हैं, एक ट्राइकोमोनियासिस होता है, ये जो ट्राइकोमोनास प्रोटोजोआ से होता है, और ये गायों में बाजपन उत्पन्न करता है। गाभिन गायों में पहले तिमाही में इसमें गर्भपात हो जाता है, पायोमेट्रा जैसी स्थितियां भी उत्पन्न होती है। इसके रोकथाम के लिए जो संक्रमित गाय होती है उसको समूह से अलग कर देना चाहिए और 5-6 हीट तक उसको प्रजनन नहीं कराना चाहिए। गायों में जो है सांड की बजाय एआई से प्रजनन कराने को प्राथमिकता देनी चाहिए। फिर दूसरा है विब्रियोसिस, ये कैंपाइलोबैक्टर फीटस नामक बैक्टीरिया से होती है और ये भी संक्रमित सांड या एआई के दौरान बैक्टीरिया से संक्रमित वीर के प्रयोग से होती है। इस रोग में एंडोमेट्राइटिस जो अंतः गर्भाशय जो होता है उसमें सूजन आ जाती है, प्रारंभिक भ्रूण मृत्यु हो जाती है और गाभिन गाय जो होती है उसकी दूसरी तिमाही में गर्भपात होता है। संक्रमित गाय में जो अंतः गर्भाशय में सूजन की वजह से वो गाय गाभिन नहीं हो पाती है और रिपीट ब्रीडर जैसे लक्षण दिखाती है, मतलब बार बार उसको एआई करने पे भी कंसीव नहीं करती है। विब्रियोसिस के निवारण के लिए गायों में सांड के बजाय कृत्रिम गर्भाधान की विधि से प्रजनन को कराना चाहिए। फिर तीसरा ब्रुसेलोसिस होती है, ये बीमारी ब्रुसेला एबॉर्टस बैक्टीरिया से होती है और गाभिन गाय के तीसरे तिमाही में गर्भपात का कारण होती है। यह बैक्टीरिया जो है मुख्य रूप से संक्रमित आहार और पानी से संचारित होता है, जिसके अलावा संक्रमित वीर्य से एआई करने पे भी ये संचारित हो सकता है। गाय में इस बैक्टीरिया का एक बार संक्रमण होने पर वो जीवन भर जो है संक्रमित रहती है और पूरे समूह को संक्रमित कर सकती है। इस रोग का गायों में मतलब ग्रसित गायों में कोई उपाय नहीं है, इसलिए ऐसी गायों को समूह से अलग कर देना चाहिए। किसी भी समूह में अगर किसी गाय का समय से पूर्व गर्भपात हो जाता है तो उसको समूह से अलग करके उसके बाद उस जगह को कीटाणु रहित करना चाहिए। और इस बीमारी से बचाव के लिए छोटी बच्चियां जो होती है 3 से 7 महीने की, उनमें ये वैक्सीन भी लगाया जाता है। सबसे मुख्य जो हमारे पशुपालकों को ध्यान देने के लिए जो ध्यान देना चाहिए वो होता है प्रबंधन से संबंधित बाझपन, और प्रबंधन से संबंधित बाझपन का ये मुख्य कारण है और इसके अंतर्गत पोषण, पशु में मद की स्थिति की पहचान और तनाव संबंधित जो होता है ये शामिल है। तो पोषण संबंधित जो है, पोषण संबंधित में पशु को बैलेंस डाइट देना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, विटामिन, मिनरल, ये सारे बैलेंस्ड पोर्शन में होना चाहिए। किसी भी चीज की अधिकता या न्यूनता होने पे वो प्रजनन को प्रभावित करती है। विभिन्न विटामिन्स जैसे विटामिन ए, डी, ई और मिनरल्स जैसे फास्फोरस, कॉपर, कोबाल्ट, आयोडीन, सेलेनियम, ये जो है मुख्य रूप से प्रजनन को प्रभावित करते हैं, इसलिए पशु के राशन में ये सारी चीजें सही अनुपात में होनी चाहिए और पशुओं को प्रतिदिन जो है 50 ग्राम खनिज मिश्रण चारे में मिलाकर देना चाहिए। अभी दूसरा होता है पशु में मद की स्थिति की पहचान, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और पशु को मद की स्थिति में सही समय पर नहीं पहचानने से एआई जो है सही समय पर नहीं हो पाती, जिसके कारण पशु गाभिन नहीं हो पाता है। इसलिए जो भी पशु हीट में है उसको कम से कम दिन में 3 बार हीट

0: बचाना चाहिए। परजीवी समस्या के निवारण के लिए पशुओं को हर 3 से 4 महीने में कृमिनाशक दवाएं देनी चाहिए। फिर दुधारू पशु जो होते हैं इनमें बांझपन की समस्या जो होने से पशुपालक को आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए पशुपालकों को इन चीजों पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ताकि उनकी आर्थिक उन्नति हो और उनके फार्म का भी विकास हो।
1: पशुओं में बांझपन की समस्या, अभी आपको इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सुमिता। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं, समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में रिले होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इंकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान की खबर है। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। दोपहर 1 बजे तक मगरहाट पश्चिम में लगभग 56% और डायमंड हार्बर में लगभग 55% मतदान दर्ज किया गया। मतगणना 4 मई को होगी। तमिलनाडु के सभी 234 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती के लिए कुल 62 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस बार डीएमके, एआईएडीएमके और राज्य के राजनीतिक मैदान में नए खिलाड़ी के तौर पर उभरी टीवीके पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। कई सीटों पर पिछले चुनाव में कम अंतर से जीत हार होने और इस बार बहुकोणीय मुकाबले की आशंका को देखते हुए राजनीतिक दल मतगणना के दिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कड़ी निगरानी रख रहे हैं और इसके लिए विशेष वॉर रूम तैयार किए गए हैं। तमिलनाडु की प्रधान सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक भी आगामी मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला चुनाव अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं और तैयारियों का जायजा ले रही हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: उधर केरलम में सोमवार को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी रतन यू केलकर ने बताया कि मतगणना 8 बजे से 43 स्थानों पर 140 मतगणना केंद्रों पर होगी। इस प्रक्रिया के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सूक्ष्म पर्यवेक्षक, मतगणना पर्यवेक्षक और सहायकों सहित कुल 15,465 अधिकारी तैनात रहेंगे। स्ट्रांग रूम में उम्मीदवारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, चुनाव पर्यवेक्षकों और अधिकारियों की उपस्थिति में मतपत्र खोले जाएंगे और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल को लोकसभा की 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल हैं। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फगन सिंह कुलस्ते करेंगे। समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों की मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक सुरक्षित राष्ट्र। ये संदेश परीक्षण के लिए है, इसलिए जनता को इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। इसे दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। संचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
4: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। इस चरण में आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता, जाति और अन्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों सहित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। जनगणना का उद्देश्य नीति नियोजन और विकास पहलों को समर्थन देने के लिए व्यापक डेटा तैयार करना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
5: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज पटना में बिहार और झारखंड के विभिन्न मीडिया संस्थानों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान श्री कुमार ने सभी मीडिया संस्थानों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी मीडिया संस्थानों को डिजिटल मीडिया प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान मॉडल पर भारत और नेपाल के बीच काठमांडू में बैठक हो रही है। भारत की ओर से बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक 30 अप्रैल और 1 मई को काठमांडू में आयोजित कोसी और गंडक परियोजनाओं पर भारत नेपाल संयुक्त समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद हो रही है। बैठक में दोनों पक्षों ने जल प्रबंधन और अवसंरचना से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। नेपाल ने पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के 35 किलोमीटर लंबे नेपाली हिस्से के साथ साथ कोसी बैराज, गंडक बैराज और पश्चिमी मुख्य नहर के कुछ हिस्सों से अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के तटबंधों पर लगे बिजली के खंभों को स्थानांतरित करने की भी मंजूरी दी गई थी। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भारी वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की भी संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। अमेरिका ने वैश्विक शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि वे हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने के लिए ईरान को भुगतान करती है तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इससे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। खबरों के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में अमरीका और इसराइल के बीच हुए संघर्ष के बाद ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही रोक दी थी। इसके बाद ईरान ने अपनी तटरेखा के पास वैकल्पिक मार्गों से कुछ जहाजों को गुजरने की अनुमति दी और कभी कभी इसके लिए शुल्क भी वसूल किया था। अमेरिका ने 13 अप्रैल को हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी लागू की। इससे ईरान के तेल टैंकरों को रोक दिया गया। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 45 वाणिज्यिक जहाजों को वापस लौटाने के लिए कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमेरिका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। ईरान द्वारा संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका को भेजे गए ताजा प्रस्ताव के बाद कल वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। सप्ताह भर में ब्रेंट क्रूड ऑयल में 2.7% की वृद्धि हुई और WTI में 8% की तेजी आई। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था। ये IPL इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा रन चेज है। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से पराजित किया था। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंची ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इंकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले दो दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। नेपाली प्रसारण कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ससुराल झुनकी का सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे पुनः प्रसारण सुबह 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर।
1: अब प्रस्तुत गर्न लागिरहेछौं लोक तथा आधुनिक गीत। प्रथमा सुनोस् लोकगीत रुना छेत्रीको स्वरमा।

मीडियम वेव 3.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्स पर ही होंगे। FM की 100.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी गोरखपुर से बोल रहे हैं। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम की 4:47 हो रहे हैं। अब संपन्न होती है आज की हमारी दोपहरकालीन प्रसारण सभा। सायं 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों में न जाने कितनी ही फिल्मी हस्तियों से आज तक हम मिलते रहे हैं, उनसे रूबरू होते रहे हैं, और आपने फिल्म के जितने भी पक्ष हैं, जितने पहलू हैं, फिल्म निर्माण हुआ, फिल्म निर्देशन हुआ, फिल्म में एक्टिंग करने वाले भी यहां आते रहे हैं, फिल्म के लिए गीत गाने वाले आते रहे हैं, संगीतकार आते रहे हैं, शायर आते रहे हैं, गीतकार आते रहे हैं, मगर फिल्म का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, एक पहलू है, जो है फिल्म एडिटिंग। आज उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है विविध भारती के स्टूडियो में जाने माने फिल्म एडिटर यानी फिल्म संपादक दिलीप दरक जी को। दिलीप जी, विविध भारती के स्टूडियो में इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हम भी आपका सबका आभार मानते हैं कि आपने हमको बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में, और सभी श्रोताओं को भी हम स्वागत करते हैं और सबका अभिनंदन करते हैं कि स्टाफ का पूरा विविध भारती के, जिन्होंने हमको इस इंटरव्यू के लिए बुलाया
0: जी
1: और संवाद के लिए बुलाया, तो हम आपका आभारी है। और हम ऐसी चीजों पर बातचीत करेंगे जो कि फिल्म से संबंधित है, सब बातचीत करेंगे। तो पात्रिकर जी, आप पूछिए क्या प्रश्न है।
0: दिलीप जी, फिल्मों में कहानी के मुताबिक जितने सीन्स शूट किए जाते हैं, गीतों का एडिटिंग होता है, इसकी तो बात हमने की, मगर कई बार एक एक्शन सीन्स होते हैं जो मारधाड़ वाले सीन्स हुए हैं, या कहीं से मोटर आ रही है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, इस तरह के सीन जो एक्शन सीन्स होते हैं, इनमें एडिटिंग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
1: क्यों? तो सर, वो शॉर्ट में क्या करते हैं, वो एक्शन सीन में
0: जी,
1: एक्शन सीन तो अभी सब तो कंप्यूटराइज हो गया, पहले रियल हो जाता था।
0: अच्छा,
1: मतलब पहले गाड़ियां उड़ाते थे।
0: हाँ।
1: तो एक पिक्चर हमने की थी, उसमें 6 गाड़ियां उड़ा दिए थे।
0: ओहो,
1: रियल चेस हुई थी।
0: अच्छा,
1: और वो इतनी बड़ी चेस है, हिंदुस्तान की पहली चेस थी।
0: हाँ।
1: जो राजश्री ने पिक्चर बनाया था एजेंट विनोद,
0: हाँ,
1: उसमें 6 के 6 गाड़ियां उन्होंने उड़ाए थे, उसमें कोई वायर नहीं था।
0: हाँ।
1: या कोई ट्रिक नहीं थी।
0: अच्छा,
1: वीरू देवघन उसका ये था फाइट कंपोजर एक्शन सीक्वेंस
0: जी,
1: उन्होंने गाड़ियां कैसे उड़ाए थे आज भी हम देखते हैं। और उन्होंने तो यहां तक किया था कि बॉम्बे में कुलाबा में शूट चल रही थी, मोटर बाइक जाते ऐसा ऊपर से। वो तो उन्होंने अपना इसे कहते, उस टाइम में कोई वायर नहीं था। अभी तो क्या है, थोड़ा बहुत भी हुआ तो वायर लगा देते।
0: अच्छा।
1: जैसा अभी टेबल पर से कूदना है, वायर लगाए कूदे। मतलब उस टाइम के जो हीरो थे, जितने भी हीरो है, धर्मेंद्र है, शम्मी कपूर है, ये मतलब ज्यादा से ज्यादा खुद बॉक्सिंग
0: किया करते थे, पूरा
1: एक्ट करते थे। उस टाइम में वायर था ही नहीं सर, खाली चेस वगैरह में होता था, तो उसमें थोड़ा बहुत कहीं ये हो जाता।

0: था,
1: हाँ
0: बाकी खुद कर लेते थे सब। और बहुत सारे सीन रहते थे जैसे जंप मारने का वगैरह,
1: हाँ
0: उसमें कई
1: हाँ
0: जगह पर डुप्लीकेट यूज करते थे। और उस टाइम में तो क्या होता था कि एक पिक्चर आई थी, मैं बताता हूँ, गीता मेरा नाम पिक्चर का नाम है,
1: जी
0: और एक आई थी हमराई रामानंद सागर की,
1: जी
0: उसके अंदर एक सीन है हमराई में, रणधीर कपूर, तनुजा और गजानन जागीरदार,
1: जी
0: उनके पीछे गुंडे लगते हैं और वो भागते हुए जाते हैं, और एक टूटा हुआ ब्रिज था उधर,
1: हाँ
0: आप पिक्चर में अभी भी देखेंगे
1: जी।
0: तो पहले टेक में वो जो डुप्लीकेट जो भी बैठे थे उन्होंने पूरा मार दिए थे जंप उधर।
1: अच्छा
0: वो तो 40-50 मतलब 30-40 फीट का होगा ऐसा
1: हाँ
0: ब्रिज, तो आपको मालूम है छोटे नाले पर रहते हैं,
1: अच्छा
0: मगर सेकंड टेक में वो गिर गए थे उधर आधे में,
1: ओहो
0: तो ऐसा है। और एक पिक्चर आई थी गीता मेरा नाम, उसमें फिरोज खान, सुनील दत्त और साधना,
1: जी
0: तीनों पीछे से तीनों भी क्रॉस करते पूरा जंप
1: अच्छा
0: करके, तो उसमें पहले जोखिम रहता था, कर लेते थे पहले, बहुत सारे में एक्सीडेंट हो जाते थे, कभी वो फाइटर ये हो जाता था। और अभी क्या है तो अभी तो कंप्यूटराइज हो गया, अभी तो इजी हो गया
1: जी। तो ऐसे
0: अभी।
1: जो ये एक्शन सीन्स होते हैं, इन दृश्यों को जोड़ना, ये
0: हाँ,
1: कितना मुश्किल काम होता था?
0: मुश्किल काम नहीं, उनके शॉट रहते सर,
1: अच्छा
0: शॉट वो कटिंग में ले लेते, शॉट
1: अच्छा
0: कटिंग में लेने के बाद हम वो काट लेते, जैसा इधर से गाड़ी का एक्सेलेटर दबा दिया, जैसा विलन ने भी एक्सेलेटर दबा दिया,
1: अच्छा
0: हीरो उधर से आ रहा है,
1: हाँ
0: विलन इधर से आ रहा है, दोनों की टक्कर हो रही है, दोनों उड़ के गिर रहे हैं, ये अलग अलग शॉट लेते वो
1: अच्छा
0: कट में, तो
1: हाँ
0: हमको वो टाइमिंग के हिसाब से ड्रू किया उधर, उसने ड्रू किया, फिर
1: हाँ
0: इसने देखा, उसने देखा, बैंग आ गया उसमें, फिर
1: ओके
0: उसके बाद ये कर लेते हैं। ये सब पूरे यूनिट का काम है सर, अकेला एडिटिंग में क्या होता है कि जिसमें डायरेक्टर का कल्पना रहती है, उसका थॉट रहता है,
1: जी
0: उसको
1: जी
0: वो नैरेट करते हैं फाइट कंपोजर के साथ में,
1: हाँ
0: फाइट कंपोजर उसको एग्जीक्यूट कर लेता है, पहले करके बताता है, वो भी सोचता है कि कैसा करे, ये करने के बाद फिर बाद में वो शॉट लिए जाता है, उसको असेंबल करते करते हैं, और
1: हाँ
0: उसको असेंबल करने के बाद में वो जो हम पब्लिक को दिखाते हैं, असेंबल करने के बाद में फाइनल जो फुटेज रहता है उसका, जो
1: हाँ
0: इंपैक्ट क्या रहता है कि सिक्वेंस जब रहता है कि भाई इधर से हीरो आएगा, इधर से विलन आएगा, दोनों की टक्कर होगी, दोनों हवा में गिरेंगे,
1: हाँ
0: इधर गिरेंगे, उधर गिर गए, रिएक्शन आ गया, दोनों उठ के भाग गए, ये तो
1: अच्छा
0: अपना कहानी में हो गया,
1: जी
0: वो
1: जी
0: शूट कर लेते,
1: हाँ
0: शूट करने के बाद डायरेक्टर वगैरह दोनों मिलके अपना दिमाग लगा के सब जो उनका कॉन्सेप्ट है वैसा कर लेते, बाद में एडिटर को लाके दे देते भी काट दो, तो हम काटते हैं और डायरेक्टर को पसंद आ गया तो हम जीत गए।
1: अच्छा।

0: बहुत सारे एडिटर पहले के ये थे, तो कि वो डायरेक्टर को क्या चाहिए,
1: हाँ
0: आपने शूट किया क्या चाहिए, वही डायरेक्टर ये कर लेता था।
1: कोई ऐसी फिल्म का एक्शन सीन याद आ रहा है जिसको एडिट करने में आपको बहुत मजा आया हो और डायरेक्टर को बहुत ज्यादा आपका काम पसंद आया हो?
0: पिक्चर तो किया था मैं, इंडिपेंडेंट बहुत पिक्चर किया था।
1: हाँ जी,
0: एक पिक्चर थी हमारा एक जख्म बोल के पिक्चर था एक,
1: हाँ
0: मैंने इंडिपेंडेंट 2006 में आया था पिक्चर
1: जी,
0: उसमें मुकेश तिवारी एंड नया हीरो था,
1: हाँ
0: उसका था। और एक जानी दुश्मन पिक्चर आई थी हमारी
1: जी जी,
0: जो सनी देओल की,
1: हाँ
0: उसमें ग्राफिक था पूरा इसमें, तो उसके अंदर टूनू वर्मा सनी देओल तरफ से फाइट मास्टर था और अक्षय कुमार तेरी तरफ से अब्बास अली मुगल।
1: अच्छा,
0: तो इतना अच्छे तरह से शूट किए थे, वो हमको बोलते थे दादा ये शॉट ऐसा यहां से आएगा, ये ऐसा आएगा, ये आएगा। तो उसमें क्या है कि जो पंच रहते थे, जैसा इधर मुंह पर मार दिया वो अलग लेते थे, वो लॉन्ग शॉट में अलग रहता था। जैसा आपने बोले ना लॉन्ग शॉट में हीरो आया नजदीक, क्लोज में फेस के ऊपर विषम कर दिया,
1: अच्छा
0: तो वो अलग शॉट रहता था। फिर गिरने का इनका, अभी तो आजकल क्या है गिरना पड़ना ज्यादा हो गया, ऊपर से जंप मार लेते गोल गोल घूमते, मगर उस टाइम में ज्यादा नहीं रहता था। तो वो पूरा मैच करके वो पसंद आना चाहिए, डायरेक्टर बोले कि भाई अच्छा लगा हमको
1: जी जी।
0: कुछ एडिटर ऐसे थे कि डायरेक्टर उनको बोलते थे दादा ये काम कर लो आप। हमारे एक डायरेक्टर थे, मेरे भाई के साथ भी मैंने काम किया था नागेंद्र के साथ में
1: जी,
0: मगर एक डायरेक्टर थे प्रकाश पंचाल
1: जी जी,
0: तो उनके साथ में मेरी पहली पिक्चर थी लाभलो सौभाग्य चलेनी,
1: मराठी फिल्म,
0: मराठी फिल्म
1: जी।
0: तो उसमें उसके पास 7 एडिटर जा चुके थे वो पिक्चर में।
1: हाँ,
0: उसका कंडीशन क्या था कि 22 फरवरी को पिक्चर की शूटिंग चालू करने वाले थे वो,
1: हाँ
0: 22 मार्च को पिक्चर की शूटिंग खत्म,
1: अच्छा
0: 1 तारीख से डबिंग चालू,
1: हाँ
0: और 17 तारीख के दिन उनको मिक्सिंग, और उनका हीरो का कोई जाने वाला था बाहर। तो वहां पर सब डर गए कि भाई इतना कैसा काम होगा ऐसा फास्ट। तो मुझे बुलाया डायरेक्टर ने
1: जी,
0: तो प्रोड्यूसर भी थे साथ में 3, अजय शाह, राजेंद्र काले और अमित मंगतानी, 3 प्रोड्यूसर थे। अमित मंगतानी का था कैसेट का, कैसेट बनाते थे
1: जी,
0: और ये राजेंद्र काले तो कॉरपोरेटर थे गोरेगांव के, और अमित शाह बिजनेसमैन थे
1: जी,
0: तो उनको तो कुछ ज्यादा नहीं था। तो मुझे बोले कैसा करेंगे, मैं बोले करके दे दूंगा बताओ। तो उन्होंने पूछा कैसा करोगे, मैं डायरेक्टर को बोला कि एक काम करो, जो पिक्चर फ्लैशबैक चालू होते थे
1: जी,
0: एक समारोह है उधर शादी हो रही एंगेजमेंट, मगर कोई आदमी विलन आके बोलता है कि भाई ये नाजायज बच्चा है, तो फिर वो एक्सप्लेन कर लेता है पूरी पिक्चर की कहानी। तो उसमें क्या फ्लैशबैक था, फ्लैशबैक 1 नंबर में चालू होता था, 16 नंबर में खत्म हो जाता था।
1: अच्छा,
0: तो डायरेक्टर को मैंने क्या बोला कि सर आप एक काम करो, आप मुझे कहानी बताओ खाली क्लाइमैक्स में आप बैठो, समझे ना। और बहुत सारे डायरेक्टर कॉम्पैक्ट स्क्रिप्ट रहता था, भाई ये सीन है इसमें इतने शॉट है,
1: अच्छा
0: वो स्क्रिप्ट हमको दिए जाते थे, मैं स्क्रिप्ट के हिसाब से एडिट किया उसको, और टेकिंग अच्छी रहती थी, बहुत सारे डायरेक्टर टेकिंग अच्छी करते थे। मेरे डायलॉग के बाद आपका डायलॉग आ गया, हीरोइन का आ गया, ये आ गया, इंसर्शन आ गया, ये आ गया, हो गया, हो गया, और हम सीन दिख के दिखाते थे। कुछ डायरेक्टर तो ईजी रहता, तो प्रकाश पंचाल के साथ मैंने 9 पिक्चर की है एक ही डायरेक्टर के साथ में।
1: अच्छा,
0: तो उनका क्या था कि भाई वो शूटिंग उधर करते थे, कभी कभी हम एडिटिंग इधर करते थे, तो आने तक टाइम बच जाता था। उन्होंने जब 22 को मार्च को खत्म किया,
1: हाँ,
0: तो मेरा क्लाइमैक्स छोड़ के गाने छोड़ के सब एडिट कर लिया था मैं।
1: अच्छा,
0: आने के बाद देखे उन्होंने क्लाइमैक्स के लिए बैठ गए, क्लाइमैक्स बैठने के बाद वो क्या रहता है थॉट रहता है ना उनका, कहां से चालू करना है कहां खत्म करना है,
1: हाँ।
0: बाकी तो सब था, और गाने तो एडिट अच्छी तरह से पिक्चराइज किए थे। तो वो हमने वो पिक्चर को उनको करके दे दिया, तो पिक्चर रिलीज हो गई। उसके बाद वो डायरेक्टर हमको छोड़ा ही नहीं,
1: अच्छा
0: 10 पिक्चर किया, मेरे भाई की पिक्चर नहीं किया मैं दूसरी, मगर उसकी किया था।
1: अच्छा अच्छा, तो कार्यक्रम के इस मोड़ पर आप कौन सा गीत अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे?
0: मेरा सर एक गाना था मैं जिसको बहुत लाइक करता हूं,
1: हाँ जी,
0: हर एक आदमी की जिंदगी में एक ख्वाब होता है, एक सपना होता है, हर एक का, लड़की का भी रहता है, लड़के लड़की को लगता है कि हमको राजकुमार मिले,
1: हाँ।
0: लड़के को लगता है कि हमको राजकुमारी मिले, जो जीवन संगिनी है,
1: हाँ।
0: अर्धंगिनी जो बोलते हैं जिसको,
1: हाँ
0: वो अच्छी मिले तो हमेशा सपने में सोचते रहते हैं,
1: हाँ।
0: एक गाना था वो, पहले मिले थे सपनों में आज सामने पाया तो एक बात जानू, ये जिंदगी पिक्चर का गाना है, राजेंद्र कुमार वैजयंती माला का,
1: हाँ।
0: रामानंद सागर की पहली पिक्चर मतलब उनके बैनर में बनी थी, शंकर जयकिशन का म्यूजिक था,
1: अच्छा,
0: और वो गाना बहुत अच्छा लगा।
1: आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं यही गाना।

0: दिलीप जी, फिल्म देखते समय सबसे पहले टाइटल्स आते हैं,
1: जी।
0: तो हमारे श्रोता जितने भी आम दर्शक हैं फिल्मों के, उन टाइटल्स में एक नाम देखते हैं, उस लिखा होता है फिल्म एडिटर, और उस नाम के नीचे लिखा होता है AFE। ये AFE क्या होता है?
1: सर, जो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है
0: हाँ जी,
1: फिल्म लाइन में, आर्टिस्ट का,
0: हाँ जी,
1: उसके बाद प्रोड्यूसर का,
0: हाँ
1: डायरेक्टर का, कैमरामैन का, एडिटर का, सबके एक अपने यूनियन है। उनके
0: अच्छा,
1: यूनियन मतलब एक एसोसिएशन है जो
0: हाँ
1: कि गवर्नमेंट रिकनाइज है,
0: हाँ
1: तो
0: ओके,
1: उसका नाम है AFE लिखा जाता है, तो एसोसिएशन ऑफ फिल्म एंड वीडियो एडिटर,
0: एसोसिएशन ऑफ फिल्म एंड वीडियो
1: वीडियो
0: एडिटर।
1: एडिटर
0: अच्छा
1: एडिटर
0: अच्छा अच्छा तो वो
1: वो
0: शॉर्ट में
1: हमारा
0: लिखा गया।
1: पूरा जो है ना,
0: हाँ हाँ
1: कुछ जितने भी एसोसिएशन है मेरे, 20-30 जितने भी है,
0: हाँ
1: वो सारे का एक फेडरेशन है, वो
0: अच्छा,
1: उड़ जुड़ा जाता है, तो इसमें सबको लिया जाता है। जैसे डायरेक्टर का IFDA,
0: हाँ हाँ
1: IFDA नहीं, इंडियन फिल्म डायरेक्टर एसोसिएशन,
0: अच्छा,
1: WICA कैमरेमैन का रहता है उनका, ऐसा सबका अलग अलग है।
0: तो ये यानी कि एक प्रोफेशनल एडिटर जो वो बन जाता है और इंडिपेंडेंटली फिल्म को एडिट करता है ना, तो स्वतंत्र रूप से, तो वो AFE अपने नाम के आगे लिख सकता है, ऐसा आप कह सकते
1: नहीं,
0: हैं।
1: हमारे संस्था में क्या था कि हम जितने भी लोग काम करते हैं,
0: जी
1: चाहे उसमें म्यूजिक डायरेक्टर हो, कैमरामैन हो,
0: हाँ
1: राइटर हो, इनके एसोसिएशन है, तो उनको जो भी आप काम करेंगे वहां रजिस्टर करना पड़ता है आपको,
0: अच्छा,
1: बिकॉज कुछ आगे चल के मैटर आ जाए या कोई बोले कि भाई
0: जी
1: ये पिक्चर का एडिटर मैं हूं, तो उसलिए हमारा एग्रीमेंट बनता था, तो
0: अच्छा
1: एग्रीमेंट के साथ में हम जाके उधर हम ये कर लेते थे, रजिस्ट्रेशन होता था।
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: रजिस्ट्रेशन होने के बाद एसोसिएशन में सपोज करो मैं काम कर रहा हूं,
0: जी
1: और अगर समझो वो पिक्चर का प्रोड्यूसर ने किसी दूसरे को रखा था पहले, तो अगर चल के वो क्लेम करेगा तो हमको अड़चन आ जाएगी, इसीलिए
0: जी
1: हम पहले वो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं।
0: तो आप इस एसोसिएशन से सबसे पहले कब जुड़े थे?
1: मैं 78 में,
0: 78 में ही, शुरुआत में ही।
1: हाँ
0: जी,
1: 78 में जुड़ा था,
0: हाँ
1: जो मेरा राजश्री में 1 साल पूरा हो गया था,
0: हाँ
1: जून 78 में, जो अगस्त 78 में, जून जुलाई ऐसा कुछ था। तो उस टाइम में हमको एक कार्ड मिलता था पहले कि भाई अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस में ₹25 में हमको भर के कार्ड मिलता था,
0: जी
1: जो आजकल सब कार्ड बने हैं, वो हम दिखाते थे तो हमको लैब में जाने देते थे,
0: अच्छा,
1: शूटिंग में हमको जाना है जाने देते थे, कि तो उस टाइम, अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, उस टाइम में भी स्ट्रिक्ट था मगर इतना ये नहीं था, गड़बड़ जो होती है आजकल वो
0: हाँ
1: नहीं था, तो वो हम दिखाते थे हमको छोड़ देते थे। फिर उसके बाद हमारा कार्ड बना मेरा असिस्टेंट का 78 में,
0: जी
1: उसके बाद मुझे मनोकामना पिक्चर मिली थी, तो हमको कार्ड मिला था, तो हमारा उस टाइम में फीस कुछ हमसे ₹251 लिए थे
0: अच्छा
1: एसोसिएशन ने,
0: जी
1: जो कि
0: जी
1: उनको लेते हैं सब एसोसिएशन में मेंबर बने लेना आता है, तो उसके बाद वो कार्ड देते, तो कार्ड में लिखा रहता है कि IFDA, जो आप बोले ना
0: हाँ, AFE लिखा होता है।
1: AFE लिखा रहता है, तो
0: हाँ
1: वो कार्ड ऐसा रहता है कि वो हमको कार्ड मिल जाता है
0: जी जी जी
1: लेके,
0: जी
1: तो ये कार्ड में हमको, हम किधर भी जा सकते हैं, और
0: अच्छा
1: एनी स्टेट में ये अप्रूवल है गवर्नमेंट से,
0: हाँ
1: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एसोसिएशन फेडरेशन अप्रूवल है।
0: हाँ
1: जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमको जाना पड़ता है मद्रास, एडिटिंग के लिए मैं मद्रास जाता था, कलकत्ता जाता था, भुवनेश्वर जाता था, जितने भी लैब है उधर जाता था, तो उधर हमको ये कार्ड कैरी करना पड़ता था,
0: अच्छा,
1: तो ताकि वो बोलते थे कि हम इधर के मेंबर है और ये हम ऐसा है, तो AFE का मतलब ये है, मतलब एसोसिएशन ऑफ फिल्म एडिटर।
0: चलिए यहाँ इस बात पे एक और गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे?
1: मैं तो सर जिंदगी में नोक झोंक,
0: जी
1: प्यार के साथ में नोक झोंक जो होना जरूरी है।
0: हाँ
1: आज हम बीबी के पास चले जाते हैं, हमारी बीबी रूठी रहती है, कभी हम देर से जाते, हमारी
0: अच्छा,
1: लाइन ऐसी है, कभी कभी हम 2 दिन इन घर नहीं जाते थे, तो रूठी रहती थी, तो उसके ऊपर एक गाना है शम्मी कपूर का, जवां मोहब्बत पिक्चर का,
0: हाँ,
1: रूठो रूठो ना मेरी जान, इसी बहाने आज तेरी मेरी हो गई पहचान।
0: वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत ये गाना है। आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।

0: Naruto, Naruto, Naruto, Naruto, meri jaan, kisi bahane aaj teri meri ho gayi pehchaan.
1: Dilip ji, एडिटिंग की बात हम कर रहे हैं. एक जमाना था जब फिल्में रील पर बनती थी, निगेटिव रील हुआ करता था
2: जी, जी.
1: और वो फुटेज आपके पास आता था, आप उसको एडिट करते थे. अब जमाना बदल गया है, सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है. शूटिंग जो कैमरे भी जो है वो डिजिटल कैमरे हैं
2: जी सर.
1: तो शूटिंग जो है उसमें डेटा के रूप में वो शूटिंग कैद हो जाती है और बाद में उसकी एडिटिंग भी उसी तरह से होती है कंप्यूटर पे. ये जो फासला है रील से डिजिटल कैमरे तक का, आपको भी ये सीखना पड़ा होगा?
2: नहीं सर, हमारे पास क्या है कि मेरा क्या हुआ कि मेरे जो प्रोड्यूसर जितने भी है,
1: हाँ.
2: प्रोड्यूसर डायरेक्टर जितने में हम पर डिपेंड रहते, डिपेंड मतलब वो बोलते थे कि भाई तुझे ये हमने लाके दे दिए,
1: हाँ.
2: तुम काम करते, हमको मालूम नहीं.
1: अच्छा.
2: क्या पैसा लेना है ले ले, एक कर ले.
1: अच्छा.
2: तो हम लोग स्क्रिप्ट के हिसाब से काम कर लेते थे.
1: अच्छा.
2: अभी क्या हुआ, अभी भी सेम सिस्टम है, खाली अपना कैमरा चेंज हो गया, ये हो गया. तो उसमें क्या है कि अभी कैमरे में चिप्स आ गए.
1: हाँ.
2: कैमरे में चिप्स आ गया. जो अभी मैंने भी एक शॉर्ट फिल्म बनाई है
1: जी.
2: वो मैंने बनाई है माताजी के नाम से, मूसा माता के नाम से
1: जी.
2: तो मैंने भी क्या किया, एक कैमरा लिया.
1: अच्छा.
2: उसके अंदर चिप्स आते हैं, फिर वो अपना कंप्यूटर में लेके वो पूरा जो हमने शूट किया है
1: जी.
2: हमको हार्ड डिस्क में कन्वर्ट करके दे दिए उन्होंने, शूट किए उसमें.
1: अच्छा.
2: तो पूरा कन्वर्ट करके देने के बाद वो जो कन्वर्ट किया हुआ है हमारा मटेरियल, वो हम फिल्म मशीन आते हैं, एफसीपी बोलते हैं.
1: अच्छा.
2: उसमें जाके उसको लोड कर लेते हैं.
1: अच्छा.
2: कन्वर्ट कर लेते हैं उसमें और फिर बाद में उसका एडिटिंग होता है अभी.
1: अच्छा.
2: पहले क्या होता था कि फिल्म पर जब एडिटिंग होती थी,
1: हाँ.
2: तो कैमरे में फूजी कलर, ईस्टमैन कलर, ओलो कलर रील आते थे 400-400 फीट के.
1: हाँ.
2: तो वो रील क्या होता था कि शूट होने के बाद उसको हम डेवलप करके लिए प्रोड्यूसर लैब में भेज देता था. जैसे एक फोटो निकालने के बाद हमारे पास पॉजिटिव आता है, निगेटिव, निगेटिव चला जाता है लैब में डेवलपिंग के लिए. डेवलप होने के बाद हम उसको जोड़ देते थे.
1: अच्छा.
2: जोड़ के रील बनता था उसका, वो रील हम लैब में देते थे, उसका पॉजिटिव बन के आता था.
1: अच्छा.
2: नेगेटिव उधर ही रहता था.
1: हाँ.
2: पॉजिटिव हमारे पास आने के बाद में हम उसको, उसका एक क्लैप रहता था, वन बाय टू टेक वन ऐसा करके आता था आवाज.
1: जी, जी, जी.
2: तो वो आवाज आता था, वो आवाज के साथ में वो जो पिक्चर में आवाज है,
1: हाँ.
2: वो मैच करते थे, तो हमारा पूरा साउंड सिंक में जाता था वो पूरे शॉट.
1: अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा.
2: फिर वो क्या सब असेंबल होने के बाद है ना,
1: हाँ.
2: तो वो हमको आगे पीछे का सब काट के जो ओरिजिनल बेस है, जो हमारा डायलॉग है,
1: हाँ.
2: जो सीन की रिक्वायरमेंट है, उतना ही हम पोर्शन रख के बाकी निकाल देते थे.
1: अच्छा.
2: और उसका फिर रील बनता था. रील बनने के बाद उसमें सब प्रोसेस होता था, बैकग्राउंड म्यूजिक है, इफेक्ट है, सब होता था. फिर वो जैसा रील बनी है उसके हिसाब से नेगेटिव कटिंग होता था उधर
1: जी.
2: तो वो होता था. अभी सब कंप्यूटर पे हो गया सर.
1: आपने एक फिल्म दीवाना मुझसा नहीं, इसके साउंड एडिटर का भी काम किया है. तो ये साउंड एडिटिंग क्या अलग होती है फिल्मों के एडिटिंग में?
2: पहले क्या होता था सर कि एडिटर बॉस, उसके दो असिस्टेंट रहते थे
1: जी.
2: तो पॉजिटिव हम काट लेते थे. पॉजिटिव मतलब जो हमने एडिटिंग हो गया
1: जी.
2: उसके बाद में वो पिक्चर का, वो पूरा पिक्चर कंप्लीट हो गया, डायरेक्टर ने ओके बोल दिया, प्रोड्यूसर ने ओके बोल दिया, सब हो गया. तो वो पिक्चर में जितने भी कैरेक्टर है, एक एक कैरेक्टर आके डबिंग करते थे उसका.
1: अच्छा.
2: डबिंग करते थे तो उसका ट्रैक आता था, जिसको डब ट्रैक बोलते थे हम. वो आता था. फिर उसमें कुछ इफेक्ट रहते थे.
1: अच्छा.
2: ये डबिंग वाला तो पोर्शन हो गया, कैरेक्टर आपका जो आर्टिस्ट है वो डब करते थे. सब आर्टिस्ट उसमें 20 हो, 25 हो, कोई
1: अच्छा,
2: भी हो, हीरो हीरोइन, लॉ, अपना विलन, हीरोइन की मां, सब डबिंग करते थे. उसके बाद उसका एक ट्रैक बनता था डायलॉग का.
1: अच्छा.
2: फिर दूसरा ये इफेक्ट जैसा होता है ना कि ये चाय का कप रख रहे और हीरो चलते हुए आ रहा है, टक टक टक टक, ये असेंबल करते थे. असेंबल रिकॉर्ड किया जाता था फिर से उसको.
1: अच्छा.
2: डबिंग की तरह. और वो सब डालते थे, जैसा गाड़ी का साउंड है वो हमारे पास रिकॉर्डिंग लाके देता था, हम काट के उसको डाल देते थे. तो उसका एक ट्रैक बनता था
1: जी. जी.
2: अलग सा उसमें दो तीन ट्रैक बनने का था. ये एक ट्रैक में है ब्लो, एक में है किक, एक में है बॉडी फॉल.
1: अच्छा.
2: ये सब असेंबल होता था. जो म्यूजिक वाले रहते थे, जैसा बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है, रिकॉर्ड करते थे बैकग्राउंड म्यूजिक हर सीन का
1: जी.
2: उसके अंदर रिएक्शन का अलग वो म्यूजिक लेते थे, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक.
1: अच्छा.
2: जैसा ढम एक आवाज आता था बैंक का, पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है उसमें ढम आवाज आता था पूरा, तो अलग देते थे, उसका बनता था. तो ये सब ट्रैक बनते थे. वो एडिटर लोग जो रहते ना, उनके असिस्टेंट काम करते थे
1: जी.
2: कोई कोई एडिटर को डबिंग देते थे, वो परफेक्ट मैच करता था जैसा इसमें किया है. अपना उसको डबिंग एडिटर बोलते थे, बहुत लोगों ने नाम दिए कोई देते नहीं थे, जैसा मनोज कुमार के पिक्चर में नाम आता था उमा शंकर नायक,
1: हाँ जी,
2: मतलब स्पेशली वो डबिंग के लिए था, बहुत सारे लोग आए, एक बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए अलग आदमी था, तो ये लोग क्या बराबर काम करते थे वो, और परफेक्ट सिंक, मतलब जो आर्टिस्ट ने बोला है वॉइस टू वॉइस लिप सिंक
1: जी,
2: पफ बब ये रहता है ना, मैच करके पूरा उसका ट्रैक बनता था पूरा, और म्यूजिक का भी ऐसा होता था साउंड का, वो सब बोलते थे उसको फॉरेन के अंदर
1: जी,
2: फॉरेन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहती थी ये चीज के,
1: हाँ हाँ,
2: तो डबिंग एडिटर अलग, बहुत सारे पिक्चर में आप नाम देखते थे पुराने में, डबिंग एडिटर, इफेक्ट एडिटर, बैकग्राउंड म्यूजिक का एडिटर, इधर क्या होता था कि हमारा जो प्रोड्यूसर के हिसाब से हम काम करते थे
1: जी,
2: तो उसमें हमारा नाम नहीं आता था पहले, मगर ये दीवाना मुस्तानी में क्या किए थे कि सारा काम बॉम्बे में साउंड का हुआ था,
1: अच्छा।
2: शूटिंग उधर होती थी, एडिटिंग भी उधर होती थी, कुछ पैच शूटिंग इधर किए थे
1: जी।
2: उसमें मिस्टर परवेश मिर्जा बोल के एक डायलॉग राइटर थे उसके,
1: हाँ।
2: उन्होंने हमारे पास आए और बोले कि भाई इसका सारा काम करना है, तो लास्ट में ये हुआ है कि हमने भी काम किया है, एडिटर ने भी काम किया है, तो उन्होंने बोले क्या करे, तुम्हारा नाम देना है, ये तो आपने पैसे हमने आपको दिए, तो मैंने उसको बोला कि भाई एक काम करो साउंड एडिटर बोल के नाम दे दो,
1: अच्छा।
2: जो कि फॉरेन पिक्चर में आता है, जैसे
1: हाँ, हाँ।
2: आप शान पिक्चर देखोगे तो उसमें जो साउंड एडिटिंग का काम किया है,
1: हाँ।
2: डेविड नाम है, डेविड पॉल,
1: अच्छा,
2: स्पेशली नाम आता था उसका साउंड एडिटिंग, तो वो हम देखे थे, तो हमने बोले यार हमारा भी नाम दे दो, और पर्दे पर हमारा नाम आया है तो नाम तो देखो, मेरा नाम आया है तो मेरे फैमिली खुश हो जाएंगे,
1: जी, जी।
2: नाम से कुछ नहीं, मगर क्या है कि लोग भी जानते थे,
1: हाँ।
2: कि भाई जैसा अभी कोई आया, हमारे दोस्तों बोलते थे यार तेरी पिक्चर लगी है उधर, तेरा नाम देख लिया हमने, मुझे सबसे ज्यादा फेमस मैं हो गया मैंने प्यार किया से,
1: अच्छा,
2: तो उसमें मेरा चीफ असिस्टेंट एडिटर नाम दिए थे
1: जी, जी।
2: तो हमारा औरंगाबाद में पिक्चर लगी थी अजंता थिएटर में, और हमारा जो कॉलेज थे मैं जहाँ पर पढ़ता था,
1: अच्छा,
2: उसके कुछ लोग उधर पढ़ते थे, और लातूर में रमा में पिक्चर लगी थी, तो उधर क्या हुआ था कि फिल्म लाइन में हम दो ही आदमी थे, मेरा भाई था 62 में आया था, मैं 77 में, उसके बाद बहुत आ गए उधर मराठवाड़ा से,
1: हाँ।
2: तो जितने भी मेरे प्रोफेसर वगैरह सब थे, कॉलेज के फ्रेंड थे
1: जी।
2: वो पिक्चर देख रहे थे,
1: हाँ।
2: उन्होंने मेरा नाम देखे, थिएटर वाला खुद गया भागते हुए मेरे मम्मी के पास में,
1: हाँ।
2: और बोला मम्मी को कि भाई आज मतलब मेरे जो प्रोफेसर थे, जो दोस्त लोग थे, उन्होंने बोला कि भाई हमको खुशी हो गई कि एक छोटे से कस्बे का लड़का, मतलब ज्यादा एजुकेटर पढ़ा नहीं है,
1: हाँ जी,
2: मतलब उधर का एजुकेशन अलग है, बॉम्बे का अलग है, तो इतना बड़ा पिक्चर में काम किया, वो भी 100-100 फीट के उधर ये रहते थे स्क्रीन रहते थे,
1: हाँ।
2: 200-300-400 फीट के बड़े बड़े बड़े बड़े थिएटर रहते थे, उन्होंने नाम पढ़ लिए भागते हुए गए,
1: हाँ।
2: फिर उसके बाद जो भी पिक्चर में काम करता था वो घर में जाके बोलते थे अरे अपने दिलीप का नाम है, चलो पिक्चर, हमको फ्री में पिक्चर रहती थी
1: जी, जी। तो ये आपके गाँव के लोग, आपके घर के लोग, आपके साथ पढ़ने वाले लोग, इनके लिए आप कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे?
2: सर गाने तो अपना भंडार है, हिंदुस्तान में म्यूजिक का भंडार है, अभी एक एक चुने तो बहुत ये हो जाएगा,
1: बिल्कुल,
2: मगर उसका एक गाना ही मैं फिर से सुनाना चाहूंगा, मैंने प्यार किया का, जो कि बिरहा गीत है, कहे तो से सजना वो तोरी उमरिया, ऐसा गाना है,
1: हाँ जी,
2: वो उन्होंने शारदा सिन्हा ने गाया था, भोपाल इसकी लोक गायिका है बिहार की,
1: जी, जी जी
2: बहुत बढ़िया गाना था उसके पीछे,
1: आइए सुनते हैं।

0: जैसे जैसे दिलीप जी आपका करियर आगे बढ़ा और नई फिल्में भी आप करने लगे, आपने मराठी में फिल्में की हैं, रीजनल फिल्मों की एडिटिंग और हिंदी फिल्मों की एडिटिंग, इसमें कुछ फर्क महसूस करते हैं आप?
1: मैंने तो सर एक पिक्चर किया था, बकला नाम था उसका, छत्तीसगढ़ी,
0: अच्छा
1: छत्तीसगढ़ी पिक्चर किया था। अच्छा, रीजनल पिक्चर में इसमें क्या रहता है, बहुत सारा फर्क रहता है। फर्क क्या रहता है
0: हाँ
1: कि ये हिंदी पिक्चर जो है उसका बिग कैनवास है,
0: जी
1: इंटरनेशनल लेवल पर है।
0: जी जी
1: मतलब आज जो हम इधर देखते हैं, फॉरेन में भी हमारे लोग देखते हैं,
0: जी
1: मगर जो रीजनल पिक्चर रहते हैं ना, पर्टिकुलर वो स्टेट का रहता है। जैसा भोजपुरी है अपना, ज्यादा से ज्यादा यूपी बिहार, जैसा बंगाली पिक्चर है बंगाल, और क्या बोलते हैं अपना छत्तीसगढ़ी। मगर रीजनल पिक्चर में टॉप के दो तीन टेरिटरी है जो कि तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, वो
0: जी
1: हिंदी के लेवल के पिक्चर बनाते हैं, उनका
0: जी
1: बजटिंग हिंदी के बराबर रहता है।
0: जी
1: मगर ये पार्ट, ये दो टेरिटरी छोड़कर, मतलब तमिल पिक्चर और तेलुगु पिक्चर छोड़कर,
0: हाँ जी
1: बाकी सबका क्या है, लिमिट रहता है। क्यों, तो उनका एग्जीबिशन ज्यादा नहीं रहता है ना,
0: हाँ जी
1: जो कि हिंदी पिक्चर में क्या रहता है कि 10 टेरिटरी है, पूरा बिक जाता है, इंटरनेशनल लेवल मार्केट भी है उनका। मगर जो अपनी रीजनल पिक्चर रहती है वो लिमिटेड है, उसी स्टेट के लिए रहता है।
0: हाँ
1: अभी भोजपुरी है, अभी भोजपुरी तो सब जगह पर जाता है, पंजाबी में जाता है, सब जगह पर जाता था, मगर ज्यादा था वो एक उनका स्टेट के उस पर रहता है। मतलब एक क्षत्रिय भाषा रहती है
0: अच्छा
1: और उनका पर्टिकुलर वो स्टेट में ही ज्यादा चलता है। तो उनका क्या रहता है कि एक लिमिटेशन रहता है कि भाई हमको ऐसा करना है, इतने में करना है, ऐसा करना है।
0: अच्छा
1: तो उनका क्या रहता है कि फर्क ये रहता है कि उनको हमको फास्ट काम करके देना पड़ता है, फास्ट काम के, चलो भाई हमको 20 दिन में, वो जैसा पिक्चर कर लेते तो वो डबिंग का डेट लेके आ जाते हैं, कभी कभी
0: अच्छा
1: मिक्सिंग का डेट, रिलीज डेट फिक्स रहता है उनका,
0: ओके
1: तो हमको चेस करना पड़ता है, तो उनका काम हमको बहुत जल्दी फास्ट करना पड़ता है।
0: अच्छा फिल्म इंडस्ट्री में हमने देखा है कि बहुत से एडिटर, पहले एडिटर जो थे बाद में निर्देशक बन गए, बहुत से सिनेमेटोग्राफर बाद में निर्देशक भी बने हैं। आपका भविष्य में ऐसा कोई विचार है फिल्म निर्देशन
1: अभी क्या
0: का?
1: है कि सर वो क्या रहता है कि अपनी लाइन जो है, या
0: जी
1: सभी का ही है, जो विधाता ने लिखा है, जो आपका लक है,
0: जी
1: उतना ही आदमी, हम मेहनत तो सब कर लेते हैं,
0: हाँ जी
1: मेहनत तो बहुत लोग कर लेते हैं। अभी बहुत लोगों को क्या हुआ कि उस टाइम में पर्टिकुलर प्रोडक्शन मिल गया, प्रोड्यूसर मिल गए,
0: जी
1: जैसे हमारे मिस्टर राजकुमार हिरानी है, उनको बिग प्रोडक्शन मिल गया, उनके कॉन्सेप्ट रहते हैं, कॉन्सेप्ट रहते। तो
0: जी
1: निशिकांत मुखर्जी तो पूरा आर्ट में थे, इससे काम करते थे, उनके साथ में थे वो, तो उतना अपना चला उनका। ऋषिकेश मुखर्जी तो आर्ट फिल्म से तरफ जरा झुकाव था उनका,
0: जी
1: और बनाते थे अच्छे पिक्चरें, जैसे डेविड धवन है, कमर्शियल में सक्सेस हो गए,
0: जी
1: यंग चंद्रा तो एक दो पिक्चर के बाद ही टॉप में पहुंच गए, तो नसीब होता है। अभी क्या पड़ाव ऐसा हुआ है, ये भी एक तो उम्र हो गई है, तब भी हमने कोशिश किया है
0: जी
1: कि जो हमारे राजस्थान में मेरी कुलदेवी है, जो दरक परिवार,
0: अच्छा
1: दरक परिवार ही नहीं, जो हम महेश्वरी मारवाड़ी है, मतलब महाराष्ट्र से है, मराठी हमको आती है, घर में लैंग्वेज हम बोलते हैं, तो हमने, हमारी कुलदेवी है ये मूसा माता,
0: जी
1: तो हमारे बचपन में हमारे माँ बाप ने बोले थे, हमारा दादा दादी, कुलदेवी ढूंढो। तो हम राजस्थान बहुत बार गए, मगर उसमें हमको किधर नहीं मिली वो।
0: अच्छा
1: तो हम एक दिन, हमारे जो दरक है कोई, उन्होंने बोले हमारे कि उधर मंदिर बन रहा था, हम उधर चले गए, तो उधर मंदिर बन रहा था 2018 में
0: अच्छा
1: मूसा माता का, तो कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो हम पिछले साल 2021 में मंदिर बन गया,
0: जी जी
1: तो मैं उधर गया था 2022 में अप्रैल में, मंदिर के दर्शन किया, मैं माता जी का सपरिवार गया था, तो उसमें मुझे ऐसी कल्पना आई कि माता जी के लिए एक भक्ति गीत बनाते हैं,
0: अच्छा
1: तो वहां से कल्पना आई। मगर वो अभी क्या था कि सब चीजें असेंबल करना
0: हाँ
1: पॉसिबिलिटी नहीं थी,
0: जी
1: हम म्यूजिक डायरेक्टर को अप्रोच किए कि भाई ऐसा ऐसा है, तो अभी क्या था कि माता जी, मतलब अभी भी बनाता, जैसा दूसरे की हिस्ट्री है वैसा कोई माता जी का हिस्ट्री नहीं था, तो हमने क्या किया, थोड़ा बहुत माहिती लेकर, मतलब जो भी है अपना, सब उनका सब हमने इकट्ठा किया,
0: जी
1: उनके बारे में
0: जानकारी इकट्ठी कर
1: जानकारी ली,
0: जी
1: और वो उस पर हमने एक गीत बनाया,
0: अच्छा
1: गीत बना के मैंने उसको फिल्म फॉर्मेट पर शूट किया, रेड एम एक्स पर शूट किया,
0: जी
1: और जो कि अभी मैं नवरात्रि में रिलीज किया है, और वो शॉर्ट फिल्म है,
0: अच्छा
1: तो वो हमने किया है। और अभी मैं क्या चाह रहा हूं कि भाई ऐसा ही सिलसिला चलता रहे। ये इसमें मैंने प्रोड्यूस खुद की है, डायरेक्ट खुद की है।
0: अच्छा,
1: उसमें बहुत लोगों का सहभाग है, डांस मास्टर का, कैमरामैन ने अच्छा काम किया। तो वो गीत हमने बना के रिलीज कर दिया है जो चल रहा है, कि हम चाहते हैं कि भाई दूरदर्शन पर भी आ जाए। तो हम उसको कोशिश में लगे कि उसका जरा अच्छे लेवल में, अच्छे कैनवास में उसको ये करके ब्रॉडकास्ट करें, बनाए और ये करते रहेंगे
0: जी।
1: अभी क्या है कि हालात ऐसा हो गया है फिल्म लाइन का,
0: हाँ जी,
1: तो आजकल मतलब जो कॉमन मैन है,
0: हाँ,
1: ये कॉमन डायरेक्टर है, पिक्चर नहीं बना सकता।
0: जी जी जी,
1: मतलब इतना कमर्शियलाइज हो गया है कि एक तो बजटिंग बहुत हो गया है। पहले क्या होता था कि मराठी पिक्चर में भी हम पिक्चर बना सकते थे, 30-40 लाख रुपए है तो पिक्चर बना सकते थे।
0: अच्छा,
1: अभी मराठी में भी करोड़ों रुपए लग रहे, क्यों? तो लोगों का सोच अलग हो गया
0: जी,
1: कैनवास अलग हो गया, लोग सोचते, थिंकिंग बड़ी हो गई।
0: हाँ,
1: उसके अंदर भी जो जैसा मैंने बोला ना डेडिया के पर आंचलिक उपन्यास था
0: जी,
1: एक पिक्चर आई थी सौराट, तो पिक्चर में 100 करोड़ का धंधा किया है वो पिक्चर, ये शोलापुर के पास में यरमाड़ा के करमाड़ा कोई गांव है,
0: हाँ,
1: उसमें शूट किया है। वो पिक्चर में एक कहानी इतनी सिमिट की है उसने,
0: हाँ,
1: कि एक ही जगह पर शूट किया है। अभी मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ
0: जी,
1: गांव में तो जा नहीं सकता मैं, मगर वो पिक्चर देखने का मुझे लगा कि मैं गांव में आके बैठ के देख लिया। तो क्या रहता है कि अभी

0: पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गया।
1: अच्छा,
0: क्यों? तो ट्रेड पूरा डिफरेंट चेंज हो गया पूरा। पहले क्या होता था कि ए बी सी पिक्चर बनती थी, ए में अमिताभ बच्चन जितेंद्र बहुत थे, बी में फिर उसके नीचे वाले थे, सी में मतलब छोटे मोटे थे, पिक्चरें बनती थी, पिक्चर बिक जाती थी, हर पिक्चर छोटे में पिक्चर बिक जाती थी। मगर अभी क्या हुआ, पिक्चर का मार्केटिंग खत्म हो गए, अभी कॉरपोरेट के हाथ में है सब, बड़ी बड़ी कंपनियां ने ये कर लिया है। तो ये दौरान तो मैं बना ही नहीं सकता ना सोच सकता। सबसे पहले डेविड धवन वगैरह भी क्या थे, इनका आर्टिस्ट अप्रोच बहुत था।
1: अच्छा जी,
0: जैसा संजय दत्त है, गोविंदा ने इनको सपोर्ट किया, गोविंदा ने बहुत हेल्प किया, प्रोड्यूसर पहला नीलानी ने किया
1: जी।
0: और वो टाइम का माहौल अच्छा था, थिएटर बॉम्बे के अंदर 200-300 थिएटर थे,
1: अच्छा
0: पिक्चर चलती थी। अभी थिएटर खत्म हो गए पूरे।
1: हाँ हाँ,
0: तो अभी तो क्या इम्पॉसिबल लग रहा है, माहौल ऐसा है।
1: अब कार्यक्रम में हम आपकी तरफ से एक और गीत सुनना चाहेंगे, कौन सा गीत सुनवाएंगे आप श्रोताओं को?
0: मेरा एक गीत था, मतलब आदमी हमेशा आपके वाइफ को तो चाहता ही है खुद के, मतलब अर्धांगिनी है जो, मगर उसके पहले आदमी जो कॉलेज डे रहता है उसमें मैं एक जगह पर बैठा था टेरेस के ऊपर, और हमारे उस टाइम में तो फॉरवर्ड नहीं था कॉलेज के टाइम में, उधर तो हम किसी को देखे तो 4-5 आदमी आते थे, बोले क्यों देखा उसको। तो मैं एक जगह पर खड़ा था और एक बहुत खूबसूरत लड़की सामने बैठी थी, और उसके बाल जो है ना बार बार वो आ रहे थे चेहरे पर।
1: अच्छा,
0: तो कॉलेज में मैं गाने भी गाता था, कॉलेज में मुझे सर्टिफिकेट मिला, तो मैंने ऐसा ही गाना गाया, चेहरे पे गिरी जुल्फे कहे दो तो हटा दूं मैं, गुस्ताखी माँ, बोलके मैं भागते हुए नीचे आ गया। मुझे लगा कि भाई उसके कोई आ जाएंगे और पकड़ के मुझे पीटेंगे।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो वो हुआ ही ऐसा, मैं बैठा हुआ था कि वो लड़की आ गई और साथ में दो लड़कियां थे और एक लड़का था। तो मैं देखा उसको, मैं बोला मेरे से गलती हो गया क्या, कुछ नहीं बोले, वो गाना तुमने अधूरा गाया, पूरा गाना सुना।
1: क्या बात है, तो वही गीत सूरज फिल्म का गीत हम श्रोताओं को सुनवाते हैं।

0: दिलीप दरक जी, आज फिल्म एडिटिंग के बारे में, फिल्म के संपादन के बारे में आपसे बहुत विस्तार से बातचीत हुई और अपने अनुभव आपने हमसे साझा किए,
1: जी सर।
0: हमारे श्रोताओं को बताए। आपके यहाँ आने के लिए विविध भारती परिवार की ओर से, हमारे श्रोताओं की ओर से हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: आपका भी
0: बहुत बहुत
1: शुक्रिया सर,
0: धन्यवाद।
1: आपने हमको इतना नवाजा, मतलब ढूंढ के निकाला। और बहुत मैं आज खुश नसीब हूं कि इतना बड़ा सम्मान,
0: जी
1: इतना बड़ा स्वागत मेरा आज तक किसी ने नहीं किया है। जो हम बचपन से सुनते थे विविध भारती, जैसा रेडियो ऑन होता तो भागते हुए जाते थे,
0: हाँ
1: चलो
0: जी
1: ये गाना आने वाला है। उसमें पहले बोला जाता था कि अभी ये गीत सुनिए, गीत के बोलिए, इसको म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जय किशन है, लिरिक्स ये है, ये गाना
0: हाँ
1: है,
0: अच्छा
1: तो
0: जी
1: हम सुनते थे पूरा। वो स्टूडियो में बैठो कि मैं कभी रेडियो पर सुना करता था नाम विविध
0: जी
1: भारती सा, आज मैं ये स्टूडियो में आया, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं।
0: जी
1: और मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि आपका ये कारवा जो चल रहा है, हम पैदा होने से पहले विविध भारती है,
0: जी
1: अभी मरने के बाद भी रहेगा विविध भारती, हम तो आते जाते रहेंगे। तो बहुत बढ़िया, हमको आनंद हो गया और बहुत खुशी हो गई कि आपने हमारा इतना बहुत बढ़िया स्वागत किया। मैं तहे दिल से, मतलब मेरे अंतर आत्मा से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका
0: बहुत
1: आभार
0: बहुत।
1: मानता हूँ।
2: अभी आप सुन रहे थे फिल्म एडिटर दिलीप दरक से जयंत पात्रिकर की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

नमस्कार, यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ साथ

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। मगराहाट पश्चिम में 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। शाम 3 बजे तक 72.43% मतदान की खबर है। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज गुजरात के सूरत में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को अवसरों में बदलना और आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो गए और 1 जवान घायल हो गया। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हो गई थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस महीने भीषण गर्मी की आशंका से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश के कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक रहने और लू चलने की आशंका है। श्री सिंह ने कहा कि मई के दूसरे और चौथे सप्ताह में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रह सकता है। उत्तर पश्चिम, मध्य और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों के साथ साथ पूर्वी तट पर भी लू की स्थिति रहने का अनुमान है। हालांकि पहले और तीसरे सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ और बारिश तथा बादलों के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स ने 226 रन का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया। वहीं डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना फ्रांस से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल भारत ने चीनी ताइपे को 3-0 से हराया था। लक्ष्य सेन चोट के कारण आज मैच नहीं खेल पाएंगे और उनकी अनुपस्थिति में विश्व के 30वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत कोर्ट पर उतरेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट

0: सड़क के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
1: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
0: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी। रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
1: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
0: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के युवाड़ी कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में आप हैं अपनी दोस्त ज्योत्सना के साथ। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी होंगी आपसे ढेर सारी बातें, कुछ रोचक जानकारियों और प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तो चलिए दोस्तों, हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह एक सुविचार से। दोस्तों, जीत और हार हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। इसलिए अपने सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, ये था आज का सुविचार और अब इस सुविचार के बाद हम चलते हैं अपनी चर्चा की ओर और बात करते हैं महान भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक सत्यजीत रे जी के बारे में, जिन्होंने पाथेर पांचाली से बंगाली सिनेमा को विश्व मानचित्र पर रखा। 2 मई 1921 को कोलकाता के एक बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम सुकुमार रे था, जो कि एक प्रसिद्ध लेखक थे। दोस्तों, इनके शिक्षा दीक्षा की बात करें तो प्रेसिडेंसी कॉलेज और शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और एक विज्ञापन एजेंसी में कमर्शियल आर्टिस्ट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। और इनकी फिल्मी सफ़र पाथेर पंचाली से शुरू हुआ था और इस पहली फिल्म ने ही जता दिया कि सिनेमा जगत में एक अलग हस्ती का आगमन हो चुका है। इस फिल्म को कई पुरस्कार भी मिले और इसकी गणना उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में होती है। इसके अलावा इन्होंने अपने जीवन में 37 फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें फीचर फिल्में, वृत्तचित्र और लघु फिल्में शामिल हैं, जिसके लिए इन्हें कई सारे पुरस्कार भी मिले, जैसे कि 1958 में पद्मश्री, 1965 में पद्म भूषण और 1976 में पद्म विभूषण और 1967 में रेमन मैक्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साथ ही 1992 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। विश्व सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए सत्यजीत रे को मानद ऑस्कर अवार्ड से भी अलंकृत किया गया। इसके अलावा इन्होंने अपने जीवन में कुल 32 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त किए, जो कि अपने आप में ही काफ़ी गौरव की बात है। दोस्तों, सत्यजीत रे ने यथार्थवादी सिनेमा के माध्यम से बंगाल और भारत की आत्मा को फिल्मी पर्दे पर उतारा, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक बहुत ही प्यारा सा गीत। और अब इस गीत के बाद हम पुनः चलते हैं अपनी चर्चा की ओर। दोस्तों, खेल कूद मनुष्य के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जीवन के अन्य कार्य के साथ साथ खेल कूद के लिए भी समय निकालना बहुत ही आवश्यक है। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में ही वास करता है, यानी कि अगर आप शारीरिक परिश्रम और खेल कूद में भाग लेंगे तो ही आप स्वस्थ रहेंगे और साथ ही अपने सभी कामों को सक्रिय रूप से कर पाएंगे। हम सभी मनुष्यों को मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक होता है, जिसमें कि खेल कूद बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन में खेल का कितना महत्व है। दोस्तों, खेल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे न केवल हमारा मनोरंजन होता है बल्कि यह हमें कई तरह से लाभ भी पहुँचाते हैं और हमारे अंदर स्फूर्ति लाने का भी काम करते हैं। साथ ही साथ इससे हमारे भविष्य का बेहतर निर्माण भी होता है, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें और अपने सभी कार्यों को सक्रिय रूप से पूर्ण कर सकें। दोस्तों, खेलों को खासकर दो टीमों या दो व्यक्तियों के बीच में प्रतियोगिता के रूप में खेला जाता है। यह दो तरह के होते हैं। पहला तो इंडोर गेम, जो कि हम अपने घरों के अंदर खेलते हैं, जैसे कि लूडो, कैरम, चेस, सुडोकू। इस तरह के खेल से हमारा मानसिक विकास होता है। और दूसरा है आउटडोर गेम, जो कि हम अपने घरों के बाहर किसी खुले मैदान में खेलते हैं, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, वॉलीबॉल आदि। इन खेलों से हमारा शारीरिक विकास होता है, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। इसलिए दोस्तों, हम सभी को खेलों के महत्व को समझते हुए दिन में कम से कम 1 घंटे तो ज़रूर ही खेलना चाहिए, क्योंकि यह हमारे शरीर से आलस्य को दूर भगाता है और हमें नई स्फूर्ति तथा ताकत देता है। और रोज़ाना खेलने से हमारे शरीर में रक्त का संचार भी तेज होता है और साथ ही साथ हमारी पाचन शक्ति भी ठीक रहती है और हमारे चेहरे पर चमक भी आती है। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम तमाम तरह की बीमारियों से भी बचे रहते हैं। इसलिए दोस्तों, हम सभी को रोज़ाना कोई ना कोई खेल ज़रूर खेलना चाहिए। इसी के साथ आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक बहुत ही प्यारा सा गीत। और अब इस गीत के बाद हम पुनः चलते हैं अपनी चर्चा की ओर और बात करते हैं जीव विज्ञान में करियर बनाने के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आइए जानते हैं कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी होता क्या है। दोस्तों, जीव विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम सभी जीवों की संरचना, कार्यों, विकास, उद्भव, पहचान, विवरण और उनके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं। इसकी कई शाखाएं भी हैं, जैसे कि बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी जंतु विज्ञान, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी जैसे जैव प्रौद्योगिकी, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी जैसी कई शाखाएं हैं जिसको आप चूज़ करके इसमें अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, जीव विज्ञान में करियर बनाने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप अपने PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किए हों। और इसके बाद आप कई सारे कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि आप MBBS कर सकते हैं। ये कोर्स किसी विशेष विशेषज्ञता के साथ पूरा करना होता है। इस प्रकार आप किसी विशेष विशेषज्ञता के डॉक्टर बन सकते हैं, जैसे कि न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट और भी कई तरह के स्पेशलिस्ट। साथ ही दोस्तों, आप BDS यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल साइंस जैसे कोर्स भी कर सकते हैं। यह एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है जो कि 12वीं के बाद 3 वर्ष का कोर्स होता है। इस कोर्स के दौरान स्टूडेंट्स को दांतों से संबंधित सभी तरह की जानकारियां दी जाती हैं। इसके अलावा आप नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। नर्स बनने के लिए आप BSc नर्सिंग कोर्स, GNM या ANM कोर्स कर सकते हैं। साथ ही आप B Pharma यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स भी कर सकते हैं। इस कोर्स के अंतर्गत दवाइयों और विभिन्न औषधियों के बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही दोस्तों, पैरामेडिकल कोर्स, BSc एग्रीकल्चर, BSc बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोर्स भी किए जा सकते हैं। 12वीं बायो के बाद आप मेडिकल डिज़ाइनिंग, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, टीचिंग जैसे सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। इसके लिए कई संस्थाएं भी हैं जो इससे रिलेटेड कोर्सेज करवाती हैं, जैसे कि BHU वाराणसी, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई जैसी संस्थाएं हैं जिसमें एडमिशन लेकर आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और अपने करियर को आगे भी बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बातें जीव विज्ञान में करियर बनाने के बारे में। आइए इन्हीं बातों के साथ सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक बहुत ही प्यारा सा गीत, और इस गीत के बाद समय हो चला है प्रश्नोत्तरी का। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं हमारे कल के पूछे गए प्रश्न का सही जवाब। दोस्तों, कल का प्रश्न था, आधुनिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, आधुनिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों, इसका उत्तर है, आधुनिक विज्ञान का जनक गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, इसी प्रश्न के साथ आज का कार्यक्रम हमारा यहीं समाप्त होता है। अगली बार फिर मिलेंगे हम कुछ ऐसे ही रोचक जानकारियों और प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त ज्योत्सना को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आज का युवा जगत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी ज्योत्सना कुमारी। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है ग्रामीण बच्चों के लिए कार्यक्रम बालवाणी।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
5: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
4: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
6: लइका लोगन, जय हिंद। भैया देखा, अपन बैठकी शुरू भइल और हमन के समय समय पर लइका लोगन के कुछ रोचक जानकारी दियावल जाला और का कुछ सामयिक चलत बा एकरे बारे में भी हमन के लइका लोगन के बतावल जाला।
7: बिल्कुल
6: भैया, ऐसे जो न उनके सामान्य ज्ञान में भी वृद्धि होले। भैया देखा, धरती पर बहुत सारा प्राणी बाटे, शाकाहारी और मांसाहारी, मुख्य रूप से दुइये बाटने। हाँ, लेकिन भैया एमे भी जे मांसाहारी लोग बा उनके प्रोटीन और खनिज के स्रोत पशुअन के मांस होला और एहमें जौन है विशेष गुणकारी मानल जाला, ई जौन भी तालाब में मछली रहेली या जहाँ भी समुद्री जीव बाटें तो ऐसे जौन है उनके पोषण प्राप्त होला। कई लोग बड़े चाव से के खैबो करल हैं, बहुत सारा लोग के बहुत पसंद करल हैं, लइका लोग भी खा लें एके। लेकिन भैया जे मांसाहारी बा कही करतीन बा वह लोग के उपयोग करल हैं।
7: बिल्कुल
6: भैया देखा, मछली के बात चल रही है ना, तो आज हम बता दें अपने लइका लोगन के कि आज विश्व टूना मछली दिवस है। टूना एक मछली के नाम है,
7: प्रजाति
6: और, है। हाँ, मछली के नाम है, वो एक अलग प्रजाति है और एमे जौन है ओमेगा 3 फैटी एसिड और यही तरह के कई खनिज और विटामिन पावल जाला जौन से एकर उपयोगिता ज्यादा हो जाले।
7: बिल्कुल,
6: और एकरे नाते भैया एके विलुप्त भइले से बचावे खातिर और एकरे संरक्षण खातिर ई दिवस मनावल जाता।
7: बिल्कुल,
6: हाँ, पूरे विश्व में एके लोग मनावेलें और संयुक्त राष्ट्र संघ एमे हमेशा भैया अगुवाई कराला। कोनो भी वैश्विक स्तर पर दिवस मनौले के बात बा, जागरूकता के बात बा, संदेश के बात बा, तो ई जौन है संस्थान आगे आवला और पूरे विश्व के लोगन के मार्गदर्शन कराला, सलाह देला, सुझाव देला।
7: बिल्कुल सही बात कहनी भैया, संयुक्त राष्ट्र जोन बा ये मामले में हमेशा आगे रहला।
6: बिल्कुल,
7: 2 मई 2017 से जोन बाटे विश्व टूना दिवस जोन बा मनावल जाता, जोन काफी जोन बाटे स्तर पे अपन जोन बा पाँव फैलौले बा। दुनिया भर में 96 से अधिक देश टूना मछली के पकड़े ने आ एक संरक्षण में जोन आप बतौनी दिवस के मनावल जा रहा बा कि जोन उपयोगी प्रजाति बा वो बचल रहे।
6: बिल्कुल,
7: आ
6: उद्देश्य उद्देश्य एकर यह है कि भाई ये मछली के संरक्षण कर जाए, एकर वृद्धि कर जाए।
7: बिल्कुल, स्वास्थ्य खातिर इतना फायदेमंद बात जरूर कर संरक्षण करे चाहिए।
6: बिल्कुल भैया,
7: हाँ, सबसे अच्छा बा। तो लइका लोग
6: चाहते हैं लइका लोगों के गीत सुनावल जा, रोते रोते हंसना सीखो।

0: हाँ भैया, देखा लड़का लोग कितना अच्छा गीत सुन लें। अब हम चाहते हैं कि लड़का लोग उनके कुछ और जानकारी दिया जाए एक वार्ता के माध्यम से।
1: जी
0: भैया देखा, पर्यावरण के चिंता ये पूरे विश्व के चिंता बा, और ध्यान दे अगर आदमी तो ऐसे जौन है बहुत सारी बात निकल के आवेले, बहुत समझ में भी कुछ आवाला। भैया देखा, सूरज से जौन भी हानिकारक किरण निकलेले ओजोन परत से ही होके गुजरेले,
1: बिल्कुल।
0: और अगर ये नुकसान कहीं ना ही होके चाहे या अगर न हो पावे तो भाई एके देखले के जरूरत बा और एके क्षरण से बचौले के भी जरूरत बा।
1: बिल्कुल,
0: इसे का नुकसान बा एक क्षरण भैले से, ये जानकारी लिया जाए डॉक्टर सुनीता पाटर से।
2: ओजोन परत मानव तथा संपूर्ण ब्रह्मांड का रक्षा कवच मानी जाती है। ये परत ऊष्मा की पराबैंगनी किरणों को, जो बड़ी घातक होती हैं, पृथ्वी पर आने से रोकती है। यदि सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर बिना रुके आने लगे तो शायद संपूर्ण जैव मंडल का विनाश हो जाएगा, क्योंकि इस स्थिति में पृथ्वी का तापमान असहनीय हो जाएगा। सवाल ये है कि ओजोन परत कहते किसे हैं और ये कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है। वास्तव में ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बनी गैस को ओजोन यानी O3 परत कहा जाता है। इसका रंग हल्का नीला तथा इसकी गंध तीखी होती है। ओजोन वायुमंडल की हर ऊंचाई पर किसी न किसी रूप में पाई जाती है, किंतु इसका मूल संकेंद्रण समताप मंडल में 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ओजोन की अल्पता या क्षरण, जिसे अंग्रेजी भाषा में ओजोन डिप्लेशन कहते हैं, की समस्या पिछले 2-3 दशकों से विश्व स्तर की समस्या बनती जा रही है, क्योंकि इसके विनाश के कारण उत्पन्न भयावह स्थिति का आकलन सभी देश कर रहे हैं। वस्तुतः ये सभी जीवधारियों का जीवन है, क्योंकि ओजोन गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों के अधिकांश भाग को अवशोषित करते हुए एक छन्नी का कार्य करती है। इस तरह साफ हो जाता है कि इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन मानव अस्तित्व को खतरा पहुंचा सकता है। अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल में ओजोन की अल्पता या क्षीणता तथा ओजोन छिद्र के निर्माण के लिए ब्रिटिश सर्वेक्षण दल ने जिन क्रियाओं को उत्तरदायी माना है वे इस प्रकार से हैं: ओजोन 3 के O2 एवं O में अलग होने, या ओजोन के एकाकी ऑक्सीजन परमाणु के टकराव के कारण ऑक्सीजन की अभिक्रिया होने पर ओजोन का क्षय होता है, ओजोन के ऑक्सीजन में तथा ऑक्सीजन के पुनः ओजोन में परिवर्तन की संयुक्त प्रक्रिया प्रकाश रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा संपादित होती है। यदि ये सत्य है तो ओजोन का अधिकतम निर्माण भूमध्य रेखा के ऊपर जून महीने में होना चाहिए, परंतु यदि ओजोन के वितरण प्रतिरूप को देखा जाए तो ये सबसे अधिक उच्च अक्षांशों पर पाई जाती है। वर्तमान समय में सभी जानते हैं कि ओजोन की क्षय का मुख्य कारण हैलोजनित गैसें हैं, जिसके अंतर्गत क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, हैलेंस तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रमुख है। ओजोन गैस को सबसे ज्यादा खतरा CFC गैसों द्वारा होता है। इस रसायन का विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जाता है। इसमें स्प्रे कैन डिस्पेंसर में चालक के रूप में, AC तथा रेफ्रिजरेटर में तरल या द्रव पदार्थ के रूप में, इंसुलेशन फोम या स्टाइरोफोम में उड़ाने वाले कारक के रूप में तथा कारखानों में औद्योगिक विलायक के रूप में प्रयोग मुख्य है। इसके अलावा अग्निशामक यंत्रों के प्रयोग द्वारा भी ओजोन परत का क्षय होता है। ओजोन की अल्पता तथा विनाश की क्रियाविधि 2 रूपों में होती है। पहली, प्राकृतिक प्रक्रियाओं में सौर कलंक में अधिकतम वृद्धि के कारण अधिकतम ऊष्मा के विसर्जन के परिणाम स्वरूप सौर्य क्रियाकलाप में वृद्धि होती है, जिससे नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण होता है। इस तरह की प्रक्रिया दक्षिणी गोलार्ध के मध्य अक्षांशीय भागों में पाई जाती है। दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से ओजोन के अन्यत्र परिवहित होने से यहाँ समताप मंडलीय ओजोन परत पतली हो जाती है, जिस कारण उसमें भी छिद्र हो जाता है। दूसरा है, ओजोन क्षय तथा अल्पता के लिए मानव जनित क्रियाविधि भी जिम्मेदार है, जिसे क्लोरीन परिकल्पना, सल्फेट परिकल्पना तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड परिकल्पना द्वारा समझा जा सकता है। क्लोरीन परिकल्पना के अंतर्गत क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा हेलेन द्वारा ओजोन का क्षरण कई चरणों में संपन्न होता है, जैसे दीर्घ अंटार्कटिक शरद काल में दक्षिणी ध्रुव के ऊपर वायुमंडल में चक्करदार वायु भंवर बन जाता है। इस वायु भंवर के कारण दक्षिणी ध्रुवीय वायुमंडल में तापमान हिमांक बिंदु से काफी नीचे चला जाता है। कम तापमान के कारण ऊपरी शुष्क वायुमंडल की आर्द्रता हिमीकृत हो जाती है तथा उससे समताप मंडलीय बादलों का निर्माण होता है। उसके बाद हिमकणों के साथ अभिक्रिया होने के कारण CFC तथा हेलेन की क्लोरीन तथा ब्रोमीन का अभिक्रियाशील रूप में परिवर्तन हो जाता है तथा ब्रोमीन सक्रिय होकर सूर्य प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है। सामान्यतः क्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा निष्क्रिय कर दी जाती है, परंतु समताप मंडल के न्यूनतम तापमान के कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड हिमीकृत रूप में परिवर्तित हो जाता है। आने वाले बसंत काल में सूर्य प्रकाश द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों का प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया द्वारा विघटन हो जाने से क्लोरीन एवं ब्रोमीन अलग होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं तथा ये हेलोजन अणु ओजोन यानी O3 का सामान्य ऑक्सीजन में वियोजन कर देते हैं। इस प्रकार ओजोन की क्षय एवं अल्पता प्रारंभ हो जाती है। अब सल्फेट परिकल्पना के विषय में देखेंगे कि इसकी खोज 1966 में की गई थी। ये माना जाता है कि ज्वालामुखी तथा उद्योग चिमनियों के प्रयोग से इसका विखंडन होता है। क्लोरीन परिकल्पना के आधार पर आकलित ओजोन की अल्पता एवं विनाश की तुलना में सल्फेट एयरोसोल द्वारा होने वाली ओजोन की अल्पता एवं विनाश कहीं अधिक तेज गति से होती है। इसी प्रकार नाइट्रोजन ऑक्साइड परिकल्पना के अनुसार सुपरसोनिक विमानों से निकले नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा समताप मंडलीय ओजोन का क्षय होता है। विमान की अत्यधिक गति के कारण ट्रांसपोर्ट विमानों की निकास नलियों से अधिक मात्रा में नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है। 500 विमान के उड़ान से 23% तक ओजोन का क्षय हो सकता है तथा उड़ान क्षेत्र में तो ये क्षय 50% तक हो जाता है। ध्यान देने योग्य बात ये है कि ओजोन का क्षय यदि इसी गति से जारी रहा तो पृथ्वी का तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि यहाँ जीवन शून्य अथवा विनष्ट हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें सीधे पड़ने लगेंगी। अब यहाँ ओजोन की सुरक्षा की भी चर्चा आवश्यक है। अतः ओजोन परत की क्षय तथा उसकी अल्पता से उत्पन्न भयावह परिणामों के कारण वैज्ञानिकों तथा विभिन्न देशों की सरकारों का चिंतित होना स्वाभाविक है। अतः उसके रोकने के उपायों के बारे में सोचना एवं खोज करना मानव जाति का परम कर्तव्य बन जाता है। इसकी सुरक्षा मुख्यतया दो रूपों में की जा रही है। पहली, विनाशक रसायनों के प्रयोग पर रोक लगाकर यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रसायनों के प्रयोग तथा उपयोग में कमी करना होगा। इन रसायनों की कमी करने के लिए इनसे संबद्ध वस्तुओं के उपयोग पर रोक लगानी होगी या उनमें कुछ तकनीकी सुधार करना होगा जिससे CFC के प्रयोग में कमी हो जाए। इसके लिए AC, रेफ्रिजरेटर, जेट विमान आदि के प्रयोग में कमी लानी हो चाहिए। वायुमंडल में सकल जहरीली गैसों का 90% से 95% भाग अकेले उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों द्वारा छोड़ा जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के देशों का यह प्रतिशत 5 से 10 के बीच है। दूसरा, ओजोन नाशक रसायनों के स्थान पर अच्छे रसायनों का प्रयोग करना। ओजोन परत के क्षय से बचने के लिए वैकल्पिक प्रौद्योगिकी तथा वैकल्पिक रसायनों की खोज की जानी चाहिए जिससे ओजोन को हानि न पहुंचे। इसके लिए नए रासायनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। जैसे अमेरिका की एक पेट्रोलियम कंपनी ने बायो एक्ट EC7 का विकास किया है। ये रसायन वियोजक जीवों द्वारा विघटित किया जा सकता है। इस नव विकसित रसायन का ट्रेड नाम HFC-134A है तथा इसका उपयोग रेफ्रिजरेटरों में किया जाता है। यदि HCFCs या CFCs के साथ अतिरिक्त नाइट्रोजन मिला दिया जाए तो इस रसायन का बिना क्षति के AC में प्रयोग किया जा सकता है। अतः ऐसे अन्य रसायनों की भी खोज की जानी चाहिए जिससे ओजोन परत पर नुकसान ना पहुंचे।
0: लड़का लोग वार्ता सुन लें डॉक्टर सुनीता पाटर से, दिया जाए धन्यवाद इनके। और अब सुनल जाए लोग की।

ग्रामीण बच्चे अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे बालवाणी। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हमारे केंद्र से भोजपुरी और हिंदी में क्षेत्रीय समाचार।

आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम प्रमोद कुमार सिंह। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहला फेरा में मकान सूची का

0: आज लखनऊ में पत्रकार वार्ता में बतौलिन कि पहला फेरा में घर घर गिनती के सज्जो तैयारी पूरा हो गई हो। वहां के बतौलिन की क्वार्टरन के गिनती बदे प्रदेश के 3,90,000 छोट छोट खंड में बांटल गई हो। जनगणना कर्मी सज्जो खंड में जानकारी जुटी हैं। वहां के बतौलिन की 7 मई से शुरू हो रहल स्वगणना में वेबसाइट के जरिया से जनता हिस्सा ले सकी। एक सतही ऑनलाइन मिले वाले कोड के जनगणना कर्मी के बतावे के हुई।
1: उत्तर प्रदेश राज्य में जनगणना संचालन समिति जिसका नेतृत्व माननीय मुख्य सचिव महोदय करते हैं, उनके द्वारा और बहुत सारे विभागों के स्टाफ पैरामेंट के आधार पर उस समिति ने यह निर्णय लिया कि हम 22 मई से 20 जून तक अपनी मकान सूचीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। इसी प्रक्रिया से 15 दिन पहले आम जनों के लिए स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी, जिस पर अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फेज टू होगा हमारा 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 के बीच में, जिसमें एक एक व्यक्ति की गणना होगी।
0: केंद्र सरकार देसी तकनीक के प्रयोग कई के लोगिन के आपदा के जुड़ते जानकारी देवे बदे सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू कैले हो। एकरे परीक्षण बदे आज दोपहरिया 12 बजे लोगिन के मोबाइल पे सायरन के साथे एगो जानकारी भेजल गई। परीक्षण संदेश में लिखल रहे सतर्क नागरिक सुरक्षित राष्ट्र, ई संदेशा परीक्षण बदे हो। ऐसे लोगिन के एह पर कौनो प्रतिक्रिया देले के जरूरत नहीं हो। एगो रिपोर्ट।
2: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। इसे दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। संचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले हमें कि प्रदेश में जहां कहीं औद्योगिक क्षेत्र हो वहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC अस्पताल बनावल जाए। वहां के बतौली की ग्रेटर नोएडा के नालिज पार्क में 300 बिस्तर के एगो ESIC अस्पताल बनी। एक बदे 7 एकड़ जमीन दिहल गई हो। यही तरियन गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडो में ESIC अस्पताल बदे 5 एकड़ जमीन देखल गई हो। श्री योगी कहलें कि प्रदेश में ESIC अस्पतालन का विस्तार कल जा रहा हो। इस समय 41 जिला में 116 ESIC अस्पताल चली रहा हो। मेरठ से प्रयागराज के जोड़े वाले 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेस वे से गुजरे वाली गाड़ियन से 14 मई ले टोल टैक्स नहीं लिहल जाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यूपीडा, एक्सप्रेसवे बनावे वाली कंपनी IRB और अदाणी इंफ्रास्ट्रक्चर के 15 दिन ले टोल टैक्स नहीं वसूलने के आदेश देले हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लोकार्पण के बाद 29 अप्रैल के आधी रात से गंगा एक्सप्रेसवे पे गाड़ियन के आवाजाही शुरू भइल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के तबियत के लेके फिक्र जतौले हमें। एगो सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री अजय राय के जल्दीए ठीक भइले के कामना कइले हमें। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का संशोधन बिल पास न भइले के खिलाफ आज संझा लखनऊ में निकले वाले मशाल जुलूस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथों शामिल हुई हैं। ये जुलूस लोक भवन से अटल चौराहा होत हजरतगंज चौक के खत्म हुई। बिल ना पास भइले के विरोध में जगह जगह भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम कई के लोगिन के और महिला लोगिन के जागरूक कई रहल हो। केंद्र और प्रदेश सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल पास ना भइले बदे विपक्ष के जिम्मेदार बता रहल हो। समाचार पूरा भइल, नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण में मकान सूचीकरण की प्रक्रिया 22 मई से शुरू होगी। उससे पहले 15 दिन पहले 7 मई से स्वगणना की सुविधा शुरू हो जाएगी। प्रदेश की जनगणना कार्य निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने आज

0: लखनऊ में पत्रकार वार्ता में बताया कि पहले चरण में घरों की गणना की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि घरों की गणना के लिए पूरे प्रदेश को 3,90,000 छोटे छोटे ब्लॉक में बांटा गया है। प्रगणक इन ब्लॉकों में जाकर जानकारी इकट्ठा करेंगे। मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी ने बताया कि 7 मई से शुरू हो रही स्वगणना में वेबसाइट के जरिए जनता भाग ले सकती है, साथ ही ऑनलाइन मिलने वाले कोड को अपने प्रगणक को उपलब्ध कराना होगा।
1: उत्तर प्रदेश राज्य में जनगणना संचालन समिति, जिसका नेतृत्व माननीय मुख्य सचिव महोदय करते हैं, उनके द्वारा और बहुत सारे विभागों के परामर्श के आधार पर उस समिति ने यह निर्णय लिया कि हम 22 मई से 20 जून तक अपनी मकान सूचीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। इसी प्रक्रिया से 15 दिन पहले आम जनों के लिए स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी, जिस पर अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फेज टू होगा हमारा 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 के बीच में, जिसमें एक एक व्यक्ति की गणना होगी।
0: केंद्र सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों के मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। ये संदेश परीक्षण के लिए है, इसलिए जनता को इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। इसे दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। संचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में जहां भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, वहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC हॉस्पिटल स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में 300 बेड का ESIC हॉस्पिटल बनेगा। इसके निर्माण के लिए 7 एकड़ भूमि का आवंटन पत्र सौंप दिया गया है। इसी तरह गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में भी ESIC हॉस्पिटल निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में ESIC औषधालयों का विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में 41 जिलों में 116 ESIC औषधालय संचालित हैं। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले 594 किलोमीटर के गंगा एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले वाहनों से 14 मई तक टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यूपीडा ने एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाली कंपनी IRB और अदाणी इंफ्रास्ट्रक्चर को 15 दिनों तक टोल टैक्स न वसूलने के लिए निर्देशित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पण के बाद 29 अप्रैल को आधी रात से गंगा एक्सप्रेसवे पर वाहनों का आवागमन शुरू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे श्री अजय राय के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का संशोधन बिल पारित न होने के विरोध में आज शाम लखनऊ में आयोजित हो रहे मशाल जुलूस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। ये जुलूस लोक भवन के सामने से अटल चौराहा होते हुए हजरतगंज पहुंचकर समाप्त होगा। बिल नहीं पारित होने के विरोध में जगह जगह भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम आयोजित कर आम जन और महिलाओं को जागरूक कर रही है। केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार विपक्ष को नारी शक्ति वंदन अधिनियम का संशोधन बिल पारित न होने के लिए जिम्मेदार बता रही है। समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।

0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं, इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
2: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
1: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: पंचों जय जवान जय किसान। भैया देखा अपन बैठ के शुरू भइल, किसान भाई लोग अपने खेती बाड़ी के काम में बराबर लगल रहला। कटाई सबके हो गई बा, सबका अनाज भी घर में पहुंच गई बा, हल्का फुल्का बरसात भी हो गई है। हाँ, और ये सब के बीच में अगर अपने किसान भाई लोग अपने खेत के मिट्टी के तरफ ध्यान देता टें तो ये सबसे अच्छा बात हुई।
4: बिल्कुल,
3: कहे से आगे आवे वाली फसल जौन भी बा जौन भी लगावे बा उनके ओकरे हिसाब से अगर मिट्टी में उर्वरता रही तो जौन भी उनके फसल बा ओकर उत्पादन अच्छा होई और गुणवत्ता भी ठीक रही।
4: बिल्कुल, बहुत सही बात कहनी मैथिली भैया। इस समय बहुत बड़ी समस्या बाटे कि मृदा में उर्वरता के जौन बा क्षमता कैसे बढ़ावल जा, मिट्टी में उपज के क्षमता कैसे बढ़े, काहे कि लोग जौन बा लगातार कहीं फसल बोएला देखल जाए या पराली जरा देता।
3: बिल्कुल,
4: अक्सर देखा जाला कि गवाई में जोन बाटे डंठल या पराली जला देता जिससे जोन भी मित्र कीट बने वो जल जाता है और जोन उपयोगी जीव बने वो जोन बा जल जाए तो आवश्यक तत्व तो खत्म हो जाए।
3: बिल्कुल भैया, देखा ये कहा जाला ना कि गोबर के खाद जो है सबसे बढ़िया बा, कंपोस्ट खाद बढ़िया बा, यही तरह से हरी खाद कहल जाए, जैविक खाद कहल जाए, ये कुल के अगर उपयोग अपने किसान भाई लोग खेती में करत आटे तो ऐसे निश्चित रूप से मिट्टी के जल धारण क्षमता में सुधार होई और ओकर उत्पादकता तो बढ़बे करी।
4: साथे साथे हम जन कहनी कि फसल बदल के जन बा उत्पादन हो।
3: बिल्कुल भैया, ये तो हमेशा कहल जाला। हाँ, बराबर ही सब चर्चा चलत रहले हमन के
4: बाटे उड़द बा या मसूर बाटे।
3: बिल्कुल,
4: ऐसन फसल
3: खास तौर से भैया दलहनी फसल जोन होली अगर एक किसान भाई लगाओ ताटे तो मिट्टी में जो है नाइट्रोजन के उपलब्धता हो जाले और अगर जाँच करावा ताटे तो जाँच करोले के समय ये बात प्रमाणित भी हो जाले और वही हिसाब से जोन है इनके उर्वरक के मात्रा भी कम देवे पड़ाला और जैसे पहले भी हम बतौली है कि मिट्टी के जल धारण क्षमता जोन है बढ़ जाले तो ये सब फायदा होला और एकरे साथे साथे जोन भी जीवांश बा सड़ल गलल अनाज बा या खाद्य पदार्थ बा घास भूसा बा ये सब के भी अगर कहीं सड़ा के

0: में ना
1: हाँ
0: दिहल जा,
1: बिल्कुल
0: और ओकर उपयोग खेते में कर जा, तो मृदा का
1: काफी, हाँ
0: स्वास्थ्य
1: काफी
0: जोन है
1: उपयोगी,
0: काफी
1: बिल्कुल
0: अच्छा
1: बिल्कुल
0: रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। पंच
0: भैया
1: भाई खेती के साथ साथ कुछ पंच भाई जोन बाटे पशुपालन भी करन
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल, और पशुपालन
1: हाँ
0: कर तो भैया कई तरह के समस्या आवेले, केहू
1: बिल्कुल।
0: के पशु जो है दूध कम दे दी, केहू के कोनो बीमारी हो गई, खुरपका मुँहपका हो गई, इस तरह के बहुत सारी समस्या आवेले। कभी
1: बिल्कुल
0: कभी यो देखल जाला कि जगह जगह से बाले गिरे
1: बाल गिरा
0: लगातार,
1: लगता।
0: हाँ
1: हाँ
0: त्वचा
1: बिल्कुल।
0: दिखाई देवे लगे अंदर तक, और कई जगह गुच्छा में बाल गिर जाला, कभी एक तरफ के गिर जाला, कभी अलग
1: हाँ
0: अलग जगह के गिर जाला, मुंह पे गिर
1: बिल्कुल।
0: जाए, पीठी पे गिर जाए, पूंछ के बाल गिर जाए, तो ये बाल गिरले का समस्या का है और इसे कैसे बचल जाए,
1: बचल
0: ये
1: जाए।
0: विषय पर जानकारी देता हूँ डॉक्टर एसएन लाल, अपने पंच भाई ये जानकारी लें।
2: किसान भाइयों, हम सभी लोग पशुपालन का काम बहुत प्राचीन काल से करते चले आ रहे हैं। पशु हमारे जीविका का एक साधन है और पशुओं से हमें बड़ी अच्छी आमदनी भी होती है। जो हमारे पशु हैं, हम अपने जीविका के आधार पर अलग अलग उद्देश्य के लिए उनको पालते हैं। जैसे दूध के लिए पालते हैं, मांस के लिए पालते हैं। कुछ पशु हैं हमारे जो कि खेतों में काम करते हैं, कुछ पशु हैं जो बोझा ढोने के काम आते हैं, कुछ पशु ऐसे होते हैं जिनको हम बाल के लिए या ऊन के लिए पालते हैं। इसी के साथ ही साथ पशुओं का जो चमड़ा होता है उसके लिए भी, चमड़े का भी उपयोग किया जाता है। पशु के शरीर में जितनी भी चीज़ें हैं सब के सब उपयोगी होती हैं और ये हमारे आय का बहुत ही अच्छा साधन है। लेकिन कभी कभी समस्या आ जाती है हमारे पशुओं में उनके बाल के गिरने की। जब उनके बाल गिरने की समस्या आ जाती है तो जिस उद्देश्य के लिए हम उस पशु को पाल रहे हैं उस उन समस्या के कारण हमारी आर्थिक आमदनी जो होती है उनसे वो प्रभावित होने लगती है और जो हम उसका उद्देश्य है वो हमारा पूरा नहीं हो पाता है। जैसे हमारे क्षेत्र में मुख्य रूप से बाल गिरने में, जैसे हमारे पास दुधारू पशु हैं, गाय व भैंसे हैं, हमारी भेड़ हैं और बकरियां हैं जिनको हम ऊन के लिए चमड़े का भी उपयोग होता है। तो यदि हम इनके बाल गिरने की समस्या का कारण जान लें कि किन कारण से हमारे पशुओं में बाल गिरता है तो हम उनकी रोकथाम कर सकते हैं और हमारे पशुओं में बाल का गिरना कम हो सकता है और साथ ही साथ इनका बाल का गिरना रुक भी सकता है। तो इन्हीं सब के लिए हमें चाहिए कि उन कारणों का पता लगाएं कि किन कारणों से हमारे पशुओं में बाल मुख्य रूप से गिरते हैं। जो पशुओं में मुख्य रूप से बाल गिरते हैं, मुख्य रूप से पाँच कारण हैं जिसकी वजह से हमारे पशुओं में बाल गिरते हैं। एक तो सबसे पहला कारण जो है पशुओं में उनके साथी उनमें वो है कि अंतः परजीवी, जो शरीर के अंदर परजीवी पाए जाते हैं उनकी वजह से उनके जो है बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ ही साथ बाह्य परजीवी भी होते हैं जो कि जूं हैं, किलनियां हैं, कुटकियां हैं, इनकी वजह से भी पशुओं के चमड़ी खुरदुरी हो जाती है, कट जाती है और उनका बाल गिरना शुरू हो जाता है। इसी के साथ ही साथ एक चीज़ होता है फंगस, जो अधिक नम युक्त वातावरण में हमारे पशु रहते हैं फंगस की वजह से भी उनको खजुली हो जाती है और दाद भी हो जाती है, जहाँ पर कि फंगस की बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो जाती है। गर्दन पर देखिए तो, पीछे के भाग में देखिए तो, गलकम्बल में देखिए तो, उनकी वजह से, फंगस की वजह से भी हमारे पशुओं में बाल बहुत तेज़ी से गिरना प्रारंभ कर देता है। ये दो मुख्य कारण हैं। तीसरा जो मुख्य कारण है जो हमारे पशुओं में बाल का गिरता है वो लीवर की कमजोरी की वजह से होता है। पशु के अंदर, शरीर के अंदर लीवर पाया जाता है। यदि वो लीवर कमज़ोर हो जाता है किन्हीं कारणवश तो हमारे पशुओं में बाल का गिरना प्रारंभ हो जाता है, एक हमारे लिए समस्या बन जाती है। और चौथा जो कारण है वो पोषक तत्व की कमी है। जो भी शरीर में जो चमड़े हैं, बाल हैं, नाखून हैं, ये जो हमारा पोषक तत्व है मुख्य रूप से, ये जो हमारे किसान भाई इसको अच्छी तरह से समझ लें कि जो भी हम पोषक तत्व पशुओं को खिलाते हैं उसमें एक पोषक तत्व होता है प्रोटीन। प्रोटीन चूँकि चमड़े और बाल को बनाने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यह शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो चमड़ी खुरदुरी हो जाती है, बाल कमज़ोर हो जाते हैं और बाल गिरना प्रारंभ कर देते हैं। तो ज़्यादातर जो समस्या आती है वो प्रोटीन की कमी से होती है। और पांचवा जो कारण है वो वातावरण में परिवर्तन से की वजह से होता है। कभी कभी मौसम के परिवर्तन की वजह से भी हमारे पशुओं में बाल गिरना प्रारंभ हो जाता है। और मुख्य रूप से जो हमारे पालतू पशु हैं जिसमें हमारे कुत्ते भी आते हैं, इनके भी बाल गिरने की समस्या वातावरण में परिवर्तन से, मौसम के परिवर्तन के वजह से होता है। तो ये 5 कारण हैं जिनकी वजह से हमारे पशुओं का बाल गिरता है। यदि हम इन कारणों को समझ लेते हैं तो किस तरीके से हम अपने पशुओं को करें कि इन 5 कारणों से हमारा पशु प्रभावित ना हो। सबसे जो पहली चीज़ है, पशुओं में समय समय पर कृमिनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। वो निकट के पशु चिकित्सालय पर जाएं, वहाँ पर पशु चिकित्सक से संपर्क करें और हमारे जितने भी पशु हैं उनको नियमित रूप से कृमिनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। वो छोटे बछड़े हैं, बाछी हैं, बकरियां हैं, हमारी भेड़ हैं, हमारी गाय भैंसे हैं, इनको नियमित रूप से कृमिनाशक दवा देना चाहिए जिससे कि पेट में कीड़े नहीं होंगे और इनका बाल जो है वो नहीं गिरेगा। जो सबसे अहम जरूरी चीज़ है वो बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी वो चीज़ होते हैं जो बाहर से उनके शरीर पर निवास करके और उनकी चमड़ी के ऊपर रहते हैं, चमड़ी के अंदर उनका खून चूसते हैं, चमड़ी को खुरदुरी कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका बाल गिरना शुरू हो जाता है। तो ऐसे समय के में हम अपने पशुओं पर बाह्य परजीवी निवारण के लिए कुछ दवाएं हैं जो निकट के पशु चिकित्सालय से संपर्क करें। बाज़ार में भी दवाएं उपलब्ध हैं लेकिन पशु चिकित्सक के परामर्श से ही दवाओं का प्रयोग करें जिससे कि उनके बाह्य परजीवी का निर्माण हो सके। किसान भाइयों को चाहिए कि जब भी कुटकी, किलनी या जू के लिए बाह्य परजीवी की दवा का प्रयोग कर रहे हैं, इस बात का ध्यान जरूर रखें कि पशु के ऊपर दवा का छिड़काव करें। इसी के साथ ही साथ पशु जहां खाता है, चरनी है, वहां पर पशुशाला में भी दवा का प्रयोग करें। साथ ही साथ पशु जहां बाहर बैठता है वहां पर भी उस दवा का प्रयोग करें। तीनों एक साथ जो है वो दवा का प्रयोग करें जिसकी वजह से उनमें जो है एक ही साथ निवारण करने से सारे के सारे बाह्य परजीवी समाप्त हो जाएंगे और पुनः 10-15 दिन बाद जो है वो उस दवा का पुनः प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ तक हमने लीवर की बात बताया, लीवर के कमज़ोर होने से भी पशुओं का बाल गिर क्रिम नहीं है। वो प्रयोग के लिए बछड़े छोटे हम संतुलित आहार देते रहें, चारा देते रहें, विटामिन्स मिनरल्स युक्त जो है पत्तियां उनको देते रहें, जो हमारे हरे चारे हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाएगा। और यदि हम उसका लीवर बहुत ही कमज़ोर होता है तो आप देख लीजिए कि यदि उनको पतली दस्त आ रही है, खाना नहीं पच रहा है, भूख कम लग रही है या और भी दिक्कतें हैं, भूख कायदे से नहीं लग रही, तो लीवर का हम बाज़ार में टॉनिक मिलता है, पशु चिकित्सक से परामर्श करके उसको कर सकते हैं। एक सबसे अहम कारण जो होता है जो बाल गिरने का है, जो कि कुत्तों में बाल गिरता है, अमूमन देखा गया है कि फंगस की वजह से, जो फंगस होता है वो चमड़ी के अंदर जो है वो रहता है, प्रवेश कर जाता है और फंगस के इन्फेक्शन से वो अपना अंदर जा करके माइसीलियम टाइप से, जाल टाइप से बना लेता है और वहाँ पर जो है वो अपना दांत खाज टाइप से कर देता है, जिसे खौरा टाइप से हो जाता है और कुत्ते जो है पैर से उसको खजुलाते रहते हैं और वहाँ पर बाल गिर जाता है। कभी कभी कुछ कुत्तों में देखे कि पूरा का पूरा बाल जो है वो साफ हो जाता है। तो ऐसे में चाहिए कि वो जो निकट के पशु चिकित्सक हैं वहाँ पर संपर्क करें और उनके जो फंगस का इन्फेक्शन है उसको दिखवा लें, टेस्ट करवा लें और टेस्ट करवाने के आधार पर ही उनको दवाओं का वो प्रयोग करें, जिससे निश्चित रूप से उसका चमड़ी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और कुत्तों में बाल गिरने की समस्या समाप्त हो जाएगी। एक अहम चीज़ जो है, जो कि प्रोटीन की बात आई, प्रोटीन चमड़ा और बाल दोनों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो प्रोटीन हमारे पशुओं में क्या होता है, जैसे हमारे जो भी पालतू पशु हैं, चाहे हमारी भेड़ हैं, चाहे हमारी बकरियां हैं, चाहे हमारे कुत्ते हैं या गाय भैंस हैं, इसमें प्रोटीन की बहुत आवश्यकता पड़ती है हर स्तर पर, चाहे वो बढ़वार की अवस्था पर हो, चाहे वो छोटे अवस्था पर हैं या वो दूध देने की अवस्था पर हैं। तो ऐसे में प्रोटीन पशुओं की आवश्यकता के अनुरूप उनको खिलाना चाहिए। जो हमारे क्षेत्र में हैं, गाय हैं, भैंसे हैं, इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो भी दाना मिश्रण देते हैं उसमें 15-16% जो है पाच्य प्रोटीन होनी चाहिए और पाच्य प्रोटीन के लिए किसान भाई जो भी दाना मिश्रण बनाते हैं, घर पर बनाते हैं, तो उनमें खली का प्रयोग अवश्य करें, चूनी चोकर का प्रयोग अवश्य करें। उसमें यदि 100 किलोग्राम उनको दाना मिश्रण बनाना है पशुओं को खिलाने के लिए, दुधारू पशुओं के लिए, तो उसमें 33 किलोग्राम जौ का दाना रख लें, 16 किलोग्राम गेहूं का चोकर रख लें, 15 किलोग्राम उसमें चूनी का समावेश कर लें और 33 किलो उसमें खली मिला लें, आधी तीसी खली आधी सरसों खली रहेगी, 1 किलो नमक और 2 किलो खनिज लवण बना लेंगे तो इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होगी 15-16% तक प्रोटीन की मात्रा होगी और वो प्रोटीन की वजह से पूर्ति हो जाएगी तो इनके बाल के गिरने की समस्याएँ कुछ कम हो जाती हैं। इस प्रकार से जिन उद्देश्य के लिए हम भेड़ पालते हैं, बकरियाँ पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, गाय भैंस पालते हैं, इन 4-5 कारणों को हम दूर करके चाहें तो निश्चित रूप से पशुओं में बाल गिरने की समस्या समाप्त हो सकती है और हम अपने पशुओं से किसान भाई बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
0: भैया देखा ही तो रहा वार्ता पशुओं में बाल गिरने की समस्या, जानकारी देते रहें डॉक्टर एसएन लाल दिहल जैन के धन्यवाद और हम चाहते हैं कि अरुण कुमार कोरी के स्वर में सुनल जा लोकगीत।

0: भैया देखा, अरुण कुमार कोरी के स्वर में हमन के लोकगीत सुनल गई। फसल कोनो भी अगर बा और ओके पहले बो दिहल जात है तो भैया उसे लाभ भइले के संभावना ज़्यादा हो जाले और मौसम के मार ऊपर कम से कम पड़े ले। अगर अपने किसान भाई लोग अरहर के अगेती खेती कैल चाहता है तो ये जानकारी लें डॉक्टर राजीव कुमार सिंह से, बतियावत हैं इनसे भैया कृष्ण विनय कुमार।
1: दालों का महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ भारत की ज्यादातर जनता शाकाहारी है वहीं जंतु द्वारा मिलने वाला जो प्रोटीन है काफी महंगा होता है और उसको तैयार होने में भी काफी समय लग जाता है। कुछ क्षेत्रों में दोनों तरह की अरहर की खेती की जाती है, चाहे वो लंबी अवधि की हो या कम अवधि वाली। लेकिन आज हम जानना चाह रहे हैं कि खास तौर से पूर्वांचल जैसे सघन आबादी है, जोत कम है, संसाधन पर्याप्त है और एक साल में कई फसलों को लिया जा सकता है, ऐसी स्थिति में कौन कौन प्रजातियां हैं जो कम अवधि की हैं, उनकी कृषि तकनीक क्या है, उनके बुआई का समय और सावधानियां क्या होंगी, इसी से संबंधित जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ फोन लाइन पर डॉक्टर राजीव कुमार सिंह हैं, प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। अरहर की जो कम अवधि की प्रजातियां हैं उनके बारे में समझाइए।
2: किसान भाइयों, मेरा आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तो सर्वप्रथम किसान भाई, मैं आपको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि आप देखेंगे कि अब खरीफ का सीजन जो है शुरू होने वाला है, उसमें दलहनी फसलें जो मुख्य रूप से जो खरीफ की दलहनी फसलें हैं आपकी अरहर है, मूंग है, उर्द है, सोयाबीन है, तो उसमें से किसान भाई हम आपको जो है सदा चर्चा करेंगे अगेती अरहर की वैज्ञानिक खेती के बारे में आपको विस्तृत में बताऊंगा। किसान भाई, आपको ये ध्यान देना है कि अरहर की फसल की खेती करने के लिए ऐसी मिट्टी का चुनाव करना है जिसमें कि जल निकास की सही व्यवस्था हो, क्योंकि आप देखेंगे दलहनी फसल है कि अगर थोड़ी भी पानी लगती है तो पूरे फसल को नुकसान कर देती है। तो पहला तो यह है कि जल निकास की उचित व्यवस्था हो, आपके मृदा का जो पीएच मान है 6.5 से लेके 8 के बीच जो है उपयुक्त मानी जाती है, और इसी के साथ साथ जो आप देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई देखते हैं कि पुरानी नमी में ही बुआई करते हैं, तो ये सुनिश्चित कर ले कि आपके खेत के अंदर जो है नमी पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है। अगर थोड़ी भी नमी आपके खेत में कमी होगी तो उसका अंकुरण पर प्रभाव पड़ता है, तो ये सुनिश्चित कर ले कि आप बुआई के समय खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। अगेती खेती के लिए जहाँ पे सिंचित क्षेत्र है तो वहाँ के लिए अगेती अरहर की बुआई जो है मध्य जून में अवश्य किसान भाई कर दे। मध्य जून में आप करेंगे तो आपकी अरहर की खेती जो है अक्टूबर अंतिम सप्ताह तक इसकी कटाई हो जाती है। और एक ये भी आप बताना मैं चाहूंगा कि बहुत सारे जगह अनुसंधान केंद्रों और संस्थानों को प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध हो चुका है कि अगर उसमें दो तीन चीजें आपको जो है

0: लाभ पहुंचाती है। एक तो पैदावार में वृद्धि होती है, दूसरा इस तकनीक को अपनाने से जहां पे जल भराव से नुकसान होता है उससे भी आप बच सकते हैं, तीसरा है जो कवक जनित जो बीमारियां लगती हैं फसलों में और या अरहर की फसल में, तो किसान भाई उससे भी बच सकते हैं। तो अगर संभव है, आपका साधन है, तो मेड़ों को अवश्य बुआई करें। इसी के साथ जैसा कि अरहर की जो उन्नतशील प्रजातियां हैं किसान भाई, हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से एक पूसा 16 नाम की प्रजाति जो है नई निकाली गई है और आपका 120 दिन में ये पक जाती है और इसकी जो औसत उत्पादकता आपका जो है 22 क्विंटल प्रति हेक्टर है। अगर अच्छी तरह आप करेंगे तो जो है 25-26। इस प्रजाति के अलावा पूसा 991 है, पूसा 992 है, पूसा 2001 है, पूसा 2002 है, पूसा 33 है, पूसा 855 है और एक प्रजाति और है उत्पाद 120 और 31। ये प्रजातियां जो है शीघ्र पकने वाली उन्नतशील प्रजातियां हैं किसान भाई, आप इसको लगा सकते हैं अगेती अरहर के रूप में। और एक ये भी ध्यान रखिए कि जिस क्षेत्रों में मृदा एवं जनित कई तरह के जो है एक जीवाणु जनित रोग होते हैं, कवक के द्वारा होता है, किसान भाई आप देखेंगे कि बीज शोधन के रूप में बहुत सारे जो दलहनी फसल है, स्पेशली जो दलहनी फसल के लिए, चाहे वो आपका अरहर है, चाहे उड़द है, चाहे मूंग है, जो भी अरहर के दलहनी फसल है, उसके लिए जो मृदा जनित एक रोग लगता है उसको नियंत्रण करने के लिए आपको 2 से लेकर 2.5 ग्राम थीरम और उसमें 1 ग्राम करवंडा जी मिलाकर उसको उपचारित करें, क्योंकि आप देखेंगे अरहर के फल में उकठा रोग खूब आता है। तो इसको निदान करने के लिए किसान भाई बीज ही उपचार एक ऐसा है जिससे कि इस रोग से आप जो है निदान पा सकते हैं। बीज उपचार जरूर किसान भाई करें और इसके साथ साथ तो दलहनी फसल में एक कल्चर आता है राइजोबियम टीका के नाम से, तो किसान भाई उसको भी फफूंदी नाशक उपचार के बाद यानी करीब 30 से 40 मिनट के बाद उसको राइजोबियम कल्चर के द्वारा आपको जो है उपचार करना है। 10 किलोग्राम बीज के लिए एक पैकेट 200 ग्राम का आता है, ये कहीं से भी आप ले सकते हैं, कृषि विश्वविद्यालय से ले सकते हैं, ज्ञान केंद्र से सहायता ले सकते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों से आप ले सकते हैं। तो उपचारित करना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे क्या होता है कि जो हमारा वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा होती है उसको जो है उसमें जीवाणु होता है उसको लेके मृदा के अंदर जो है स्थापित करता है और उससे क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी बढ़ती है। इसी के साथ साथ किसान भाई आपको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि खरीफ की फसल में आप लगा रहे हैं, क्योंकि गुणवत्ता युक्त बीज जो है आपको 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगेती अरहर के लिए आपको लेना है और उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि बीज आपका आधारित एवं प्रमाणित होना चाहिए। किसी भी विश्वसनीय संस्थानों से आप लेंगे तो उसमें ये होगा कि जो अंकुरण क्षमता होगी वो आपकी अच्छी होगी। और तो दूसरा ये है क्योंकि हम खरीफ में लगाते हैं तो वातावरण में नमी होती है, तो किसान भाई संभव हो तो आप उसको लाइन में या पंक्तियों में लगाएं जिससे कि दूरी जो है 30 से 45 सेंटीमीटर है और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर है। तो पंक्तियों में लगाने से ये होगा कि जो भी अंतर सस्य क्रियाएं किसान भाई हमारे करते हैं तो उसमें पौधों को नुकसान नहीं होता, चाहे खरपतवार नाशी का प्रयोग करना हो, चाहे आपको उर्वरक का प्रयोग करना हो, चाहे आपको सिंचाई करना हो, तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। लाइन में करने से क्या होता है कि उत्पादन आपको अच्छा मिलता है, पौधे की जो संख्या होती है आपको अच्छी मिलती है और सबसे महत्वपूर्ण है उर्वरक प्रबंधन की हम बात करते हैं क्योंकि दलहनी फसल है तो इसमें उर्वरक की भी जरूरत पड़ती है। तो किसान भाई पहला तो ये है कि जब भी आप उर्वरक का प्रयोग करें तो मृदा परीक्षण की संस्तुति के आधार पर आप दें। पहले जो है इसका आप परीक्षण करा लेंगे तो मृदा के अंदर आपको ये मालूम हो जाएगा कि हमारे मृदा की स्वास्थ्य कैसी है, मतलब नाइट्रोजन कितना हमको देना है, फास्फोरस कितना देना है, पोटास कितना देना है, तो इन सब चीजों को उसके आधार पर आपको जो है उर्वरक संस्तुति की जाती है। दूसरा ये है संतुलित उर्वरक की रूप में हम बात करते हैं तो किसान भाई आपको संतुलित उर्वरक देना है। उसके साथ साथ अच्छी उपज लेने के लिए किसान भाई आपको 10 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन।
1: हाँ पंच भाई, सुना तो ना अरहर की अगेती खेती है पे जानकारी देता ना डॉक्टर राजू कुमार सिंह भारत ने, विनय कुमार जी इतना निक जानकारी देव खाती डॉक्टर साहब बधाई।
2: बिल्कुल
1: आ घड़ी के सुई कर रहा भाई सारा की पंच भाई आप लोगों से लिहल जा विदा,
2: पंचो
1: जय जवान जय किसान।
0: क्योंकि दलहनी फसल है तो उसमें

0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य।
1: कृषक भाई अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे, खेती बारी। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।

खोए हुए व्यक्तियों के संदर्भ में कुछ सूचनाएं हैं। ग्राम व पोस्ट कठघरा शंकर, थाना मधुबन, जिला मऊ से रामनारायण अपनी पुत्री कुमारी धन्वंतरी के खोने की सूचना हमें देते हैं। कुमारी धन्वंतरी की उम्र है 25 वर्ष, ये बीएससी की छात्रा हैं। कुमारी धन्वंतरी का हुलिया हम आपको बता दें, रंग इनका सांवला है, लंबा चेहरा है, नाक नक्श औसत हैं और इनके बाल काले हैं, लंबाई इनकी 5 फुट है। ये गुलाबी रंग की समीज, सलवार और पैरों में सैंडल पहने हुए हैं। अगर इनके बारे में कोई सूचना आपके पास है तो कृपया इस मोबाइल नंबर पर आप सूचित करें। मोबाइल नंबर नोट कर लें, 9919170388। एक बार फिर सुन लें, 9919170388। एक और मोबाइल नंबर हम आपको बता रहे हैं, इसे भी नोट कर लें, इस पर भी आप सूचना दे सकते हैं, 8957438131, 8957438131।

ग्राम फतेहपुर पोस्ट फतेहपुर से रामलखन अपनी पुत्री रेखा के खोने की सूचना हमें देते हैं। रेखा की उम्र है 19 वर्ष, लंबाई 5 फुट है। ये लेगिंग्स और कुर्ती पहने हुए हैं, रंग इनका गोरा है और इनके बाल काले हैं। रेखा के बारे में कोई सूचना अगर आपके पास है तो कृपया इस पते पर, ग्राम फतेहपुर पोस्ट फतेहपुर पिन कोड 276402 ज़िला मऊ, इस पते पर आप सूचित कर सकते हैं। और सूचना देने के लिए आप मोबाइल नंबर भी नोट कर लें, 7084068742। दूसरा नंबर है 8112980896।

0: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा बस कुछ ही देर में।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in।
0: लोकधारा कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं वीरेंद्र चौधरी और इनके साथी।

0: अभी आप वीरेंद्र चौधरी और इनके साथियों के स्वर में ये देवी गीत सुन रहे थे।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details log on to www.ddindia.com।

0: रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
1: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडरपास का ही प्रयोग करें।
2: लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में इस समय आप सुन रहे हैं वीरेंद्र चौधरी और इनके साथियों के गाए लोकगीत।

अभी आप वीरेंद्र चौधरी और इनके साथियों के गाए लोकगीत सुन रहे थे। इसी के साथ हमारा आज का लोकधारा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। देश हमार कार्यक्रम में लीजिए सुनिए दीपराज गुप्त से भोजपुरी काव्य पाठ।

एही तरे चारु ओर गछिया रोपाई, अन्न जल तबे फल भरपूर मिले पाई। देखी दीपक जग उजियार मोर मितवा, देखी जगत उजियार मोर मितवा। पेड़वा लगाव दुई चार मोर मितवा, पेड़वा लगाव दुई चार। दूसर कविता देखी लोगिन।

भारत फिर से दुनिया में कहलाई, भाईचारा विश्व धरातल कुटुंब कुंभ बन जाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गई।

ती पर पसरी विश्व विजय तब होई बाहुबल फल देई निर्मल कंटक ना कुल बोई बा इतिहास बतावत आजो हरिश्चंद जस दानी कल कल में जनी अकिल गवाव बाजो तनिको पानी बारह दीपक पढ़े अजोर फैले जग खुशहाली बारह दीपक बढ़े अजोर फैले जग खुशहाली मेहनत के बूता बढ़िया व सभे बजाई ताली हवे पुराना कथन देश के हवे पुराना

तोहिया डंक मारी मारी के सतावे रे बटोहिया, मेड़ावा के पेड़ावा कटी के बिकत गईले, मेड़ावा के पेड़ावा।

बटोहिया प्रदूषित वातावरण जाई लगा पेड़वा, प्रदूषित वातावरण जाई लगा पेड़वा।

0: बतैया कह।
1: दीपराज गुप्त से अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी काव्य पाठ। इसी के साथ देश हमार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं पद्मा गिडवानी और इनके साथी।

प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी गीत। कलाकार थे पद्मा गिरवानी और इनके साथी। इसी के साथ प्रादेशिक संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आज इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में हम आपको बता दें, आप सुनेंगे 7:20 पर प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। हिंदी कार्यक्रम में रात्रि 8:00 आज हम आपको सुनवाएंगे प्रज्ञा श्रीवास्तव की कहानी दोषारोपण। और सुगम संगीत का प्रोग्राम होगा रात्रि 8:15 पर। आज की फनकार होंगी तमन्ना बानू।

रात्रि 9:30 पर आप सुन सकते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका, और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा हमारे दिल्ली केंद्र से ही आज रात्रि 10 बजे।

ये तो थी रूपरेखा हमारी आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज के साथ साथ FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। 7:18 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार।

पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों और गड्ढों को तत्काल भरने के दिए निर्देश। कहा, लापरवाही बरतने वाली संस्थाओं व ठेकेदारों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। 15 जून से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू होंगी कमर्शियल फ्लाइट्स। एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिलेगा ग्लोबल एविएशन गेटवे। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण में 22 मई से शुरू होगी मकान सूचीकरण की प्रक्रिया। मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी ने कहा, 7 मई से मिलेगी स्वगणना की सुविधा। दूसरे चरण में होगी जातिगत जनगणना। और उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक आज लखनऊ में एनीमिया पर आयोजित कार्यशाला में हुए शामिल। कहा, एनीमिया मुक्त भारत के सपने को साकार करने में उत्तर प्रदेश निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि जल जीवन मिशन के तहत खुदाई का काम करते समय सुरक्षा के सभी मानकों का पालन किया जाए और कार्य संपन्न होते ही खोदी गई सड़कों व गड्ढों को तत्काल भरा जाए। काम को समय से पूरा नहीं करने, अधूरा छोड़ने या इसमें लापरवाही बरतने वाली कार्यदायी संस्थाओं व ठेकेदारों पर जुर्माना लगाने के साथ ही उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाए। श्री योगी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि जल समाधान पोर्टल पर आपूर्ति लीकेज व खुदाई से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। प्रदेश में भीषण गर्मी और इस वर्ष सामान्य से कम वर्षा की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पेयजल आपूर्ति, सिंचाई व्यवस्था और राहत प्रबंधन में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी। एक रिपोर्ट।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कृषि, जल शक्ति, पशुधन, समाज कल्याण और उद्यान विभाग के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में पूर्व में सूखा प्रभावित रहे 18 जनपदों में विशेष निगरानी रखने, 15 जून से 30 जुलाई के बीच निर्धारित मानकों के अनुसार स्थिति का समयबद्ध आकलन करने तथा आवश्यकता पड़ने पर NDRF से सहायता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने शासन से लेकर जनपद स्तर तक कंट्रोल रूम सक्रिय रखने के निर्देश दिए। किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने वैकल्पिक सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने, सभी नलकूपों को क्रियाशील रखने और सिंचाई के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने को कहा है। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 15 जून 2026 से हवाई अड्डे पर वाणिज्यिक उड़ान परिचालन की शुरुआत करने की घोषणा की है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यात्रियों और कार्गो ऑपरेटरों के लिए आधुनिक और विश्वस्तरीय एविएशन गेटवे उपलब्ध हो जाएगा। वर्तमान में एक रनवे और एक टर्मिनल के साथ यह एयरपोर्ट सालाना करीब 1,20,00,000 यात्रियों का आवागमन संभालने में सक्षम है। मास्टर प्लान के तहत भविष्य में इसका विस्तार कर 7 करोड़ से अधिक यात्रियों की वार्षिक क्षमता विकसित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण की मकान सूचीकरण की प्रक्रिया 22 मई से शुरू होगी। उससे 15 दिन पहले 7 मई से स्वगणना की सुविधा शुरू हो जाएगी। प्रदेश की जनगणना कार्य निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने आज लखनऊ में पत्रकार वार्ता में बताया कि पहले चरण में घरों की गणना की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि घरों की गणना के लिए पूरे प्रदेश को 3,90,000 छोटे छोटे ब्लॉक में बांटा गया है। प्रगणक इन ब्लॉक में जाकर जानकारी इकट्ठा करेंगे। मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी ने बताया कि 7 मई से शुरू हो रही स्वगणना में वेबसाइट के जरिए जनता भाग ले सकती है। साथ ही ऑनलाइन मिलने वाले कोड को अपने प्रगणक को उपलब्ध कराना होगा।
2: समिति ने यह निर्णय लिया कि हम 22 मई से 20 जून तक अपनी मकान सूचीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। इसी प्रक्रिया से 15 दिन पहले आम जनों के लिए स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी, जिस पर अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फेज टू होगा हमारा 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 के बीच में, जिसमें एक एक व्यक्ति की गणना होगी। उस पर पुनः आप लोगों से एक बार वार्ता होगी।
1: मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी ने बताया कि जनगणना के दूसरे चरण में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। प्रेसवार्ता में पत्र सूचना ब्यूरो के निदेशक दिलीप शुक्ला भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि वे अजय राय के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की कल शाम अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें लखनऊ में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज लखनऊ में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में आयोजित उत्तर प्रदेश में एनीमिया निवारण प्रगति की ओर बढ़ते कदम कार्यशाला में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एनीमिया मुक्त भारत के सपने को साकार करने में उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापनों के लिए देश भर में माने जाते हैं। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ कार्य करेगा। केंद्र सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों के मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। इसे दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। संचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी बांध में गुरुवार को क्रूज पलटने की घटना के बचाव कार्य में एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ सेना की भी मदद ली जा रही है। आगरा से भी विशेष टीम गई है। हादसे में अब तक 9 लोगों के शव मिले हैं। उधर जबलपुर क्रूज त्रासदी के बाद वाराणसी में पुलिस ने एक सुरक्षा अभियान शुरू किया। दशाश्वमेध एसीपी अतुल अंजन त्रिपाठी ने बताया कि वाराणसी जल पुलिस और घाट के विभिन्न थानों द्वारा लगातार तलाशी की जा रही है।
4: वाराणसी जल पुलिस और जो घाट के विभिन्न थाने हैं उनके द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। पूर्व में भी की जा रही थी, जिसमें नाविकों को दिशा निर्देश दिए जा रहे थे कि जो नाव पर श्रद्धालु बैठे हैं सभी को लाइफ जैकेट पहनाएं, प्रॉपर तरीके से पहनाएं, साथ साथ में ओवरलोडिंग ना करें, ओवर स्पीडिंग ना करें। लेकिन कई बार चेतावनी देने के बावजूद जिन नाविकों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, श्रद्धालुओं को जैकेट नहीं पहनाया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है।
1: एक जिला एक व्यंजन योजना के तहत प्रयागराज के समोसे को जिले का आधिकारिक सिग्नेचर डिश घोषित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य हर जिले के एक विशेष व्यंजन को पहचान देकर उसे राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध बनाना है। सहायक आयुक्त उद्योग सारिका सिंह ने बताया कि चयन प्रक्रिया में स्थानीय खान पान, सांस्कृतिक परंपराओं और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया गया है।
5: प्रयागराज के हर कोने कोने में समोसे की एक नुक्कड़ पे, हर नुक्कड़ पे एक एक दुकान तो होगी ही। इसी की पॉपुलरिटी को देखते हुए यहाँ से समोसा को चुना गया है। खुशी है ODOP के तर्ज पे, जैसे ODOP में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सभी डिस्ट्रिक्ट को पहचान मिली है, उसी तरीके से ODOC भी बहुत ही आगे जाएगी यह स्कीम, क्योंकि हर चीज का सवाल पेट से होता है, स्वाद से होता है, तो ये उससे भी आगे जाएगी।
1: सिद्धार्थनगर में आज ICDS द्वारा आयोजित एक समारोह में 350 नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आंगनबाड़ी संस्थाएं न केवल प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए कार्य करती हैं, बल्कि उनके द्वारा राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों और गड्ढों को तत्काल भरने के दिए निर्देश। कहा, लापरवाही बरतने वाली संस्थाओं व ठेकेदारों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। 15 जून से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू होंगी कमर्शियल फ्लाइट्स। NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिलेगा ग्लोबल एविएशन गेटवे। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण में 22 मई से शुरू होगी मकान सूचीकरण की प्रक्रिया। मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी ने कहा, 7 मई से मिलेगी स्वगणना की सुविधा, दूसरे चरण में होगी जातिगत जनगणना। और उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक आज लखनऊ में एनीमिया पर आयोजित कार्यशाला में हुए शामिल। कहा, एनीमिया मुक्त भारत के सपने को साकार करने में उत्तर प्रदेश निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन अब समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित होगा। नमस्कार।

मोहब्बतें फिल्म से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे आवाज़ें विनोद राठौर, अलका याग्निक, सोनू निगम, आशा भोसले और श्वेता पंडित की थी। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत जतिन ललित का।

0: जो जीता वही सिकंदर, इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम और उदित नारायण की आवाज़ में। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का था और संगीत जतिन ललित का।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।

0: विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान घर घर पर दस्तक देकर होगी सभी रोगों की रोकथाम।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने ठाना है संक्रामक रोगों को फैलने से बचाना है।
0: ध्यान रहे बुखार में देरी पड़ेगी भारी, इसलिए बुखार होने की स्थिति पर निकटतम सरकारी अस्पताल जाएं तथा उचित चिकित्सक की सुविधा पाएं।
1: 1 से 30 अप्रैल तक चलेगा ये अभियान। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर कॉल करें।
2: चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

कभी खुशी कभी गम, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में। गीत लिखा था अनिल पांडे ने।

0: चंदन का एहसास।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details log on to www.ddindia.com।

कुछ कुछ होता है। इस फिल्म में अभी आप अलका याग्निक और उदित नारायण को सुन रहे थे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। आज का संगीतकार, इसमें आज के संगीतकार हैं जतिन ललित।

0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। हिंदी कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं प्रज्ञा श्रीवास्तव की कहानी दोषारोपण।
1: मोहल्ले की एक लड़की के घर शहनाई बजी। उसी मोहल्ले के एक लड़के ने उसी दिन आत्महत्या कर ली। लोगों ने इसे आपस में जोड़ कर देखा, निश्चित ही दोनों के मध्य प्यार रहा होगा। लड़के और लड़की ने किसी बात पर, चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक हो, झगड़ा किया होगा। लड़के के मनाने की कोशिश की होगी और हो सकता है लड़की ना मानी हो, शायद पत्थर दिल हो। हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब सारी हमदर्दी मृतक के साथ थी लोगों की। आजकल बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन प्यार निभाना नहीं आता। जितने लोग उतनी बातें। चूँकि एक ही मोहल्ले की बात थी, सो जो लोग रात में विवाह में शामिल हुए थे, वही दिन में लड़के के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए। बात एक मुँह से निकलते हुए दूसरे कानों तक पहुँची और धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैल गई। कहाँ मिलते होंगे, पार्क में, रेस्तरा में, सिनेमा में, किसी बगीचे में, एकांत में, शहर से दूर जहाँ तन्हाई हो। ओ, तो बात इतनी दूर तक जा पहुँची थी। फिर तो बहुत कुछ घटा होगा दोनों के मध्य। लड़के ने आत्महत्या के पूर्व कोई पत्र भी तो नहीं छोड़ा था। शायद बेचारा लड़की पर कोई धब्बा नहीं लगने देना चाहता था। इसी को कहते हैं चाहत। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो प्रेम की बात उड़ते उड़ते वहां भी पहुंची। पुलिस ने लव स्टोरी वाले एंगल से जांच पड़ताल शुरू की। लड़के के घर वालों ने पूछा। लड़के के घर वाले इस बात से अनभिज्ञ थे, लेकिन उन्होंने हंस कर नहीं किया इस बात से। हो सकता है लड़का लड़की दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन कॉलेज उनके अलग अलग थे। हो सकता है दोनों में पहले से प्यार हो। पुलिस ने विदाई के ऐन वक्त लड़की को थाने में तलब किया। लड़की के माता पिता ने एतराज जताते हुए कहा कि लड़की की विदाई है, ऐसे समय में थाने बुलाकर किसी लड़के की आत्महत्या के विषय में पूछकर आप लड़की का भावी जीवन बर्बाद कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा, आप लड़की के वजह से एक जवान लड़का दुनिया से विदा हो गया और आपको अपनी लड़की की विदाई की पड़ी है, पूछताछ जरूरी है। आप लोग कानूनी मामले में दखल ना दें तो अच्छा है। पुलिस को अपना काम करने दें। और विदाई के समय लड़की दुल्हन श्रृंगार में थाने में थी। पुलिस अधिकारी ने पूछा, आप इस लड़के से प्यार करती थीं? नहीं। क्या लड़का आपसे प्यार करता था? मुझे पता नहीं। क्या आप लड़के को जानती थीं? कैसे? 12वीं तक हम साथ में पढ़े हैं। क्या लड़के ने कभी आपसे प्रेम का इजहार किया था? नहीं। फिर लड़के ने आत्महत्या क्यों की? मुझे क्या पता। क्या ये एक तरफा प्यार हो सकता है? मुझे कभी नहीं लगा। जिस दिन आपकी शादी हुई, उस दिन लड़के ने आत्महत्या की, इसका क्या मतलब निकाला जाए? आप सच बोलिए, नहीं तो हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं, पुलिस अधिकारी ने धमकी भरे अंदाज में कहा। लड़की ने भी गुस्से में कहा, आपको जो करना है करिए। अभी आपने कहा कि आप लड़के को जानती थीं? हाँ, क्योंकि हम एक साथ स्कूल में पढ़े हैं और एक ही मोहल्ले के हैं। तो हो सकता है कि आप दोनों में प्यार हो, जिसे आप अब छिपा रही हो, क्योंकि अब आपकी शादी हो गई है एक बड़े घर में। हम दोनों के मध्य कुछ नहीं था। पुलिस अधिकारी ने और भी बहुत से सवाल किए। बाहर खड़े दूल्हा दुल्हन पक्ष के लोग स्थानीय नेताओं और मीडिया को लेकर आ गए। मजबूरन पुलिस अधिकारी ने कहा, मैं किसी दबाव में आने वाला नहीं हूँ। जांच जारी रहेगी और जरूरत पड़ने पर लड़की को पुलिस थाने

0: बुलाया जा सकता है। लड़की ने इतना तो स्वीकार किया कि वह लड़के को जानती थी, तभी आप ले जा सकते हैं लड़की को। दूल्हा पक्ष के लोग गुस्से में थे। दूल्हे के पिताजी ने कहा, हम ऐसी लड़की से अपने लड़के का विवाह कैसे कर सकते हैं जिस पर किसी लड़के की मौत का आरोप लगा हो, लेकिन शादी हो चुकी। लड़की पक्ष के लोगों ने कहा, मैं ऐसी शादी को नहीं मानता, फिलहाल ये विदाई नहीं हो सकती, लड़की के कदम शुभ नहीं हैं। लड़के के पिता ने गुस्से में कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। लड़की के पिता ने कहा, मैं ऐसी लड़की को कैसे अपने घर की बहू बना सकता हूँ जिसका किसी लड़के की मौत से संबंध हो, ये झूठ है। लड़की के पिता ने चीख कर कहा, सच और झूठ का फैसला तो आने दीजिए, विदाई उसके बाद होगी। लड़के के पिता ने कहा, और बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई। लड़के के घर में उदासी छा गई। लड़की फूट फूट कर रोने लगी। लड़की की माँ ने गुस्से से कहा, लाखों रुपए शादी में खर्च किए, यदि ऐसा कुछ था तो तुम्हें पहले बताना था। लड़के ने आत्महत्या कर ली, हमारी बदनामी अलग हुई, जीवन भर का कलंक लगा दिया तुमने खुद पर। ऐसा कुछ नहीं है माँ, लड़की ने रोते हुए कहा, यदि ऐसा नहीं है तो थाने में क्यों कहा कि तुम उस लड़के को जानती हो, क्योंकि वो मेरे साथ पढ़ा है, मैं ही नहीं और भी लोग उसे जानते होंगे, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मैं वैसे ही जानती हूँ जैसे और लोग जानते हैं, लड़की ने रोते हुए कहा। लड़की के पिता मंदिर चले गए भगवान को अपना दुखड़ा सुनाने। लड़की की माँ ज्योतिषी के पास चली गई उपाय पूछने, और लड़की अपने ही कमरे में कैद होकर रह गई। उसने बहुत सोचा कि क्या उसके लिए उसका सहपाठी आत्महत्या कर सकता है, कभी ऐसा लगा तो नहीं, फिर क्यों आत्महत्या की उसने, वो भी मेरी शादी वाले दिन, क्या वजह हो सकती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़का कॉलेज में किसी और लड़की से प्यार करता हो, प्यार टूटने का दर्द सहन न कर पाया हो, जो भी हो मेरा तो उससे कोई वास्ता रहा ही नहीं, खुद मर गया और मुझे मरण तुल्य स्थिति में छोड़ गया। कल अगर ये मसला हो भी गया तब भी उस पर जो कलंक लग गया वो जीवन भर के लिए, क्या मेरे ससुराल वाले कभी मुझे स्वीकार कर पाएंगे। यदि वह इस जंजाल से मुक्त हो भी गई तब भी उसकी बारात का लौटना लड़के पक्ष वालों का उसे मनहूस बताना, क्या उसका पति कभी उस पर उंगली नहीं उठाएगा। बेकार है मेरा जीवन, जब अपने माता पिता ही स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी बेटी निर्दोष है तो ससुराल वालों को कैसे समझा पाएगी, कैसे उनके दिल पर अपने तरफ से साफ कर पाएगी। पुलिस जांच जारी थी, एक दो बार उससे घर पर भी पूछताछ के लिए पुलिस आई, पूरा मोहल्ला अपने घर की खिड़कियों से झांकता नजर आया। आपस में खूब बातें हुई लड़की को लेकर, उसके चरित्र, उसके प्यार को लेकर, नई काल्पनिक कहानियां बना कर भी उछाली गईं एक दूसरे के कानों में। किसी ने कहा, हाँ मैंने एक बार दोनों को साथ में देखा है, शहर के बाहर बने मंदिर में देखा है। किसी ने कहा, मैंने उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देखा, शहर के एक बड़े लाज में। किसी ने कहा, मैंने लड़के को अपने खून से लड़के की मांग भरते हुए देखा था। ये बातें लड़के पक्ष वालों तक पहुंची। लड़के पक्ष वाले इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये शादी खत्म कर देना ही ठीक होगा, जीवन भर का रोग कौन पालेगा, किस किस का मुंह बंद करेंगे, आंखों देखी मक्खी नहीं निकली जा सकती। और एक निर्णय के तहत दहेज का सारा सामान लड़के वालों ने लड़के के घर वापस लौटा दिया, यह कहकर कि यह शादी खत्म समझे, फिर भी आप जिद करेंगे तो हम पुलिस और कोर्ट का सहारा लेंगे। लड़की के पिता का रोना आ गया, उन्होंने गुस्से में कहा, हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। लड़की की माँ ने पति का रोना देखकर कहा, आप क्यों मरेंगे, जिसके कारण ये सब हुआ वो तो बेशर्मों जैसी बैठी है, मरना तो उसे चाहिए, कलमुही सत्यानाशी पैदा होते ही क्यों नहीं मर गई। लड़की ने जब अपने माता पिता के मुख से ऐसे बोल सुने तो उसे लगा कि इस सब की जिम्मेदारी वही है, उसका मर जाना ही बेहतर है, और लड़की ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। कुछ दिनों बाद पुलिस की जांच में स्थिति स्पष्ट हो गई, अब उसकी हमदर्दी लड़की के साथ थी। बेचारी बदकिस्मत मुफ्त में बदनाम हुई। अपने सम्मान के लिए मरना पड़ा उसे। सारा मोहल्ला मृतक लड़के से के परिवार और पुलिस पर थू थू करने लगा। टॉप इंजीनियरिंग संस्थान में मृतक को 2-4 प्रवेश परीक्षा में असफल हो चुका था। लड़का डिप्रेशन में था। उसकी कोचिंग पर परिवार के लाखों रुपए खर्च हो चुके थे। उसकी संगी साथी परीक्षा पास करके अच्छे कॉलेजों में प्रवेश पा चुके थे। लड़का तनाव में था और उसने अपनी कापी पर एक नोट लिखा था। वो पुलिस की गहरी छानबीन में मिल चुका था। मेरा टॉप इंजीनियरिंग संस्थान का सपना अधूरा रह गया। मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूँ। इसके लिए किसी को जिम्मेदार न ठहराया जाए। केस समाप्त हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि लड़की की मौत का कौन जिम्मेदार है।
1: दोषारोपण। अभी आप प्रज्ञा श्रीवास्तव से इनकी ये कहानी सुन रहे थे। इसी के साथ आज का हिंदी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स। केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details, log on to www.ddindia.com।
1: सुगम संगीत के प्रोग्राम में आज की फनकार हैं तमन्ना बानू।

0: जिया अंसारी का कलाम पेश कर रहे थे तमन्ना बानो।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
2: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
1: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: सुगम संगीत का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से, और इसमें आज की फनकार हैं तमन्ना बानू।

देकर हमें फरेबे वफा आप खुश रहें। कतील शिफाई का ये कलाम पेश कर रही थी तमन्ना बानो।

जमीर खान का कलाम पेश कर रही थी तमन्ना बानो। आइए अभिनी के स्वर में सुनते हैं जिया अंसारी का कलाम।

0: तमन्ना बानो के स्वर में कुछ गज़लें अभी आप सुन रहे थे हमारे आज के सुगम संगीत के प्रोग्राम में। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है, 8:45 हो रहे हैं। अब सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या का आज का अंक।
1: समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के दौरान लगभग 90% वोट पड़े। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सोमवार को। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की। सरकार ने भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आईईडी विस्फोट में सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त। लोकप्रिय गीतकार प्रसून जोशी प्रसार भारती के अध्यक्ष नियुक्त और BCCI ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर वोट डाले गए। इस दौरान लगभग 90% मतदान हुआ।
2: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के 2रे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी।
3: चुनाव आयोग ने मतगणना प्रक्रिया पर रिटर्निंग अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और अन्य सहायकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया। 10 लाख से अधिक डाक मतदाताओं ने अपने मत इस बार डाले हैं, जिनमें चुनावी ड्यूटी पर तैनात लोग और 85 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में ऐतिहासिक रूप से 85.10% मतदान हुआ है और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। करूर विधानसभा क्षेत्र में न केवल अधिकतम 79 उम्मीदवार थे बल्कि अधिकतम 89% मतदान भी दर्ज किया गया। इसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल 8,52,690 मतदाता हैं, जो इस बार अपने नेता का चुनाव करेंगे। कुल मिलाकर राज्य भर के 75,064 मतदान केंद्रों में 5,73,43,291 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
4: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी

0: भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली CBS का शुभारंभ किया। स्वदेशी तकनीक पर आधारित CBS को दूरसंचार विकास केंद्र CDOT ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है। नई दिल्ली में इस अवसर पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे में एक क्रांतिकारी पहल बताया है।
2: आज CDOT जो भारत की इंडिजिनस R&D टेक्नोलॉजी इनोवेटर के रूप में आज देश के अंदर केवल नहीं लेकिन विश्व स्तर पर इस संस्था ने अपने आप को प्रमाणित किया। आज उस CDOT की संस्था के द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन आज आपदा के वातावरण में सुरक्षा को सुनिश्चित करने की देश की जनता के हाथों में और NDRF के हाथों में सबसे उपयोगी एक साधन के रूप में आज उतर चुका है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि CBS का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
3: सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम CBS सटीक जियो टारगेटिंग क्षमता प्रदान करता है जिससे सूचना को व्यक्तिगत सेल टावरों या उनके समूहों के स्तर पर प्रसारित किया जा सकता है। साथ ही इसे बड़े भौगोलिक क्षेत्रों तक भी विस्तार दिया जा सकता है। यह पारंपरिक SMS आधारित प्रणालियों की सीमाओं को दूर करता है और सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण जानकारी लक्षित क्षेत्रों में बड़ी आबादी तक तेजी और कुशलता से पहुंचाई जा सके। यह प्रणाली लगभग रियल टाइम में बहुभाषी जानकारी प्रदान करती है जिससे फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ और गैस रिसाव जैसी आपदाओं के दौरान लोगों को सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए महत्वपूर्ण समय मिल पाता है। ये सूचना बिना किसी देरी के कुछ ही सेकंड में उपयोगकर्ताओं तक पहुंच जाते हैं। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज एक IED निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज सूरत में संपन्न हो गया। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि ये क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
4: आपदा को हम अवसर में बदले, इसको हम अपॉर्चुनिटी के रूप में हमको देखने की जरूरत है और इसलिए हमको अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और जरूरी है कि हम इस रीजनल कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से ज्यादा अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एरिया को हम तवज्जो दें और साथ में हम सेल्फ रिलायंस की ओर जाएं, इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है।
1: इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि इन समझौतों से अगले 3 साल में 2,82,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की आशा है।
5: श्री संघवी ने दक्षिण गुजरात के तापी, डांग, वलसाड़ और भरूच जैसे आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक विशेष योजना साझा की जिसके तहत महिलाओं की अधिकतम भागीदारी वाले प्रदूषण मुक्त उद्योगों को इस प्रदेश में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परिषद में सूरत के कपड़ा उद्योग को गारमेंट सेक्टर के रूप में विस्तार देने और स्थानीय स्तर पर आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। अपर्णा खुण, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। अपने प्रभावशाली लेखन और गहन सांस्कृतिक संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध श्री जोशी की समकालीन भारतीय मीडिया की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती एक नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मकता के साथ काम करेगी। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना शुरू हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हो गई थी। उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत घरों की सूची बनाने का काम 22 मई से शुरू होगा। 7 मई से स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने लखनऊ में बताया कि राज्य में जनगणना अभियान के तहत घर घर जाकर आवश्यक जानकारी एकत्र की जाएगी।
6: पूरे प्रदेश को एक ग्रिड में बांटा जाता है, ग्रिड के छोटे छोटे खंड बनाए जाते हैं या मकान सूचीकरण ब्लॉक, दोनों एक ही चीज है। पहले फेज में उनको मकान सूचीकरण ब्लॉक कहते हैं, दूसरे फेज में उसको गणना ब्लॉक कहते हैं। ये गणना ब्लॉक 120 से 180 घर के करीब होते हैं। इनमें करीब 800 से 1000 के बीच में हम लोग पॉपुलेशन रखते हैं, 800 हम लोगों ने अपर लिमिट रखी है। पूरा प्रदेश ऐसे प्रखंड में बांटा जाता है और इस बार ये कार्य डिजिटली किया गया। ये पोर्टल के माध्यम से इन सबकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बनाई गई है, सबकी बाउंड्री को टैग करके बनाया गया है। ऐसे हमारे प्रदेश में 390,000 गणना ब्लॉक बने।
1: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यों वाली टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर टीम को कप्तानी और स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा, जबकि फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 16 ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। लक्ष्य सेन चोट के कारण इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे। लक्ष्य की अनुपस्थिति में विश्व के 30वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत कोर्ट में उतरेंगे। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के मुताबिक परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के दौरान लगभग 90% वोट पड़े, जबकि पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सोमवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है। सरकार ने भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर एक IED विस्फोट में सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। लोकप्रिय गीतकार प्रसून जोशी प्रसार भारती के अध्यक्ष नियुक्त हुए और BCCI ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये
7: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Nearly 90% voter turnout recorded in repolling at 15 booths of 2 assembly constituencies of West Bengal. Counting of votes on Monday for assembly polls in West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and Puducherry. Election Commission deploys additional counting observers and police observers in West Bengal. Government launches cell broadcast system to strengthen India's emergency communication systems and enhance public safety infrastructure. Four security personnel killed in an IED blast near Kanker Narayanpur district border in Chhattisgarh. Renowned lyricist Prasoon Joshi appointed as chairman of Prasar Bharati. And in cricket, BCCI announces Indian squad led by Harmanpreet Kaur for ICC Women's T20 World Cup. In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held today across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Mograghat, Poshchim constituency,

0: Under the guidance of eminent gurus like Gana Kalabhushana, Vidwan H.K. Narasimha Murthy, and Vidushi H.N. Rajalakshmi, along with mentorship from Vidushi Pushpa Srinivasan, Sri T.K. Srinivasan, and Vidwan H.N. Bhaskar, Sindhu and Smita have honed a style that seamlessly blends depth with dynamism. Their music is a journey where soulful bhava meets technical finesse. Their command over the violin adds a rare dimension, making their performances both immersive and distinctive. The sisters create an experience that resonates deeply with audiences. Recognized for their excellence, Sindhu and Smita are A-grade artists of Akashvani Bengaluru and have consistently earned top honors in both vocal and violin disciplines. Their artistry has been celebrated with prestigious awards including accolades from the Madras Music Academy, the Ananya Yuva Puraskara, Yuva Purandara Award, and the distinguished M.S. Subbalakshmi Fellowship. Sindhu and Smita are torchbearers of a legacy, carrying forward the timeless beauty of Carnatic music with grace, innovation, and unwavering dedication.
1: आज के इस प्रसारण में आपके साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं बी एस प्रशांत, घटम पर जी ओंकार राव.
0: इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट दे आर अकॉम्पनीड ऑन मृदंगम बाय बी एस प्रशांत, घटम बाय जी ओंकार राव.
1: सिंधु सुचेतन और एच एम स्मिता अपने वायलिन युगल वादन का आरंभ पटनम सुब्रमण्या अय्यर की रचना इराना पाई के साथ कर रही हैं. यह राग तोड़ी में आदि ताल पर निबद्ध है.
0: सिंधु सुचेतन एंड एच एम स्मिता बिगिन द वायलिन ड्यूएट रिसाइटल विद एरनपाई, अ कॉम्पोजिशन ऑफ पटनम सुब्रमण्य अय्यर इन राग तोड़ी सेट टू आदि ताल.

0: अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वे अब संत त्यागराज की रचना गिरिराज सुता प्रस्तुत करेंगी, जो राग बंगाला तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग द कॉन्सर्ट दे विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा गिरिराज सुता इन राग बंगाला सेट टू आदि ताल।

राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सिंधु सुचेतन और एच एम स्मिता द्वारा वायलिन युगल वादन सुन रहे हैं। आपके साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं बी एस प्रशांत, घटम पर जी ओंकार राव। अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए सिंधु सुचेतन और एच एम स्मिता अब प्रस्तुत करेंगी संत त्यागराज की रचना ललिते, जो राग भैरवी तथा

0: आदिताल पर निबद्ध है।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक यू आर लिसनिंग टू वायलिन ड्यूएट रिसाइटल बाई सिंधु सुचेतन एंड एचएम स्मिता। दे आर अकंपनीड ऑन मृदंगम बाई बीएस प्रशांत, घटम बाई जी ओमकार राव। कंटिन्यूइंग द परफॉर्मेंस, सिंधु सुचेतन एंड एचएम स्मिता विल नाउ प्रेजेंट ललिते, अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा इन भैरवी रागा सेट टू आदिताल।

0: सिंधु सुचेतन और एच एम स्मिता प्रस्तुत करेंगी मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना मीनाक्षी। यह राग पूर्वी कल्याणी में आदि ताल पर निबद्ध है।
1: सिंधु सुचेतन एंड एच एम स्मिता विल नाउ प्रेजेंट मीनाक्षी, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितर इन राग पूर्वी कल्याणी सेट टू आदि ताल।

0: अभी आपने तानी आवर्तनम सुना, जिसे मृदंगम पर बी एस प्रशांत और घटम पर जी ओंकार राव ने प्रस्तुत किया।
1: That was Tani Avartanam presented on Mridangam by B.S. Prashant and on Ghatam by G. Omkar Rao.
0: Sindhu Suchetan और H.M. Smita अपने वायलिन युगल वादन का समापन राग देश में तिलाना से करेंगी, जो विद्वान लालगुड़ी जयरामन की रचना है।
1: Sindhu Suchetan and H.M. Smita will conclude their violin duet recital with Tilana in Raag Desh, a composition of विद्वान लालगुड़ी जयरामन।

0: सुचेतन और एच.एम. स्मिता का वायलिन युगल वादन संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर बी.एस. प्रशांत तथा घटम पर जी ओंकार राव।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। 11 बज रहे हैं, अब सुनिए दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों,

0: छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के चार जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया में क्षेत्र में विस्फोटों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्य टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 160 रन का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीता अधिकारी। In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held today across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Magrahat Paschim constituency and 4 in Diamond Harbour seat. Repolling remained largely peaceful across the two assembly segments. The repolling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly elections. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held on Monday. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Kerala and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal covering 152 seats was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies. The Election Commission has ordered re-polling in all 285 polling stations, including auxiliary polling stations in Falta Assembly constituency of West Bengal. The Commission mentioned that there has been severe electoral offences and subversion of democratic process during the polling in a large number of polling stations in Falta Assembly constituency on Wednesday. Fresh poll will be held in all polling stations on 21st of this month from 7 a.m. to 6 p.m. Counting of votes will take place on 24th May. The Election Commission has deployed additional counting observers and police observers in West Bengal. A total of 165 additional counting observers have been assigned to assist counting observers, while 77 police observers have been deployed to strengthen security and oversee law and order arrangements around counting centres. The Commission said these measures are aimed at ensuring that the counting process is conducted in a secure, peaceful, intimidation-free and transparent manner. However, it clarified that police observers will not enter the counting halls under any circumstances on the day of vote counting. The Supreme Court of India has declined to interfere with the Election Commission's decision to appoint only central government employees as counting supervisors in West Bengal elections. A bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Jayamala Bagchi directed that the Commission's guidelines must be strictly followed. The ruling